0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894 18744।
1: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
2: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
4: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
2: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
4: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
2: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
4: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
2: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
4: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
2: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
4: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
5: ठक ठक।
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा, मिला ही नहीं
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
8: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
8: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
3: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
3: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
4: नन्ना मुन्ना लाही हूँ देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
6: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
7: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
6: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
7: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
6: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
7: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
8: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
9: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
8: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
9: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़ और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
5: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
6: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434403।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का

नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पंचायत विकास दिवस का हुआ आयोजन। फर्जीवाड़ा के मामले में एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पैसा दुगुना करने के लालच में हुई 3 करोड़ की ठगी। आधी रात में सिविल सर्जन ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। और 1920 लीटर शराब के साथ 3 लोग गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। आज जिले के सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत विकास दिवस का आयोजन उत्साह पूर्वक किया गया। इस अवसर पर आयोजित ग्राम सभाओं में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी रही तथा पंचायत के समग्र विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। ग्राम सभा के माध्यम से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। कार्यक्रम के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों, पंचायत सचिव, वार्ड सदस्यों एवं संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में सड़क, नाली, पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामुदायिक भवन तथा अन्य जनहित से जुड़ी विकास योजनाओं के प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। ग्रामीणों से प्राप्त सुझावों को भी योजनाओं में शामिल करते हुए प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति दी गई। अधिकारियों ने बताया कि पंचायत विकास दिवस का उद्देश्य ग्राम सभा को अधिक प्रभावी बनाना, ग्रामीणों की सहभागिता सुनिश्चित करना तथा पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं का पारदर्शी एवं जन भागीदारी आधारित चयन करना है। इस दौरान लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई तथा विकास कार्यों में सहयोग करने की अपील भी की गई। बैकुंठपुर थाना की पुलिस ने एक फर्जीवाड़ा के मामले में सिवान से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि कांड संख्या 254-26 में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी रास बिहारी उपाध्याय के पुत्र राजू उपाध्याय को गिरफ्तार किया है। आरोपी सिवान के जामो क्षेत्र का बताया जा रहा है। पकड़े गए आरोपी पर मृत व्यक्ति के नाम पर जमीन रजिस्ट्री कराने का आरोप बताया जा रहा है और इसी मामले में पीड़ित एक महिला के आवेदन पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। इधर गोपालगंज पुलिस ने अभी अभी आंदोलन के दौरान उपद्रव मचाने वाले लोगों की तस्वीर जारी कर उन पर 5,000 रुपए के इनाम की घोषणा की है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर दर्जनों उपद्रवियों की तस्वीर गोपालगंज पुलिस ने सार्वजनिक करते हुए जनता से अपील किया है कि इन लोगों की पहचान बताने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा और उनकी पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। पुलिस का हेल्पलाइन नंबर 90-318-27-299 है। पुलिस का कहना है कि जिले में धरना प्रदर्शन के दौरान हजियापुर चौक, जनसेवा अस्पताल और निजी संस्थान तथा अम्बेडकर चौक पर कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा पुलिस बल पर हमला किया गया था। साथ ही पुलिस वाहनों और निजी संपत्तियों संसाधनों को क्षतिग्रस्त किया गया था। आमजन और मीडिया कर्मियों पर भी लाठी डंडे तथा ईंट पत्थरों से हमला किया गया था। ऐसे लोगों की पहचान पुलिस ने सार्वजनिक की है, इनकी तस्वीर को पुलिस ने जारी किया है और उपद्रवियों की पहचान बताने वाले को पुलिस 5,000 रुपए का इनाम भी देगी। आप उपद्रवियों की तस्वीर पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल पर देख सकते हैं। नगर थाना क्षेत्र के बसडीला गांव के अंजार अली उर्फ गुड्डू अली ने थाने में आवेदन देकर 3 करोड़ रुपए के कथित ठगी का एक मामला दर्ज कराया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि पैसा दुगुना करने का झांसा देकर इनसे 3 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। इस मामले में पीड़ित कारोबारी ने एसपी से भी शिकायत कर पुरानी चौक और हजियापुर के कुछ युवकों पर ठगी का आरोप लगाया है। रकम वापस मांगने पर टालमटोल और जान से मारने की धमकी का भी आरोप लगा है। पीड़ित ने अब निष्पक्ष जांच करने की गुहार लगाई है। पुलिस अब इस मामले में एफआईआर दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करने में जुटी हुई है। गोपालगंज के जिलाधिकारी के निर्देश पर आधी रात को सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण करने सिविल सर्जन पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने इमरजेंसी और एनएससीयू तथा एसएनसीयू वार्ड की जांच की, जहां कुछ डॉक्टरों की गैर मौजूदगी मिली और अन्य लापरवाहियां भी उजागर हुई, जिस पर उन्होंने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। स्वास्थ्य व्यवस्था की हकीकत जानने के लिए सिविल सर्जन आधी रात को अस्पताल में निरीक्षण करने लगे। जिलाधिकारी समीर सौरभ के निर्देश पर उन्होंने एक एक बिंदुओं पर जांच की। कई चौंकाने वाली लापरवाहियां उनके नजर में आई हैं। वार्ड में तैनात डॉक्टर रामाकांत ड्यूटी से नदारद मिले। एनएसयू में तैनात डॉक्टर की जगह दूसरे डॉक्टर ड्यूटी करते हुए पाए गए। इसको गंभीरता से लेते हुए उन्होंने तत्काल

0: संबंधित कर्मियों से जवाब तलब किया है। अचानक हुई इस जांच से स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मच गया। देर रात तक अफरा तफरी का माहौल भी देखा गया। उन्होंने मरीजों से भी बातचीत की और इलाज तथा सुविधाओं की जानकारी ली। कुछ मरीजों ने डॉक्टर की अनुपस्थिति और देरी से इलाज मिलने की शिकायत की। इस पर सीएस ने कड़ी नाराजगी जताते हुए फटकार लगाया, साथ ही डॉक्टरों से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। बताते चले कि नवागत पदस्थापित सिविल सर्जन डॉक्टर मोहम्मद इजराइल ने स्वास्थ्य व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए लगातार जांच पड़ताल शुरू किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषी पाए जाने पर संबंधित डॉक्टर और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्पाद विभाग की पुलिस ने दो अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए 1920 लीटर से अधिक देशी विदेशी शराब को जब्त किया। एक पिकअप गाड़ी और एक मिनी कंटेनर को भी जब्त किया गया है और तीन तस्करों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि एक विधि विरुद्ध बालक को भी पकड़ा गया है। जब्त शराब की अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताई जा रही है। उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार झा ने इस कार्रवाई के संदर्भ में बताया है कि गोपालपुर थाना क्षेत्र के उदकरा साइफन के पास पुलिस ने एक पिकअप गाड़ी को पकड़ा है, जिसके अंदर से 648 लीटर से अधिक देशी विदेशी शराब मिली है। इस दौरान एक विधि विरुद्ध बालक को पकड़ा गया है, जिसकी जाँच की जा रही है। तो वहीं बलत्री चेक पोस्ट पर एक मिनी कंटेनर गाड़ी से 1271 लीटर से अधिक विदेशी शराब मिली है। इसमें खगड़िया जिला के रहने वाले तीन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें मोहन कुमार गाड़ी के चालक है और निरंजन कुमार सिंह तथा विकास कुमार आर्य, ये लोग भी इस गाड़ी के साथ पकड़े गए हैं। इस तरह से पुलिस ने इन दोनों ही मामलों में गाड़ी और शराब को जब्त करने के बाद आरोपियों पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में कुचायकोट के बनकटा पंचायत भवन परिसर में दत्तक ग्रहण के नियम एवं इसकी प्रक्रिया, अस्थाई लोक अदालत का गठन, अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पैनल अधिवक्ता हैदर अली और PLV की टीम ने कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों को गोदनामा यानी बच्चों को गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया, किन्हें बच्चा गोद दिया जा सकता है, जिले में संचालित दत्तक ग्रहण संस्थान, वैसे दंपति जिन्हें कोई बच्चा नहीं है वे गोदनामा की सभी पात्रताओं को पूर्ण करते हैं तो वे दत्तक ग्रहण संस्थान से बच्चा गोद ले सकते हैं, आदि के विषयों में लोगों को जागरूक किया गया। कांग्रेस पार्टी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफा के बाद गोपालगंज शहर में जश्न मनाया। इस दौरान भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता पटाखे फोड़े और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि यह जीत लोकतांत्रिक अधिकारों की बड़ी जीत है। और आज के मौसम का तापमान, गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बारिश की संभावना बनी हुई है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube, Facebook और Instagram पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप रेडियो रिमझिम के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सीधे अपने मोबाइल फोन में भी रेडियो रिमझिम की सेवा का लाभ उठा सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पंचायत विकास दिवस का हुआ आयोजन। फर्जीवाड़ा के मामले में एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पैसा दुगुना करने के लालच में हुई 3 करोड़ की ठगी। आधी रात में सिविल सर्जन ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। और 1920 लीटर शराब के साथ 3 लोग गिरफ्तार। इसके साथ ही स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
2: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
4: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
10: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-097-06-575।
11: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
12: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
11: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, Glamour X 101,354 रूपए और X3 125R 110,836 रूपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
12: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
11: या अभी कॉल कीजिए 9289-22567 या 97-714-86164।

0: रेडियो रिमझिम सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा यानी रेडियो दोस्त सोनू के तरफ से नमस्कार प्रणाम। समय हो चुका है आपका संदेश मिला कार्यक्रम का, तो ठीक सही समय पे आप सभी के द्वारा संचार के विभिन्न माध्यमों से भेजे गए संदेशों को लेकर हाजिर हो चुका हूँ आप सभी के बीच। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके द्वारा भेजे गए संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया देते हैं रेडियो रिमझिम के प्रबंध निदेशक श्री कृपा शंकर श्रीवास्तव जी। तो सर, सबसे पहले आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: यदि आप भी इस कार्यक्रम में शिकायत, सुझाव, प्रशंसा या अपना विचार भेजना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम में भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है रेडियो रिमझिम, बंजारी मोड़, गोपालगंज, पिन कोड 84 14 28। व्हाट्सएप नंबर है 98527 88 291 और ईमेल आईडी है radiorimjhim@gmail.com। आप संचार के जिस माध्यम से चाहें उस माध्यम से अपना शिकायत, सुझाव या प्रशंसा, अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल अपनी बातों को रोकते हैं और इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं।
1: नमस्कार, रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से सभी आदरणीय श्रोताओं को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आपका साप्ताहिक कार्यक्रम आपका संदेश मिला में सभी सुनने वाले श्रोताओं का अभिनंदन करते हैं। रेडियो रिमझिम का यह साप्ताहिक कार्यक्रम पिछले लंबे समय से चल रहा है और जिले के तमाम क्षेत्रों से हर उम्र वर्ग के लोगों का बहुत सारा सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार को मिल रहा है। हम लोग अपने श्रोताओं के बीच पर आधार पर अपने कार्यक्रमों का निर्माण करते हैं, उसका प्रसारण करते हैं। सप्ताह भर हमने जो प्रसारण किया, यदि उस प्रसारण में कहीं कोई त्रुटि रह गई, आप लोगों द्वारा जो सुझाव भेजा गया उसका पूरी तरह से अनुपालन नहीं हुआ, इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं। रेडियो रिमझिम श्रोताओं का एक बहुत बड़ा परिवार है और कई श्रोता हमें रेडियो से, रेडियो ऐप से, इंटरनेट से और विभिन्न वाद्य यंत्रों के माध्यम से भी सुनते हैं। रेडियो रिमझिम का एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम स्वस्थ मनोरंजन अपने श्रोताओं को प्रदान करें। जो भी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक और जिला स्तर की सूचना है उसे जल्द से जल्द आप तक पहुंचा दे। चूंकि एक जिम्मेवार प्रसारण करता होने के नाते हम जो भी प्रसारण करते हैं या जो भी सूचना देते हैं वह तथ्यों पर आधारित होता है। उसकी पुष्टि जिला प्रशासन, न्याय प्रशासन से संबंधित जो भी सूचना दी जाती है वह तथ्यों के साथ होती है। रेडियो रिमझिम अपने लंबे प्रसारण के समय में अपने श्रोताओं के हित को हमेशा ऊपर रखता है और प्रसारण करते समय विभिन्न पहलुओं पर हम लोग ध्यान देते हैं। रेडियो रिमझिम को आप ऐप के माध्यम से 24 घंटा और रेडियो पर आप सुबह 5 बजे से रात को 11:10 तक सुन सकते हैं। अभी हाल में ही भारत सरकार की एक टीम आई थी जो रेडियो रिमझिम के 15 किलोमीटर के रेडियस में आवृत्ति में लोगों के बीच एक सर्वे किया और आम जनों ने, विशेष करके रेडियो रिमझिम के श्रोताओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम तमाम श्रोताओं को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि जो टीम आई थी जाते समय रेडियो रिमझिम के कार्यालय पहुंची और रेडियो रिमझिम परिवार के प्रति आभार व्यक्त किया कि आपके श्रोता जानदार, शानदार और बेमिसाल हैं। जिस जिस गांव में हम लोगों ने गया या नगर परिषद क्षेत्र में भी गया तो वहां के श्रोताओं ने हमारा खैर मकदम किया, स्वागत किया और जो भी सर्वे से संबंधित प्रश्न थे हमने पूछा, वे लोग स्पष्ट और साफ तरीके से बताएं। यह जानकर हमें भी अति प्रसन्नता हुई कि हमारे श्रोता हमेशा सकारात्मक सोच के साथ अपने बातों को रखते हैं, रेडियो को सुनते हैं। भारतवर्ष में आकाशवाणी सहित हजारों रेडियो स्टेशन हैं, लेकिन जो जुड़ाव रेडियो रिमझिम के श्रोताओं को रेडियो रिमझिम से है वह जो है बिरले ही मिलता है। यह वाक्य दिल्ली से आई टीम ने बताया कि रेडियो रिमझिम के सुनने वाले श्रोताओं ने बताया कि हम लोग दिल से और मन से जुड़े हुए हैं। आज तो श्रोता स्वतंत्र हैं, वे कहीं भी किसी भी FM को चैनल को सुन सकते हैं, लेकिन रेडियो रिमझिम को इसलिए सुनते हैं कि वह उनके दिल के करीब है, मन के करीब है। जो भी RJ बोलते हैं, प्रसारणकर्ता बोलते हैं, उन्हें लगता है कि वह दिल से बोल रहे हैं। तो मैं सभी श्रोताओं को धन्यवाद अर्पित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी यदि भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा समय समय से सर्वे कराया जाता है, जांच किया जाता है कि यह प्रसारण कहां तक जा रहा है, कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं, कितने लोगों का मनोरंजन हो रहा है, इस रेडियो को सुनने से उनके जीवन में कोई बदलाव आया कि नहीं, विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को श्रोताओं के समक्ष रखते हैं। और चूंकि हम भी भारत सरकार के अधीन हैं, भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप हमें काम करना पड़ता है और समय समय पर उसकी टीम जो है हर पहलुओं की जांच करती है। रेडियो रिमझिम अपने स्थापना के समय से और आज जो है जुलाई 2026 है, हमेशा अपने श्रोताओं के साथ जुड़ा रहा, रेडियो के माध्यम से, क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से, सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से, कहीं ना कहीं से हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विशेष करके जो सीनियर सिटीजन हैं, वे आज भी रेडियो के माध्यम से हमें सुनते हैं। हम उनके बातों को रेडियो रिमझिम के स्टूडियो में बैठे हुए भी महसूस करते हैं। जब किसी से दिल का तार जुड़ जाता है तो वह व्यक्ति महसूस करने लगता है कि अगला क्या चाहता है। यह ईश्वर की कृपा है, भगवान की कृपा है, जिससे हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई गांवों में जाने का अवसर मिलता है, कई प्रखंडों में जाने का अवसर मिलता है, लेकिन जो आदर और श्रद्धा और प्रेम रेडियो रिमझिम के प्रति अपने श्रोताओं के पास हमें मिलता है वह सुखद अनुभूति होता है। आप रुपया से गद्दा खरीद सकते हैं लेकिन नींद नहीं खरीद सकते हैं। रुपया से आप हर चीज खरीद सकते हैं लेकिन जो प्राकृतिक संसाधन है उसे नहीं खरीद सकते हैं। और मनुष्य के जीवन में यह बड़ा ही विचित्र बात है कि जो चीज नैसर्गिक है और हमें फ्री में मिलता है हम उसका कदर नहीं करते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश, हवा, वर्षा, यह सब प्राकृतिक चीज है और जब हम इसका कदर करने लगेंगे तब तो महसूस होगा। महानगरों में हमें जाने का कभी कभार अवसर मिलता है तो देखते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें हैं कि उसके अगल बगल रहने वाले लोगों के पास सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है और पीने का पानी का अभाव होता है। तब उन्हें समझ में आता है कि यह सूर्य का प्रकाश और जो वर्षा और हवा जो है कितना मूल्यवान है। अभी कुछ समय पहले कोरोना काल आया था और हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन के लिए लोग जो है बेचैन हो गए थे। कई व्यक्ति ऑक्सीजन के सिलेंडर को पकड़ के बैठा रहता था कि मेरे परिवार में किसी को कोरोना हो जाए, पल्स जो है नीचे जाने लगे, ऑक्सीजन की कमी होने लगे बॉडी में, तो उस समय हमें ऑक्सीजन खोजना नहीं पड़ेगा। और जो पेड़ पौधा हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं उसका कदर हम लोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए समय के साथ हर चीज का कदर करना चाहिए। एक छोटी सी बात बताते चले, जब हम लोगों के माता पिता थे तब हम लोग को लगता था सब यह इजी है, लेकिन उनके जाने के बाद महसूस होता है आज भी इस उम्र में कि माँ बाप जो थे वह देवी के रूप में, देवता के रूप में थे। उनका दिया गया सीख, उनका बताया गया बातें, उनके द्वारा अनुशासन का पाठ जो पढ़ाया गया, जीवन जो है बड़ा ही सरल हो गया। यदि उस समय उनके बातों पर हमने और ज़्यादा ध्यान दिया रहता तो जीवन में और कुछ बेहतर हम कर सकते थे। हमारे माँ बाप पढ़े लिखे हो या न हो, लेकिन उनके पास जो अनुभव है, उनके पास जो ज्ञान है, उनके पास जो क्षमता है, उसका उपयोग विशेष करके युवा वर्ग को करना चाहिए। मान लिया जाए माँ बाप निरक्षर हैं, लेकिन आप साक्षर हो गए, पढ़ लिख कर विद्वान हो गए, लेकिन कुछ अनुभव ऐसा होता है जो किसी भी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में नहीं मिलता है। वह जीवन जीने के साथ यह अनुभव जो है हमारे बुजुर्गों के पास आता है। कभी यदि समय मिले उनके पास बैठिए, उनके जीवन का अनुभव लीजिए, आपका भी जीवन सरल और सहज हो जाएगा। व्यक्ति कब बेचैन होता है? जब उसे अधिक चाहिए। और जब व्यक्ति अधिक चाहने लगेगा तो उसका जीवन जो है व्यस्त हो जाएगा, बिजी हो जाएगा, तनाव से भर जाएगा। लेकिन यदि सरल जीवन चाहते हैं तो एक ही मूल मंत्र है, अपनी जरूरतें कम करें। यदि हम अपनी जरूरत को कम रखेंगे, तनाव से, बीपी से, शुगर से फ्री रहेंगे, और जब जरूरत बढ़ते जाएगा तो बहुत सारा तनाव शरीर में आते जाएगा। अभी हाल में ही एक पदाधिकारी अपने सिवान जिला में पकड़े गए, उनके पास इतनी बड़ी धनराशि मिली, कई शहरों में उनका मकान, बिल्डिंग, मार्केट कॉम्प्लेक्स मिला, लेकिन वह खूब पढ़े, बीपीएससी क्रैक किए, सरकारी सेवा में आए, और अंत में जब निगरानी और ईडीआई के हत्थे चढ़े तो उनका सारा कमाई धमाई पढ़ाई लिखाई खत्म। कहा जाता है कि यदि पढ़ा लिखा व्यक्ति सरल सहज और विनम्र नहीं है तो वह एक सांप के समान है। जिस तरह सांप जो है लाइट जलाइएगा तो वह चमकीला और सुंदर दिखाई देगा, लेकिन उसके अंदर जो है जहर भरा रहता है। उसी तरह जो पढ़ा लिखा व्यक्ति विनम्र नहीं है, सरल नहीं है, दयालु नहीं है, दूसरे के प्रति आदर नहीं रखता है, वह जो है सांप के समान है। यह मेरा अनुभव रहा है। इसलिए शिक्षा हमें विनम्रता सिखाता है, दयालु बनना सिखाता है, दूसरे के प्रति आदर और सम्मान रखना सिखाता है, अपने से बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर और सम्मान रखना है। यही नहीं कि केवल माता पिता का हम आदर सम्मान करें, मेरे माता पिता के उम्र के जो भी व्यक्ति है उसके प्रति तो आदर और सम्मान रखना है। आपका संदेश मिला कार्यक्रम में, बहुत सारी बातें होगी। हमारे साथ बैठे हुए हैं आरजे सोनू जी, जिनका एसएमएस फरमाइश आप प्रतिदिन रात में 9:20 के बाद सुनते हैं 10:15 तक। आपका संदेश मिला में वह संदेशों को पढ़ेंगे और मैं पूरी ईमानदारी से इसका जवाब दूंगा।
2: जी सर, हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी संचार के विभिन्न माध्यमों से बहुत सारे संदेश पहुँचे हुए हैं। सबसे पहला संदेश मेरे पास पहुँचा हुआ है मदन गोण जी का, पगरा विजयपुर से लिखे हुए हैं। ऐप के माध्यम से रेडियो रिमझिम का हालचाल, आपका संदेश मिला, बिरहा और गीतों का कार्यक्रम सुनता हूँ। हमारे क्षेत्र में बहुत कम लोग को ऐप के बारे में जानकारी है, इसका प्रचार प्रसार किया जाए, तो सर इनके संदेशों पर अपना विचार दें।
1: आदरणीय गौड़ साहब, आपके पूरे परिवार को, पगरा क्षेत्र के सभी निवासियों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप तो गोपालगंज जिले के ऐसे क्षेत्र में हैं जहां से देवरिया जनपद शुरू होता है उत्तर प्रदेश, लेकिन आप रेडियो रिमझिम को ऐप के माध्यम से सुनते हैं, यह काफी अच्छा संदेश है। हमें लगता है कि बहुत दिनों के बाद पश्चिमी क्षेत्र का संदेश जो है रेडियो रिमझिम को प्राप्त हुआ है। आपको पता ही है कि गोपालगंज जिले में 14 प्रखंड और 2 अनुमंडल हैं, और सभी क्षेत्रों से कुछ न कुछ संदेश आते रहते हैं। आपका संदेश मिला कार्यक्रम में तो काफी अच्छा लगता है। हम तो चाहते हैं हर उम्र वर्ग के लोगों का संदेश हमें मिले, ताकि हम लगातार सुधारते रहें। जीवन में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है, हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ कमियां हैं, उसी तरह रेडियो रिमझिम में भी कुछ कमियां हैं, जिसमें आप लोग इशारा करते हैं, सुझाव देते हैं, उन कमियों को लगातार लंबे समय से हम दूर करते रहते हैं। और कहा भी जाता है कि चलता हुआ घोड़ा और दौड़ता हुआ व्यक्ति कभी हारता नहीं है और न कभी पुराना होता है। तो जिस काम को लगातार किया जाए, उसमें लगातार सुधार की गुंजाइश रहती है। आपने जो कहा रेडियो रिमझिम का ऐप के बारे में कम जानकारी है, तो आप ही एक वहाँ के राजदूत हैं हमारे रेडियो रिमझिम परिवार के। जितना हो सके लोगों को बताएं कि रेडियो रिमझिम का ऐप गूगल के प्ले स्टोर में है, डाउनलोड कीजिए, बहुत कम MB का है, और सुनिए। और रेडियो रिमझिम अपना प्रसारण हमने बताया कि लगातार करता है, और 4 माध्यमों से आप सुन सकते हैं, रेडियो पर, इंटरनेट पर, ऐप पर, और भी जो वाद्य यंत्र है उसके माध्यम से भी आप सुन सकते हैं। शुरुआती दौर में रेडियो रिमझिम अपने वाहन के साथ 14 प्रखंडों में पोस्टर के साथ घूमते रहता था, लोगों को बताते रहता था, और उसके बाद बहुत सारे लोग ने ऐप को डाउनलोड किया, बहुत सारे लोगों ने बताया कि हमें अब जानकारी मिल गई है। लेकिन यह आपका नया संदेश है कि पगरा क्षेत्र में कम लोगों की जानकारी है, तो एक बार फिर हम लोग दौरा करते हैं और लोगों को बताते हैं। आपने इतना मूल्यवान सुझाव दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपने जो कार्यक्रम के बारे में बताया, तो हम लोग भी चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग हालचाल गोपालगंज सुने। उसमें 24 घंटे के अंदर गोपालगंज जिले में जो भी घटनाएं घटती हैं, उसका पूरा संक्षिप्त विवरण हम लोग दे देते हैं, और जिला प्रशासन, न्याय प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, परिवहन विभाग, रजिस्ट्री विभाग द्वारा जो भी सूचनाएं आती हैं, हम आपके पास संप्रेषित करते हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा भी सूचना जो दी जाती है, उत्पाद अधीक्षक द्वारा भी जो सूचना दी जाती है, वह हम देते रहते हैं। और विशेष करके हालचाल गोपालगंज में जनहित की बातें हम लोग ज्यादा संप्रेषित करते हैं, जिन बातों से लोगों को लाभ मिले उसकी भी सूचना देते रहते हैं। आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है ध्रुव देव पांडे जी का, वार्ड नंबर 12 से। रेडियो रिमझिम को लगातार और लंबे समय से सुनता हूं। मेरा अनुरोध है कि प्रादेशिक समाचार के समय आवाज बहुत कम हो जाता है, इसे ठीक किया जाए, तो सर इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दे।
1: आदरणीय पांडे जी, आपके पूरे परिवार को, आपके वार्ड वासियों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। इस तरह की सूचना आपसे पूर्व भी कई लोगों ने किया, तो आपको भी पता है कि हम लोग डायरेक्ट पटना से जो प्रादेशिक समाचार सुबह या शाम में प्रसारित करते हैं, तो जैसा आता है उसी तरह हम संप्रेषित कर देते हैं। अब रहा आवाज की बात, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि स्पष्ट और साफ आवाज आप तक पहुंचे, लेकिन जो चीज दूसरे से लेकर तीसरे को देना है, बीच में हम लोग हैं, उसमें ज्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर भी तकनीकी एक्सपर्ट से हम बात करेंगे, क्या ऐसा हो सकता है कि उस आवाज को बुलंद किया जाए। और ये अभी आता है कि बीच में आप देखते होंगे एक मिनट तक रेडियो घड़घड़ाने लगता है, तो वह एक मिनट का साइलेंट जो है वहीं से आता है। इसलिए हम लोग मजबूर हो जाते हैं कि कुछ उसमें करें। चूंकि भारत सरकार का गाइडलाइंस है कि हम जैसा भेजते हैं आप वैसा ही संप्रेषण करें, तो उसमें हम लोग ज्यादा छेड़छाड़ या सुधार नहीं कर सकते हैं। चूंकि हम भी कानून के दायरे में हैं, भारत सरकार के मार्ग निर्देशन से बंधे हुए हैं, इसलिए उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर भी जहां तक आवाज की बारे में बात है, हम उसमें सुधारने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार
2: जी। सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है भानु चौहान जी का श्रीरामपुर से। रेडियो रिमझिम के ऑनलाइन शो से जुड़ते हैं, आपका संदेश मिला, एसएमएस फरमाइश हमको काफी अच्छा लगता है। मेरा सुझाव है कि रेडियो रिमझिम में फिल्म पर आधारित कार्यक्रम सुनाया जाए। तो सर, इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दे।
1: आदरणीय चौहान जी, आपके पूरे परिवार को, आपके ग्रामवासियों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आपको हमारे यहाँ से प्रसारित कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हर तरह के आंधी तूफान के बीच रेडियो रिमझिम का प्रसारण बेहतर रहता है और हर बात जो है स्पष्ट और साफ कहा जाता है। अब रहा आपने जो बताया कि फिल्मों पर आधारित कार्यक्रम को चलाया जाए, तो हम आज से 14 साल 13 साल पीछे चले गए। 2010-11 में इस तरह का कार्यक्रम चलता था, लेकिन हमें लगा कि लोग जो है पूरा फिल्म देखने से बेहतर रील देखना आजकल पसंद कर रहे हैं। जो 5 सेकंड 10 सेकंड का आता है, देख लिए, आगे बढ़ा दिए। और धीरे धीरे अपने जिला में भी कई ठो सिनेमा घर बंदे हो गया, तो लोगों के पास समय का अभाव हो गया है। तो हमें लगा कि 50 मिनट का कार्यक्रम है जो फिल्मों पर आधारित है, बहुत लंबा होगा, लोग सुनते सुनते रेडियो बंद कर देंगे। तो हम भी समय के साथ रील के जमाने में आ गए हैं कि कम समय में अधिक जानकारी दीजिए, क्योंकि किसी के पास समय नहीं है। भले वो 8-8 घंटा मोबाइल को फेंटेगा, लेकिन अच्छी और सच्ची बातें जल्दी हजम नहीं होती है। उसी तरह हमने उस कार्यक्रम को बंद कर दिया, लेकिन आपका सुझाव आया है तो हम इस पर मनन करेंगे, विचार करेंगे अपने टीम के साथ। यदि संभव हुआ तो हमें प्रसारण करने में कोई आपत्ति नहीं है। पहले का फिल्म जो था, मूवी जो था, 3-4 घंटा का होता था और सिनेमा हॉल के बाहर लंबी लंबी कतारें लगती थी। जब कोई फिल्म शुक्रवार के दिन रिलीज होता था, तो आधा आधा किलोमीटर लोग जो है लाइन लगा देते थे। एक समय था, और आज का समय जो है रील का हो गया है। तो समय जो है बड़ा शक्तिशाली और बलवान होता है, और वही व्यक्ति सरवाइव करता है जो समय के साथ अपने को परिवर्तित कर ले। दुनिया में सबसे अजूबा और अच्छा अजीब जो है हमें मेढक लगता है। जब हम लोग बायोलॉजी पढ़ते थे 10th के पहले, तो उसमें हमारे गुरु जी बताते थे मेढक जो है, जिसको हम लोग बेंग भी कहते हैं, उसे मिट्टी में ढक दिया जाए तब पर भी जिंदा रहेगा, पानी में फेंक दिया जाए तब पर भी जिंदा रहेगा, और उसको जमीन पर छोड़ दिया जाए तब पर भी जिंदा रहेगा। यह बात जो है बड़ा अजीब लगता है कि ईश्वर ने ऐसा भी जीव बनाया है कि हर परिस्थिति में उसके अनुसार अपने को ढाल लेता है, तभी वह सर्वाइव करता है। कहा जाता है कि 6000 करोड़ साल पहले इस पृथ्वी पर डायनासोर हुआ करते थे, और एक उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया, वह खत्म हो गया, लेकिन मेढक जो है पृथ्वी के साथ जन्म लिया करोड़ों साल पहले, और आज भी समय के साथ सर्वाइव करता रहा है। यह बात जीवन में मनुष्य के ऊपर भी लागू होता है। समय के साथ जो अपने आप को परिवर्तित कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है, वह आगे बढ़ जाता है, और जो समय के विपरीत चलता है, प्रकृति के विपरीत चलता है, उसका समूल नाश हो जाता है। तो हम जो है आज रील के जमाने में भी आप यदि मांग कर रहे हैं तो इस पर विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार
2: जी सर। अगला संदेश पहुंचा हुआ है, रीता देवी मकसूदपुर से भेजी हैं। सर नमस्कार, आजकल ऑनलाइन कार्यक्रम में स्वास्थ्य संबंधित सूचना दी जा रही है, इससे महसूस होता है कि मनोरंजन के साथ आम जनता के लिए रेडियो रिमझिम चिंतित रहता है, तो सर इनके संदेशों पर अपना विचार दें।
1: आदरणीय रीता जी, आपके पूरे परिवार को, आपके पूरे ग्रामवासियों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बहुत अच्छी बात आपने रखा। हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो श्रोता हैं या जो हमें सुन रहे हैं दूसरे जिलों से, प्रदेशों से, वे सभी लोग स्वस्थ और निरोग रहें। मनोरंजन तभी अच्छा लगता है जब व्यक्ति स्वस्थ रहे, निरोग रहे, प्रसन्न चित रहे, क्योंकि उदास जो है व्यक्ति को अंदर अंदर खा जाता है, चिंता जो है व्यक्ति का चतुराई कम कर देता है। तो हम लोगों ने ऐसा विचार किया कि हम लोग जो ऑनलाइन कार्यक्रम है उसमें जो सीजनल बीमारियां हैं उसके बारे में रील के तरह, यानी 30 सेकेंड 45 सेकेंड में हम लोग कुछ नई नई बातें बताते चले। चूंकि हमारे यहाँ यह संसाधन उपलब्ध है और स्वास्थ्य विभाग का भी सकारात्मक सहयोग रेडियो रिमझिम को मिलता है कि वह जो भी सूचनाएं आती हैं हमको भी अप टू डेट कराते रहते हैं। तो आरजे के साथ डिस्कशन हुआ, विचार विमर्श हुआ कि स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं जैसे SMS फरमाइश, योर वॉइस योर च्वाइस, हेलो माई च्वाइस, जो भी कार्यक्रम है ज्यादा से ज्यादा हमारे श्रोता जुड़ते हैं उनको समय समय पर बताया जाए कि मच्छर के काटने से क्या हानि है, काला जर क्या है, चिकनगुनिया क्या है, टाइफाइड क्या है। तो हल्का 30 से 45 सेकंड में हम लोग इसको प्रसारित करते हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि स्वस्थ मनोरंजन के साथ छोटी छोटी जानकारियां व्यक्ति के पास होनी चाहिए। अपने जीवन काल में हम ऐसे परिवार को भी देखे कि एक व्यक्ति को शुगर था और उसका जो है शुगर के साथ BP इतना लो हुआ कि स्पॉट डेथ हो गया, लेकिन लोगों के पास जानकारी नहीं था कि भाई घर में जिसका लो शुगर है कम से कम ग्लूकोज रखना चाहिए, कि यदि लो शुगर हुआ तो तुरंत उसके जीभ पर यदि ग्लूकोज को रख दिया जाए तो नॉर्मल हो जाता है। आप रसगुल्ला खाइएगा, चीनी खाइएगा, लो है तो शुगर को हाई करने के लिए तो वह धीरे धीरे असर करेगा, लेकिन ग्लूकोज एक ऐसा चीज है कि मुंह पर जहां आपके जीभ पर आया कि आपका जो लो है वह जो है नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरह की जानकारियाँ गीत संगीत ऑनलाइन कार्यक्रम में हमारे आरजे द्वारा दिया जाता है। और हमारा भी मानना है कि हम लोगों की पहचान क्या है, हम लोगों का अस्तित्व क्या है, अपने श्रोताओं के बल पर है। यदि आप हमें सुनते हैं, पसंद करते हैं, अपनी बातों को हम तक पहुंचाते हैं, तो हमारा भी आकार जो है बड़ा है। लेकिन यदि सुनने वाले कम हो जाएं, तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो जो हमारे अस्तित्व को बनाए रखता है, जो हमसे जुड़ता है, चाहे वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या रेडियो हो, किसी न किसी माध्यम से यदि रेडियो रिमझिम से जुड़ता है, तो उसके स्वास्थ्य के बारे में या उसके रोजगार के बारे में चिंतित होना लाजमी है। इसलिए रेडियो रिमझिम रोजगार समाचार का प्रसारण करता है कि यदि कोई व्यक्ति योग्य है, पढ़ा लिखा है, उससे संबंधित कहीं भी वांट हुआ, तो उसकी जानकारी जो है हम लोग त्वरित गति से उसके पास पहुंचाएं। यदि गांव देहात में कोई है, पति बाहर कमाने चले गए, पत्नी है, बच्चे हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग जानकारी देते हैं। बरसात का दिन है, यदि सांप किसी को छू गया या डस लिया, तो ओझा गुनी के पास न जाकर सीधे सदर हॉस्पिटल में पहुंचे। यह विज्ञान का युग है। और कई लोग जो है आज भी झाड़ फूंक ओझा गुनी के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिससे एक अनमोल जीव जो है चला जाता है। इसलिए अंधविश्वास से दूर रहें, रूढ़िवादिता से दूर रहें, समय के साथ अपने को बदलते रहें। समय जो है जागरूकता का है, ज्ञान हासिल करने का है। हम ज्ञान कहाँ से पाएं, उसकी ललक हर व्यक्ति के अंदर रहनी चाहिए। उम्र चाहे कोई भी हो, लेकिन अनुभव और ज्ञान जो है आपको सबल बनाता है, यह मेरा मानना है। इसलिए रेडियो रिमझिम के कार्यक्रमों में, विशेष करके ऑनलाइन कार्यक्रमों में, हम लोग 30 से 45 सेकंड के अंदर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देते हैं। यदि आपको अच्छा लगता है तो हमारा यह मिशन सफल रहा। यदि आपको ये लगता है कि नहीं, ये जो है गीत संगीत में कहाँ से लाकर ही स्वास्थ्य की बात करने लगे, तो हम असफल हो जाते हैं। हमारा पहला उद्देश्य है कि जो भी हमें सुन रहे हैं, वह स्वस्थ रहें, निरोग रहें, रोजगार के साथ रहें, जब जब समय मिले हमें सुनते रहें। और सबसे अच्छा उम्मीद हम लोग यही करते हैं कि आप सब अपनी प्रतिक्रिया देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार
2: जी सर। अगला संदेश पहुंचा हुआ है सगीर आलम बथुआ बाजार से भेजे हुए हैं। रेडियो रिमझिम टीम को सलाम, हालचाल गोपालगंज, यूट्यूब पर सुनता हूँ। रेडियो रिमझिम का जितना भी सोशल मीडिया अकाउंट है, वह साफ सुथरा और स्वच्छ है। कहने का मतलब यह है कि सही और सटीक सूचना रेडियो रिमझिम पर दिया जाता है। मेरा सुझाव है कि शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम चलाया जाए। तो सर, इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दे।
1: आदरणीय सागिर आलम जी और बथुआ बाजार के सभी निवासियों को रेडियो रिमझिम टीम के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब हमारे श्रोता हमसे संबंधित प्रश्नों को रखते हैं। हमने पहले ही स्पष्ट किया है कि जनहित की बातें हम करते हैं, और पूरा समाज जो है संपन्न रहे, समृद्ध रहे, खुशहाल रहे, उसमें हमारी भी भलाई है और आम जनता की भी भलाई है। मेरा मानना है कि जो भी हमारे जन प्रतिनिधि हैं या सरकारी सेवा में काम कर रहे लोग हैं, उनका पहला उद्देश्य यही होता है कि जो हमें अवसर मिला है आम जनता का सेवा करने का, वह बेहतर ढंग से करे। आम जनता निर्णय करेगी कि हमें रखना है कि हटाना है, लेकिन जो अवसर मिला है उसको तो बढ़िया से उपयोग करना ही चाहिए, यह मेरा मानना है। सागर जी, रेडियो रिमझिम का एकमात्र उद्देश्य रहा है कि किसी भी अश्लील गीतों का हम प्रसारण नहीं करें, मद निषेध संबंधी कोई भी बातें हम न करें और पारिवारिक वातावरण के अनुरूप हम कार्यक्रमों का प्रसारण करें और पूरी विनम्रता और आदर सहित हम जो है रेडियो पर आएं। हर व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन अलग होता है, सामाजिक जीवन अलग होता है, कार्य करने वाला जीवन अलग होता है। मनुष्य का कई प्रकार का जीवन होता है और हर व्यक्ति चाहता है कि सामाजिक जीवन में वह बेहतर से बेहतर कार्य करे। समाज उसका आकलन करते रहता है। हमने कई बार देखा है कि कई जनप्रतिनिधि हैं कि 6-6 बार 7-7 बार एक ही जगह से जीतते गए और कई मुखिया जी ऐसे हैं कि एक बार जीत गए फिर लोगों ने उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया। यह जो है उनके कार्य करने के पद्धति पर निर्भर रहता है। मेरा मानना है कि जो आम जनता होती है वह बहुत ही बुद्धिमान होती है और हर व्यक्ति का आकलन मूल्यांकन करते रहती है। यदि कोई व्यक्ति साक्षर नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह जो है बहुत खराब है, ऐसी बात नहीं है। उसके पास एक ही कमी है कि उसके पास अक्षर ज्ञान नहीं है, बाकी तो सब कुछ है। वह स्वविवेक से निर्णय लेता है। हमारे देश में, हमारे प्रदेश में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जो साक्षर नहीं रहते हुए भी अपने देश और समाज के लिए अद्वितीय काम किए हैं। यदि हम साक्षर हो गए तो यह अच्छी बात है, तो और बेहतर करें। लेकिन आदमी को आत्म केंद्रित नहीं होना चाहिए, आदमी का व्यक्तित्व विकेंद्रीकरण होना चाहिए। जैसा अवसर मिले वैसा कार्य बेहतर ढंग से करते रहना चाहिए। हमने अपने जीवन काल में देखा है कि सरकारी सेवा में रहते हुए कई लोग ऐसे थे जो इतिहास बना दिए। 1982-80 की बात है कि उस समय गोपालगंज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हुआ करता था और उस समय गोपालगंज प्रधान कार्यालय में एक दादा थे जो बंगाल के रहने वाले थे, बंगाली थे, लेकिन सभी लोग प्रेम से उन्हें दादा दादा कहते थे। और वह सुबह 8 बजे बैंक में पहुंच जाते थे। गांव देहात से लोग आते थे, कहते थे कि हमको फार्म भरने नहीं आता है, खाता खुलवाने नहीं आता है। और वह शाखा प्रबंधक थे, सबका फार्म भरते थे, ठेपा लेते थे, रुपया गिन कर देते थे। वह बैंक कर्मचारी थे सरकारी, और फिर शाम को 6 बजे 7 बजे तक वो बैंक में रहते थे और वह बेहतर सेवाएं देते थे। बाद में वो रिटायर हुए, उसके बाद भी कुछ दिन काम किए। लेकिन जो 82-84-90 का दौर था, उस दौर में जहां बैंक बहुत कम था गोपालगंज में, स्टेट बैंक था, ग्रामीण बैंक था और एक दूगो बैंक था, उस दौर में जो थे वह लोगों की जो सेवाएं करते थे, हम लोग उस समय छात्र जीवन में थे, तो उनका नाम और उनका प्रभाव आज भी हमें याद है। और इसी तरह एक व्यक्ति उद्यान विभाग में थे पटना में, और जब हम लोग जाते थे गर्मी के दिन में तो सबसे पहले वह प्यून थे, सबको ठंडा ठंडा पानी पिलाते थे। मान लिया जाए उस समय उद्यान विभाग हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट पुराना सचिवालय में हुआ करता था पटना में, और वह जो है लोग उस समय कोई ज्यादा पहरा नहीं था, आदमी आसानी से पुराना सचिवालय में पहुंच जाता था। आज तो कई तरह की जांचों से गुजरना पड़ता है, वह व्यक्ति लोगों को पानी पिलाते हैं और उस समय धूप भी मई जून का मालूम ही है कि धूप कितना तेज होता है और वह पानी जो व्यक्ति पिया है आज तक याद है। इसी तरह कई लोग जो है अपने जीवन काल में जब भी सरकारी सेवा में रहते हुए अवसर मिला है वह बहुत बेहतर काम किया है, लोगों का भलाई किया है। इसी तरह ट्रेजरी विभाग में गणेश बाबू थे, जो भी जाए उसका सेवा करने के लिए तत्पर रहते थे। यदि इस कार्यक्रम में हम नाम रखें तो बहुत ऐसे लोक सेवक थे, पदाधिकारी थे जो लोगों के लिए तत्पर रहते थे। तो जो अपने कामों को बेहतर ढंग से किया है और रिटायरमेंट भी हो गया है, आज भी लोगों के दिल और दिमाग में रहता है। और जो केवल समझ लिया कि अब तो हमारा सरकारी हो गया, लोग से का मतलब है बीबी बच्चा और हम स्वस्थ तो सब लोग फिट, तो उस तरह के लोगों को जो है लोग उसी तरह भूल जाते हैं जिस जरा पतझड़ के महीने में पेड़ पौधा का पत्ते झड़ जाते हैं, पुराने और नए आ जाते हैं। तो जीवन में जो अवसर मिले किसी भी व्यक्ति को, इसी तरह पुलिस महकमा में भी कई लोग को देखे हैं जो लोगों के सेवा के लिए तत्पर रहे हैं। लोग ठीक है, तरह तरह की बातें करते हैं पुलिस महकमा के बारे में, लेकिन ऐसे ऐसे अधिकारी कर्मचारी और सिपाही भी आए हैं जो लोगों के साथ सकारात्मक व्यवहार के साथ उनके कामों को भी किए हैं। तो जो अच्छा करके चला जाता है लोग उसे याद रखते हैं। और मेरा मानना है कि जिसे जो भी मौका मिला है वह बेहतर ढंग से करेगा तो उसके जाने के बाद भी लोग याद रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है, उषा देवी गोपालगंज स्टेशन रोड से भेजी हैं। लिखी हैं, रेडियो रिमझिम परिवार को मेरा नमस्कार। रोजगार की सूचना देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सुझाव है कि उद्योग विभाग के पदाधिकारियों का इंटरव्यू किया जाए एवं रात का गाना पुराना एक ही चलता है, इसमें बदलाव किया जाए। तो सर, इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें। साथ ही देखें तो मेरे पास अभी कई संदेश हैं, लेकिन समय का इशारा है कि कार्यक्रम को समापन करना चाहिए। तो प्रतिक्रिया देते हुए कार्यक्रम को समापन करें और विदा लें।
1: आदरणीय उषा जी, आपके पूरे परिवार को, गोपालगंज स्टेशन के पास रहने वाले सभी नागरिकों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। काफी अच्छा लगा आपका संदेश। आपने दो प्रश्न रखा। जिला उद्योग विभाग के श्री आयुष कुमार जी से हमने बातचीत किया था और आग्रह किया था कि आप रेडियो रिमझिम के माध्यम से लोगों को बताएं कि उद्योग विभाग द्वारा कौन कौन सी योजना चल रही है, उसका लाभ जो है आम जनता कैसे ले। तो वह बोले कि जब समय मिलता है तो हम आपको जरूर इंटरव्यू देंगे और जब भी उन्हें मौका मिलेगा हम इंटरव्यू के माध्यम से उद्योग विभाग द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से बताएंगे। दूसरी बात आपने रखा, जो बार बार पुराना गीत रिपीट हो रहा है, तो जो हमारे आंतरिक विभाग देखते हैं इंटरनल, हम उनसे इससे संबंधित बातों को पहुंचा देंगे और हमें उम्मीद है कि उसमें सुधार हो जाएगा। और तीसरी और अंतिम बात यह है कि अब चलते चलते सभी श्रोताओं को हम नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे। घड़ी का भी इशारा है कि हम जो है समय जो निर्धारित है आपका संदेश मिला का, उससे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो चलते चलते यही कहेंगे कि अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें और अपने स्वास्थ्य के बारे में हमेशा सजग रहें। यदि शरीर सही है तो सब कुछ सही है, यदि शरीर में क्षति है तो खुशी जो है दुख में बदल जाता है। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति अपने और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें और रेडियो रिमझिम को सुनते रहें। और अंत में यही कहेंगे कि आपका संदेश मिला कार्यक्रम में अपने बातों को पहुंचाते रहें। हम भी आपसे हमेशा कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं और आपके बातों से हम भी सक्षम हो जाते हैं। आज का दिन आपका मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
0: तो श्रोताओं, ये रहा आज का संदेश मिला कार्यक्रम। यदि आप भी इस कार्यक्रम में अपना शिकायत, सुझाव, प्रशंसा या अपने विचारों को भेजना चाहते हैं, तो आप भी भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है रेडियो रिमझिम, बंजारी मोड़, गोपालगंज, पिन कोड 84 14 28, तथा व्हाट्सएप नंबर है 98527 88 291, और ईमेल आईडी है radiorimjim@gmail.com। आप जिस माध्यम से अपने शिकायत, सुझाव या प्रशंसा या अपने विचारों को भेजना चाहते हैं, उस माध्यम का उपयोग करके हम तक पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम से हमें भी दीजिए जाने की इजाजत। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम, जो हमेशा से कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: सुनिए,
7: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
6: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
7: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
6: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
8: ठक ठक।
9: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
10: अच्छा, मिला ही नहीं।
9: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
9: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन, और कैंसर

0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया दिल्ली जाके पैसा।

0: का फायदा।
1: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहां सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
5: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
6: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
7: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
8: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
7: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
7: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
8: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
7: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
8: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: मोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
2: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
3: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
2: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
4: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
6: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
7: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
6: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
7: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
6: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
7: जानकारी है तो कॉल करें 62052 पे।

0: आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
4: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
5: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
6: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
2: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91 626 64 498 पे।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM।
0: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
6: निगाहें मस्ताना।

0: मस्ताना।
1: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
2: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
3: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
4: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
5: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
3: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
2: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
3: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
5: कॉल करें 87-894-18744।
6: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
7: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86-034-48-652 पे।
8: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
9: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
10: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
11: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
10: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंतोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
3: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
4: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
3: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82101 87952। नियम और शर्तें लागू।
5: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करें 6205262112 पे।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
1: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
3: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
3: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
5: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
7: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
8: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
7: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
8: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
5: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
8: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
5: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
8: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
5: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
9: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
10: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
9: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
11: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता,
9: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
11: जानकारी के लिए कॉल करें 99554-94-53
9: और 90-97-61-60-02।

0: की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और कड़े दंड के प्रावधान वाला विधेयक पेश करेगी। राष्ट्रीय हरित अभिकरण ने बेगूसराय के कांवर झील की बिगड़ती पर्यावरणीय स्थिति पर स्वतः संज्ञान लिया, केंद्र सरकार समेत संबंधित पक्षों को जारी किया नोटिस। और बिहार के उभरते खिलाड़ियों वैभव सूर्यवंशी का क्रिकेट और सावन कुमार का हॉकी में शानदार प्रदर्शन, दोनों को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का मिला सम्मान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। इसका नेतृत्व प्रख्यात तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी करेंगे। एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा और इसकी रिपोर्ट के आधार पर आगामी परीक्षाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार आज संसद में परीक्षाओं से संबंधित कड़े कानूनी प्रावधानों वाला एक नया विधेयक पेश करने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। श्री मोदी ने प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता की रक्षा करने और लाखों छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
1: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: कार्यबल में खुफिया ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपंडे का, पूर्व इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ, आईआईटी चेन्नई के निदेशक वी कामकोटी भी शामिल होंगे। इसके अलावा पूर्व शिक्षा सचिव अनीता कारवाल और लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ अमृतलाल मीणा भी कार्यबल का हिस्सा हैं। केंद्र सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। यह विधेयक आज के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह यह विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज नालंदा जिले को कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार शरीफ डेयरी प्रोजेक्ट परिसर में प्रतिदिन 20 मीट्रिक टन क्षमता वाले सुधा दही और लस्सी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर वे कॉम्फेड द्वारा संचालित APCL पेट्रोल पंप और सुधा कैफेटेरिया का भी उद्घाटन करेंगे। समारोह के दौरान सारण, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, मगध, तिरहुत, पटना और कोसी प्रमंडल के लिए 8 पशु एम्बुलेंस का लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री राज्य के 300 खुदरा विक्रेताओं के बीच डीप फ्रीजर का वितरण भी करेंगे। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री नंद किशोर राम भी मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए बिहार शरीफ से निरंजन कुमार।
0: राज्य सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत कराए जाने वाले कार्यों की प्राथमिकता सूची तय कर दी है। एक रिपोर्ट।
3: योजना के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण, भवन मरम्मत, शौचालय, रैंप, चार दीवारी, रसोई शेड, खेल मैदान और डिजिटल ग्रामीण पुस्तकालय सह उत्थान केंद्र बनाए जाएंगे। इसके साथ ही गांवों में पक्की गली नाली, लघु नहरों और जल स्रोतों का जीर्णोद्धार, महिला स्वयं सहायता समूह के लिए कार्यशेड, कौशल विकास केंद्र और ग्रामीण हाट विकसित किए जाएंगे। मुक्ति धामों का सौंदर्यीकरण, आहर पोखर और तालाबों का जीर्णोद्धार, अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई इकाइयों की स्थापना तथा व्यक्तिगत पशु शेड निर्माण भी प्राथमिकता में शामिल हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को इन योजनाओं को मिशन मोड में लागू करने के निर्देश दिए हैं। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने बेगूसराय स्थित एशिया की सबसे बड़ी गोखुर यानी ऑक्सबो झील माने जाने वाली कांवर झील की बिगड़ती पर्यावरणीय स्थिति पर स्वतः संज्ञान लिया है। NGT ने इस मामले में केंद्र सरकार सहित संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: बूढ़ी गंडक नदी के घुमाव से बनी इस अनोखी ऑक्सबो आर्द्रभूमि के संरक्षण को लेकर अधिकरण ने संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। NGT के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद की पीठ ने कहा कि चेरिया बड़ियारपुर स्थित कांवर झील को वर्ष 2020 में रामसर साइट का दर्जा मिला था। पहले लगभग 63 वर्ग किलोमीटर में फैली कांवर झील अब जलस्तर घटने और अतिक्रमण के कारण कई छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित होती जा रही है। पीठ ने मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि जलस्तर में लगातार गिरावट और पारिस्थितिक क्षरण के कारण झील में मछलियों की संख्या तथा जैव विविधता में भारी कमी आई है। कई स्थानीय मछली प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है या झील के कुछ हिस्सों से पूरी तरह गायब हो चुकी हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए बेगूसराय से विजय कुमार झा।
0: प्रदेश में ग्रामवार गन्ने की खेती का रकबा निर्धारित करने के लिए राज्यव्यापी सर्वे की शुरुआत की गई है। गन्ना उद्योग विभाग ने सभी जिलों के एक पदाधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। GPS तकनीक और ऐप आधारित डेटा संग्रह के माध्यम से प्रत्येक खेत और गन्ने की किस्म का विवरण जुटाया जा रहा है। विभाग का उद्देश्य कम रकबे वाले क्षेत्रों में गन्ने की खेती को बढ़ावा देना है। अभियान के दौरान गन्ना किसानों की IT भी बनाई जाएगी। देश भर में आयुर्वेद शिक्षा को गुरुकुल पद्धति से जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग NCISM के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर मनीषा कोठेकर ने पटना के ज्ञान भवन में आयोजित राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पताल पटना के शताब्दी समारोह में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था के तहत 10वीं के बाद विद्यार्थी 2 साल का आयुर्वेद पाठ्यक्रम कर सकेंगे। इसके लिए पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है और मंत्रालय की मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश के दो प्रतिभाशाली खिलाड़ियों वैभव सूर्यवंशी और सावन कुमार ने शानदार प्रदर्शन के साथ देश की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का सम्मान पाने का गौरव हासिल किया है। क्रिकेट में जिम्बाब्वे को तीन टी20 मैच की सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले वैभव को पहला प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार मिला है। वहीं ओमान के मस्कट में आयोजित युवा हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से पराजित कर स्वर्ण पदक जीता। इस जीत में पटना निवासी सावन कुमार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सर्वश्रेष्ठ गोल रक्षक तथा फाइनल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का सम्मान हासिल किया। मॉनसून के कमजोर पड़ने से राज्य में बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। मौसम विभाग ने कहा है कि कल से एक बार फिर मॉनसून की गतिविधियों में तेजी आएगी। इधर विभाग ने आज राज्य के उत्तरी और दक्षिण हिस्सों में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की है।
1: दिनांक 27 जुलाई को राज्य के समस्त उत्तर एवं दक्षिण पश्चिमी भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि अररिया और सुपौल जिले में कुछ स्थानों पर आज सुबह अच्छी बारिश हुई है। प्रदेश में बाढ़ के दौरान होने वाली बीमारियों के कारण और उपचार पर विशेष अध्ययन कराया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने यह जिम्मेदारी यूनाइटेड किंगडम की संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड केयर रिसर्च को सौंपी है। पायलट परियोजना के तहत मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पूर्वी चंपारण जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अध्ययन किया जाएगा। अध्ययन के दौरान बाढ़ का उच्च रक्तचाप, मधुमेह, श्वसन रोगों और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया जाएगा। इस अभियान में संबंधित पीएचसी, सीएचसी, आशा कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य कर्मियों को जोड़ा जाएगा और उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उत्तर रेलवे के प्रधान मुख्य यांत्रिक अभियंता टिम्पी गर्ग पूर्व मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक होंगे। वे 1 सितंबर को हाजीपुर स्थित पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय में पदभार ग्रहण करेंगे। श्री गर्ग वर्तमान महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह का स्थान लेंगे, जो 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। प्रदेश में छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने 350 लोगों को गिरफ्तार किया है। पटना से 258 आरोपितों की गिरफ्तारी हुई है। अब तक जेल भेजे गए प्रमुख लोगों में भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ, पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव और 4 छात्र नेता शामिल हैं। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। इस संबंध में उन्होंने पटना के पाटलिपुत्र थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने सनहा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पटना के राजीव नगर से एसटीएफ और पश्चिम बंगाल पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में 2,67,00,000 रूपये की साइबर ठगी के आरोपित नीलमणि को गिरफ्तार किया है। आरोपित पर हावड़ा के एक कारोबारी को ऑनलाइन निवेश के नाम पर ठगी करने का आरोप है। सहरसा जिले में शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची 2 पुलिस टीमों पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। इन घटनाओं में 1 थानाध्यक्ष, 2 जमादार

दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, हर जिले के शहरी क्षेत्र में शिक्षक सरप्लस, अब गांवों में होगी तैनाती। प्रभात खबर ने लिखा है, राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू ने दिलाया भारत को पहला गोल्ड। राष्ट्रीय सागर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, रोहतास और दुर्गावती में इको टूरिज्म को बढ़ावा देगी सरकार। आज अखबार समेत सभी समाचार पत्रों ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार अभियान की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी होंगे अध्यक्ष। केंद्र सरकार आज लोकसभा में प्रश्न पत्र लीक के मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और कड़े दंड के प्रावधान वाला विधेयक पेश करेगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने बेगूसराय की कांवड़ झील की बिगड़ती पर्यावरणीय स्थिति पर स्वतः संज्ञान लिया। केंद्र सरकार समेत सभी संबंधित पक्षों को जारी किया नोटिस। और बिहार के उभरते खिलाड़ियों वैभव सूर्यवंशी का क्रिकेट और सावन कुमार का हॉकी में शानदार प्रदर्शन, दोनों को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का मिला सम्मान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सवा चार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9974434468 पे।
6: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
7: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
6: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
7: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
6: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
7: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
8: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
6: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रमजम 90.4 FM। और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बज चुके हैं और बिल्कुल समय के साथ हाजिर हो चुकी हूं आप सभी के बीच आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माई चॉइस के साथ। यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन

0: सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो, नमस्कार मैम।
2: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: जी मैम, कैसे हैं?
2: मैं तो अच्छी हूँ, बताइए आप कैसे हैं?
1: अभी मैं जटास मैम, आज लेट से बहुत स्टार्ट हुआ। जी मैम, कितने बजे स्टार्ट हुआ है?
2: यही बस 6-10 मिनट पहले।
1: जी मैम, सफरज अली बोल रहे हैं गोपालगंज से। हमेशा नहीं जुड़ पाते, जब टाइम मिलता है तब जुड़ते हैं ना, इसलिए सब कुछ देखना होता है ना मैम इसी में।
2: ये तो बात सही है, सब कुछ देखना है।
1: जी मैम, आपका नाश्ता हो गया?
2: हाँ, हमारा तो हो गया। और आपका?
1: जी हम लोग का भी हो गया है। आज हमारा दोस्त फरमाइश करेगा गाना का।
2: अच्छा
1: जी मैम, बात कराएं?
2: बिल्कुल कराएं। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: जी, वो कौन सा सॉन्ग था?
2: नाम बता दीजिए अपना।
1: मेरा नाम दानिश है।
2: अच्छा।
1: और आपका?
2: मेरा भारती।
1: अच्छा है, कोई निक नेम आपका?
2: नहीं, बस भारती।
1: बस ऐसे आगे पीछे कुछ नहीं?
2: भारती कुमारी हूँ।
1: वो तो आप सॉन्ग सुना दो मेरे को, वो कौन सा? पल पल दिल के पास, वो ओल्ड वाला सुनाना, नए वाले नहीं सुन के सुकून मिल रहा है। और आप भी सुन लें। मैम, हम रेडियो का बहुत पुराने वाला फैन है, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं रेडियो में क्या रखा है, लेकिन हम बोलते हैं बहुत कुछ है।
2: वो तो है, रेडियो में सब कुछ जुड़ते हैं एक साथ, अच्छा लगता है।
1: इसका नशा ही अलग है। चलिए एडवांस में आपको धन्यवाद बोलते हैं। आज तो नहीं बजेगा,
2: कल
1: बजेगा मैम। ठीक है मैम, धन्यवाद।
2: ओके, रेडियो रंजन कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और आपका भी।

0: जी नमस्ते
1: नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
0: दाल भी सुंदर दोस्त।
1: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका?
0: ठीक है, अपन बताइए।
1: मेरा भी ठीक है।
0: धूप बहुत हो गई था।
1: इधर तो अभी उतना नहीं है, ठीक है।
0: परदेसी जाना है मुझे छोड़ के।
1: हम किसी को डेडिकेट है? ओके, तो चलिए आपका गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 एफएम।
0: जी नमस्ते।
1: नमस्ते।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, आप तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
4: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com। ओम नमः शिवाय।
6: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
4: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
6: दूसरा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ तारापीठ जगन्नाथपुरी गंगा सागर काली घाट कोलकाता रजरप्पा राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: तीसरा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ गया बोधगया वाराणसी अयोध्या गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
6: चौथा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ गुवाहाटी माँ कामाख्या धाम दार्जिलिंग सिलीगुड़ी गंगटोक जनकपुर अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
6: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
4: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
6: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
4: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
6: बोलबम हर हर महादेव।
7: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे शुगर नायका कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स होम डेकोरेशन टॉयज एंड गिफ्ट्स ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
8: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034-48652 पे।
9: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
10: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
9: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
11: Pick it up, pick it up.
12: Hello.
11: Pick it up, pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
12: Hello.
3: आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो, नमस्ते मैम।
12: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
11: मैम हमको गाना सुनना है।
12: गाने के बोल बता दीजिए।
11: मैम भरत तिवारी पे दूसरा सॉन्ग बजाइएगा, जो बजाती है ना वाला नहीं, दूसरा बजाइएगा।
12: ओके, गाने के बोल बता ही देती तो अच्छा होता।
11: नहीं मालूम है।
12: अच्छा, चलिए देखते हैं, उनका दूसरा सॉन्ग होता है तो मैं बजा दूंगी।
11: ओके,
12: और गाना किसी को डेडिकेट भी है?
11: मैम आपको, रेडियो रिमझिम परिवार को, मेरे घर वालों को।
12: ओके, वैसे आपका नाम?
11: रुखसार अंसारी।
12: ओके, तो चलिए फिर आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
0: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू मधुसूदन जिला गुना मध्य प्रदेश से।
1: जी कैसे हैं आप?
0: बढ़िया है रहेंगे जी। हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है, और आपके यहाँ हो रही है कि नहीं हो रही है?
1: नहीं, हमारे यहाँ तो बारिश नहीं हो रही है।
0: हमारे यहाँ तो रात भर से गिर रहा है और अभी पानी गिर रहा है।
1: अच्छा,
0: जी
1: बढ़िया है।
0: आ जाइए, खाना खा रहे हैं, दाल बाटी बनी है आज हमारे यहाँ पर।
1: अच्छा,
0: जी
1: आइए फिर। तो गाना कौन सा सुनना है आपको?
0: जी पिक्चर का नाम है हीरो नंबर वन, इसका कोई सा भी सुना दीजिए।
1: हीरो नंबर वन?
0: गोविंदा वाली
1: हाँ
0: जी।
1: ओके। और सॉन्ग किसी को डेडिकेट किया?
0: जी मैडम जी, आपको है गोपाल ओझा जी, है दीपेन धाकड़े भगवासा से, गजरा सिंह लोधी है लेला जी से। थैंक
1: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।
0: यू मैडम जी।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
5: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
5: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
5: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
7: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
8: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
7: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
8: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
7: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
8: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
7: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-6750।
9: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
10: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
9: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
10: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
11: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
9: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
11: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
9: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
11: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
12: आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-9914। जी हाँ, 8029-9914। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो, हेलो नमस्कार।
14: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीत 90.4 एफएम में।
13: इसके लिए दिल से धन्यवाद है भारती जी को। और सब नहीं है, कैसे हैं?
14: अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं?
13: मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और सब नहीं, अपना घर परिवार में और रेडियो रंजीत पूरा परिवार कैसे हैं आप लोग?
14: रेडियो रंजीत में सब कोई ठीक है और मेरे घर परिवार में भी सब ठीक है।
13: जी अच्छा रहिए, खुश रहिए, स्वास्थ्य यही कामना है। और मौसम कैसा है उधर?
14: मौसम तो अभी ठीक है
13: जी। इधर तो हमारे यहाँ बहुत अधिक धूप अभी निकला हुआ है जी।
14: हेलो,
13: हाँ हेलो।
14: आज कौन सा गाना सुनना है आपको?
13: और नाम नहीं पूछे हैं कि मेरा आज नाम आप ही बताइए, मैं कौन बोल रहा हूँ? भारती जी, रामविलास प्रसाद कुहा क्रीपुर बगहा पूर्वी चंपारण से। आज गाना सुनना है, फिल्म का नाम है जीना तेरी गली में, भोजपुरी सॉन्ग है। और गाने का बोला है तू दीवानी है उतर आ गया।
14: अच्छा, और गाना किसी को सुनाना भी है?
13: जी, सबसे पहले भारती जी आपको सुनाना चाहता हूँ। और दोस्त में हुए संजय साजी, दीपक कुमार दास जी, रामचंद्र मुखिया जी, अंचल कुमार जी, कंसराज जादू जी, पारसनाथ कुशवाहा जी, नगीना प्रसाद कुशवाहा जी, धनलाल प्रसाद कुशवाहा जी, राजा बाबू विकास, अभय कुमार, बी कुमार, अजय कुमार, राजू कुमार, उत्तरा कुमार, आदर कुमार, सोनू कुमार, बबलू प्रसाद कुशवाहा जी, रविंदर प्रसाद कुशवाहा जी, और गोपालगंज जिले के संतरा कुशवाहा जी, काजल जी, गुड़िया जी, नेहा जी, मुकान जी, उदिता जी, सुजीता जी, सुजी मोहन जी, नवीन सिंह जी, जितेंद्र जी, जी और रेडियो रिंगिंग सुन रहे सभी श्रोता बंधु को सुनाना चाहता हूँ।
14: ओके, तो फिर आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगिंग 90.4 FM।
13: धन्यवाद,
14: वेलकम।

हमरा यार के चेहरा के दीदार दे दा ए चांद, हमरा यार के चेहरा के दीदार दे दा, तू हमरा बेचैन दिल के करार दे दा। लुट गईल बानी हम अंधरिया में, बस थोड़ा सा रोशनी उधार दे।

0: हेलो, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
1: गाना सुन लो।
0: नाम बता दीजिएगा।
1: ज्योतिष कुमार भाकर, जिला भागलपुर, ग्राम।
0: और गाना कौन सा सुनना है आपको?
1: साजन का घर।
0: इस मूवी का कौन सा सॉन्ग?
1: सावन आया बादल है।
0: और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
1: जिनके के लिए रहेगा।
0: ओके, तो चलिए आपका गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 एफएम।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आएं कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
7: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
6: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
7: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
9: Now pick it up, pick it up.
10: Hello.
9: Now pick your phone up.
10: Hello.
9: Pick it up, pick it up.
10: Hello.
9: Now pick your phone up.
1: आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो
12: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
11: नमस्ते मैडम जी, मैं गोपाल ओझा बोल रहा हूँ, ग्राम ककवासा, जिला बनारस।
12: जी कैसे हैं आप?
11: बढ़िया है मैडम जी। उस दिन फोन लगाया था, बुधवार के दिन, वो गाना तो आया ही नहीं मेरा।
12: नहीं आया तो आज आएगा।
11: तक आएगा वो, बुधवार लगाया था मैंने।
12: आज आएगा क्योंकि अभी उसमें का बुधवार का कुछ कॉल बचा हुआ, आधा बच गया है और उसके बाद ये वाला जो कॉल है ये कल ही आप
11: जी। गाना सुनना है वो दामनी फिल्म का।
12: बता दीजिए कौन सा?
11: दामनी फिल्म का है वो, बिन साजन झूला यूनू मैं बाधा कैसे बोलूं, साधना सरगम कुमार सानू की आवाज में ये गाना।
12: ओके, और गाना किसी को डेडिकेट है?
11: डेडिकेट है जीतन दाखड़ है, सुनील साहू है, ज्योति साहू जी है, और आपके लिए भी है डेडिकेट गाना।
12: गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: हेलो,
1: भारती मैम नमस्कार। हेलो
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
1: जिला देवघर झारखंड से मैम।
0: हाँ जी, कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं मैम?
0: हम भी अच्छे हैं
1: जी। आज गाना सुना दीजिए मैम, तारालाल यादव का बोलबम गीत।
0: कौन सा?
1: ड्राइवर अभी नया बात।
0: और गाना किसी को सुनाना भी है
1: जी? सबसे पहले मैं आपको और जितने भी रेडियो रंजन के प्यारे प्यारे श्रोतागण है देश विदेशों में सबको, और हमारे काफी साथी मदन कुल हैं, राजकुमारी हैं, कृष्ण कुल हैं, कृष्ण प्रसाद यादव हैं, शशिधर प्रसाद यादव हैं, इन सब सारे साथियों को डेडिकेट करना चाहता हूँ मैं।
0: ओके, चलिए फिर आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 एफएम
1: जी। कॉल रिसीव करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
0: वेलकम।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
5: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
6: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक

0: अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
0: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
0: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
0: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
0: बोलबम हर हर महादेव।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजन 90.4 एफएम में।
6: नमस्ते मैम।
5: नमस्ते,
6: कैसी हैं मैम?
5: मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
6: हम भी ठीक है।
5: तो नाश्ता हो गया आपका?
6: हाँ हो गया आपका?
5: मेरा भी हो गया है।
6: और सब ठीक है ना? और मौसम कैसा है?
5: मौसम अभी तो ठीक है। और बताइए क्या हो रहा है अभी?
6: अभी तो आपके पास कॉल लगा रही थी।
5: अच्छा,
6: आपके मोबाइल में पैसा नहीं था?
5: हाँ, अभी रिचार्ज हुआ है।
6: हम लगाए थे तो नहीं कॉल लग रहा है। पैसा नहीं था आपके मोबाइल में, तो रख दिए थे, सिम से लगाए थे, बिजी बताने लगा।
5: तो कौन सा गाना सुनना है आज आपको?
6: पते लाज भांजू तेरी आंख मेरी फिर भी रोइना।
5: एक बार और बता दीजिए।
6: पते लाज भांजू तेरी आंख मेरी फिर भी रोइना।
5: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
6: जी मैम, आपको और टोनी मैम को, और मेरी दीदी है उनको, और छोटे भाई है, और रेडियो रिमझिम सुनने वाले सभी दोस्तों को और सभी आरजी को।
5: ओके, तो चलिए आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 91.4 एफएम।
6: मैम कब तक में बच जाएगा?
5: कल या परसों?
6: ठीक है, तब बाय मैम।
5: बाय बाय।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
0: जी भारती जी।
1: हाँ
0: जी, हम रखे हैं भारती
1: जी, कैसे हैं आप?
0: बढ़िया। कब से फोन लगाया था, लगे नहीं रहा था। बिजी इतना तो प्रधानमंत्री जी का फोन बिजी नहीं रहता।
1: क्या ही कीजिएगा।
0: कस्टमर सब ज्यादा हो गया है। सब और बोलिए, सब क्या हो रहा है? खाना पीना हो गया है?
1: हाँ, खाना पीना हो गया है। और आप सभी का?
0: हम तो अभी जस्ट खाए और खा के फोन लगा रहे।
1: अच्छा, तो कौन?
0: आधा घंटा हो ही गया लगाते लगाते। जब लगा रहे थे बिजी।
1: तो जस्ट अभी 11:30 से स्टार्ट हुआ है।
0: लेट हुआ है ना आज।
1: कौन सा गाना सुनना है?
0: गाना तो सुनना था नीलकमल सिंह का।
1: गाने के बोल?
0: बगल शहर के, इतनी शहर का है ना।
1: और गाना किसी को सुनाना भी है?
0: लाला जी है, हरिंदर, पप्पू, भलेगा मेरा दोस्त और पूरा ऑल फैमिली रेडियो रंजन जितने सुनने वाले हैं सब।
1: अच्छा, तो चलिए आपका गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।
0: ठीक है, ये अभी तू बज रहा था
1: जी?
0: रिपीट चल रहा अभी?
1: नहीं, ये इसके पहले वाला जो दिन को कॉल रिकॉर्ड हुआ था ना, वही है, बुधवार वाला है।
0: ठीक है।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटते क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
6: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
7: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
8: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
0: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी। अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
8: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
7: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
8: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
0: कॉल करें 87-894-18-744।
9: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
10: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
11: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
12: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434-03, 62042434-03।
13: Now pick it up, now pick your phone up.
14: Hello.
13: Pick it up.
14: Hello.
13: Now pick your phone up.
14: Hello.
15: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो।
16: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-11। जी हाँ, 80-29-94-11। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
17: हेलो मैडम
18: जी, नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीम 90.4 FM में।
17: आपको भी नमस्ते। मैं मनान बोल रहा हूँ कपरपुरा से। आपका तो प्रोग्राम हम कल देख सुने हम, है ना, बहुत अच्छा लगा। वो क्या बोलते हैं, हेलो माय चॉइस ना,
18: योर वॉइस योर चॉइस।
17: हाँ योर वॉइस, हाँ वही तो, बोलना नहीं आता हमको।
18: कोई नहीं,
17: आयट के बाद भी लगाए हम, एक आदमी से जब बात कर रही थी उसके बाद हम लगाए तो फिर मतलब लग नहीं रहा है। जो फिर जो रिंग होता है, मतलब बहुत कल परेशान हुआ आपसे बात करने का, बहुत परेशान बढ़ गया मोबाइल लेकर, लगाते लगाते थक गया, पर कब नहीं लगेगा, ऐसा क्यों मैडम?
18: नहीं नहीं, कॉल और वो व्हाट्सएप का मैसेज दोनों साथ में देखना होता है, तो कभी कॉल का देखते हैं लोग, कभी व्हाट्सएप वाला देखते हैं लोग।
17: तो देखा है लो, तो मतलब हमारा मन मिस हो गया, एक नहीं दस भी नहीं, 20 भी अगर मिस हो जाए रिंग तो फिर दुर्भाग्य की बात है ना। तो वही मैं सोच रहा हूँ कि मेरा कॉल क्यों नहीं उठ रहा है, और लोगों का उठ जा रहा है, है ना, मेरा उठ नहीं रहा है। देखिए हमारा ट्रिपल ऑन है लास्ट में, तो आप उठाइएगा तो ठीक है, नहीं तो हम तो मैसेज हमको लिखने को नहीं होता है, तो इसलिए हम नहीं लिखे हैं मैसेज हम, तो इसीलिए हम कॉल का जो नंबर 72 77 16 65 98 तो उसी पर हम कॉल कर रहे थे, लिंक कर करके परेशान हो गए, नहीं लगा हम सोचेगी भारती मैडम से आज थोड़ा सा इसमें भी हमको ये गाना सुन ले, है ना, बहुत ख्वाहिश था हमको सुनने का लेकिन हुआ ही नहीं, अगर हम ही हार मान लिए तो। तो अच्छा एक बात है कि आपका प्रोग्राम बहुत हमको अच्छा लगा और साथ में आप गाना भी गा लेती हैं, ये भी हमको अच्छा लगा, थोड़ा गुनगुना लेती हैं तो भी अच्छा लगा हमको, जो अच्छा लगेगा तो अच्छा ही का तारीफ करेगा ना दूसरा होगा। तब आज ये 9 बजे वाला और 5 बजे वाला में कौन सा गाना सुनवाइएगा मैडम,
18: बता दीजिए आप।
17: वो गाना सुना दे साथिया नहीं जाना, सही गाना है जी ना लगे, तो सही तरफी का गाना है ये।
18: अच्छा
17: हाँ, तो साथिया नहीं जाना जी ना लगे ऐसा ही गाना है।
18: ओके,
17: तो अगर ये गाना हो तो वो सुनवा दीजिएगा, नहीं तो अपने पसंद से कोई गाना सुनवा दीजिएगा मैडम।
18: ओके,
17: तबीयत भी सही रहता है तो हमको यही गाना सुनवा दीजिएगा मैडम, है ना।
18: ओके,
17: रख रहा हूँ मैडम,
18: फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सतीश रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते,
1: कैसे हैं मैडम जी?
0: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
1: मैं
0: हेलो।
1: हाँ, पता नहीं समाचार कैसे?
0: समाचार तो ठीक बाबे,
1: पूरा फुल रिंग हो तो दोबारा भजन का उठानी।
0: अच्छा,
1: हमारे गनवा का दिल सब गनवा बजा दे।
0: ना ना, रोबो बाजे लगी ना, रोबो सुने नी नो
1: नहीं के बजा
0: बाजल बना। तो बुधवार के जो रिकॉर्ड भइल होई तो आधा बाज गिल बा, आधा आज बाजे, ठीक बा। और एक पहले के राउंड जितना कॉल बा सब बाजल बाबे।
1: दूध के सोमवार के दोनों के बाजल,
0: ना ना
1: शुक्रवार के बाजल बा,
0: सोमवार वाला भी बाज गेल हुई। कहे से की बुधवार के हम कॉल बजावते नहीं और हमने की एगो कॉल ना छोड़े नहीं सन, सब केहू के कॉल बजा नहीं सन।
1: सुने नहीं ना, सब पूरा लोग सुन ले, शुरू से अंत तक ले। 5 बजे भोर से 10 बजे रात तक ले चालू रहे, जितना थी उतना सब सुन लेने।
0: अच्छा ठीक है, और देख लेते नहीं आज के कॉल में तो होकर सारी कहे थी और बाजल नहीं खे। आज कौन सा गाना सुनेगा? हेलो।
1: हाँ, गाना सुना दे प्रेम रो का।
0: और गाने की बोल?
1: गाने की बोल है
0: गाना किसी को सुनाना भी है
1: आपको? रेडियो
0: गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमिशन 90.4।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
2: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
1: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
3: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
6: भरोसे वाले से लेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
7: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
8: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
9: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
10: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
9: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
11: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
9: कॉल करें 85070-32042 पे।
12: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
13: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
14: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
13: अरार मोड़ एसपी कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
14: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
13: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
14: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
13: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
14: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
13: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
14: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
15: Pick it up, pick it up.
16: Hello.
15: Now pick your phone up.
17: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
18: हेलो
19: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
18: अस्सलाम वालेकुम।
19: वालेकुम अस्सलाम।
18: रेशमा बोल रहे हैं पठानपुर से।
19: कैसी हैं?
18: ठीक है, आप अपना बताइए।
19: बस हम भी ठीक हैं।
18: ठीक है जी। कौन मैम बोल रहे हैं तो बताइएगा, घाटी में।
19: हाँ,
18: आप सब सुनाइए।
19: और सब तो ठीक है, बताइए क्या हो रहा है अभी?
18: अभी कॉल लगा रहे हैं, लग गया, जल्दी लग गया।
19: अच्छा, टाइमिंग भी तो 12 बजने वाला है। टाइम भी तो ज्यादा हो गया है, 12 बजने वाला है।
18: हाँ।
19: तो आज कौन सा गाना सुनना है आपको?
18: सुना दीजिए, छोड़ोगे मेरा दिल मुझे गरबा करोगे।
19: एक बार और,
18: छोड़ोगे मेरा दिल मुझे गरबा करोगे।
19: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
18: आपको सुनाएंगे, सोनी मैम को, गुनगुना मैम को, जितना लोग सुनते हैं रेडियो सर को।
19: ओके, तो चलिए फिर आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझ 91.4 असम में। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हेलो
0: हेलो,
1: नाम बता दीजिए अपना। कौन सा गाना सुने एक बार? खेसारी लाल के। खेसारी लाल के कौन सा गाना सुने एक बार?
0: कौन सुना गया?
1: अच्छा, और नाम क्या हो रहा?
0: हेलो,
1: ठीक भावे तब गाना क्यों सुनाऊ के बाद
0: सब कुछ सुन ले।
1: अच्छा चलिए, गाना प्ले करते नहीं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रिमझ 91.4 असम।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
4: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
3: और लाइट बिल के
4: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
10: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
11: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
12: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
11: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
12: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
10: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
9: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R, अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
10: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
9: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
10: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
10: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
9: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
13: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
11: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
13: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
11: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
13: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
14: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो
16: हेलो
15: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 90.4 एफएम में। वालेकुम अस्सलाम,
16: क्या हाल है?
15: मेरा ठीक है, आप अपना बताइए।
16: बोल, हमको गाना सुनना है।
15: बता दीजिए कौन सा।
16: हमको नमक लाल जम का गाना है।
15: और गाने के बोल
16: घुंगरू बांध मेरा
15: नाती। एक बार और बता दीजिएगा
16: गाना। पद घुंगरू बांध मेरा नाती थी।
15: ओके, सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
16: सबसे पहले आपको और जितने रेडियो रूम सुनने वाले को गाना सुनाना चाहता हूँ।
15: तो चलिए फिर आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
1: जी मैडम। हाँ जी मैडम बोलिए।
0: नाम बता दीजिए अपना।
1: कुंडा जिला से बोल रहे हैं, जीतेंद्र धाकर ककवा था गाँव से।
0: तो कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है मैडम, काम कर रहे थे आपकी कॉल का इंतजार कर रहे थे, कब लगी कब लगी लगा।
0: तो कौन सा गाना सुनना है आज आपको?
1: गाना सुनना है वो मोहरा पिक्चर का गाना है, नाम कजरी धार ना बूझियो की हार, कितनी सुंदर हो।
0: और गाना किसी को सुनाना भी है?
1: हाँ जी, गोपाल ओझा है गाँव से, सुनील साहू है, ज्योति सिंह है, और राकेश अमन ठाकुर राम धन, फिर इनको डेडिकेट रहेगा पूरी फैमिली को, रहेगा रंजन फैमिली को।
0: तो चलिए आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 एफएम।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
2: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे मेरे साथ यानी आरजे भारती के साथ, और अब हमारे स्टूडियो की घड़ी के कांटे इशारा कर रही हैं, समय हो गया है शो की समाप्ति का। यदि आप भी चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना, तो सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को सुबह 11 बजे से 12:30 के बीच हमारे नंबर 80029994 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल आज हमें इस शो से दीजिए जाने की इजाजत, मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और अपनों का भी, सुनते रहें रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।

0: का संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9522874088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं।

0: करते हैं।
1: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता।
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
1: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
0: और 90971602।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराएं नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहां है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहां दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
6: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
7: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
6: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
7: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
6: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।
8: Excuse me boss, you have a text message।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो FM 94.4 पे समय 9:19 हो रहे हमारी स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है एक छोटा सा, जिसमें अपना नाम और गाने का नाम और कहां से मैसेज कर रहे हैं उस गाने का नाम बताना है, ताकि आपकी फरमाइश आपको हम सुना सकें। तो यदि आप सुनना चाहते हैं, पुराने गाने पसंद करते हैं, तो बिल्कुल इस शो में अपने पसंद फरमा सकते हैं और सुन सकते हैं, और किसी को सुनवाना चाहते हैं जिन्हें जानते पहचानते हैं उन्हें सुना भी सकते हैं। और कुछ मैसेज हमारे पास पहुंचे हुए, तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तब तक अपना भी कार्यक्रम शुरू करें मैसेज टाइप करने का और हमारे पास सेंड करने का। यहाँ पे आगे पहला मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो हाय सर जी, नमस्कार सर जी, कैसे हैं सर जी। मैं प्रीति रैदास, विलेज लकड़ी दरगाह, डिस्ट्रिक्ट सिवान, बिहार से, और आज मेरी एक वीक कंप्लीट हो चुकी है, तो आज मुझे सॉन्ग सुनना है। सॉन्ग नेम है छम छम नाचूंगी फ्रॉम द मूवी दिल परदेसी हो गया से। मैं पहले इसलिए फरमाइश की हूँ कि ताकि मैं जा रही हूँ खाना खाने। ओहो, चलिए खाते रहिए और गाने के साथ भी इंजॉय करते रहिए, और हम आपके गाने को प्ले करेंगे। फिलहाल आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो राम राम, गुड इवनिंग सोनू भाई, केम छो। फिल्म राज सॉन्ग मुझे तेरे जैसी लड़की, डेडिकेट टू ऑल रेडियो दोस्तों को, MD नौसाद एंड रेडियो फैन पंकज नाम से मोहब्बत करने वाले सभी दोस्तों को। तो चलिए आपके भी गाने हम प्ले करेंगे। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा, हेलो हाय, कैसे हैं आप सर। सॉन्ग देख के दिल को मेरा चैन आता है, डेडिकेट सिस्टर काजल, पिंकी, श्रेया, सनम और सभी को। और इस मैसेज को करती है मनीषा फ्रॉम मामा से। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। आगे मैसेज पहुँचा।

हुआ है, लिखा गया है कि हेलो हाय सॉन्ग सुनना है तो बिल्कुल सुनाएंगे। फिलहाल अपने गाने का नाम बताएं। और इस मैसेज को करती हैं निशा। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सुनो भैया, मैं आदित्य पांडे राजीव नगर गोपालगंज वार्ड नंबर 14 से, और गाना सुनना है तो बिल्कुल सुनाएंगे। फिलहाल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो हाय सुनो सर जी, कैसे हैं आप, हमें भी गाना सुनना है, अनूप यादव लुधियाना से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और अनूप यादव जी, हमें लगता है कि आपके गाने हम सुनाए हैं, और यदि आपके गाने सुनाए हैं तो थोड़ा सा आप सब्र करें, दूसरों को भी सुनने का मौका दें, क्योंकि आज सप्ताह का अंतिम दिन है, तो अंतिम दिन तो सुन पाए। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि पुरानी किताबों में सूखे गुलाब लिए बैठा हूँ, होठों पर सिगरेट की आग लिए बैठा हूँ, वह खुश है किसी गैर की बाहों में, अपने कमरे में शराब लिए बैठा हूँ। सुनो भाई नमस्कार, मैं भी शो में आ गया हूँ रोहित देहरादून से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और क्या हो गया है आज। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सर, हम सफरोज अली आकिल टोला से, और हमको गाना सुनना है तो बिल्कुल सुनना आएंगे, और फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ। अब आगे बढ़ते हैं, मैसेज तो आते जा रहे हैं तो मैसेज को रुकते हैं, गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहले गाने की फरमाइश प्रीति रैदास की तरफ से पहुंची है, और गाने का बोल छम छम नाचूंगी। सुनते हैं हम सभी रेडियो रमझम 90.4 FM पे।

0: रेडियो एमसीएम 8.4 एफएम सुन रहे हैं बिल्कुल। और आगे मैसेज कई पहुंचे हुए तो आगे बढ़ेंगे, आगे कुछ मैसेज है तो मैसेज शामिल करेंगे। और आगे मैसेज लिखा गया है कि बहुत बहुत धन्यवाद, और इस मैसेज को पहुंचाने वाले विनय कुमार सिंह विद्वेश, फिल्म आपकी कसम गाना का बोल, जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं मुकाम को फिर नहीं आते। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, और गाने के फरमाइशें तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया कि हेलो सुनो सर, हमें गाना सुनना है। बिल्कुल सुनना है तो सुनाएंगे। और अनूप जी, आगे मैसेज पहुंचा हुआ है लिखा गया है कि थैंक यू सो मच सर जी सॉन्ग प्ले करने के लिए, आपको धन्यवाद है रेडियो एमसीएम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, और
1: मेरी क्लास होगी मेरे बाद।
0: आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि हेलो सर, मैं प्रिंस यादव चनावे गोपालगंज से बोल रहा हूँ। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज, हाय सर अस्सलाम वालेकुम, सजिया नवादा से जुड़ी हैं और कहती हैं कि सॉन्ग सुनना है। बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे बढ़ते हैं और आगे अगली गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं पंकज भाई जी की, और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है मुझे तेरी जैसी लड़की मिल जाए, राज मूवी से उदित नारायण की आवाज़ में है। तो चलिए आपके गाने भी हम प्ले करते हैं और सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। हम सभी डेडिकेट करते हैं इनके नाम से मोहब्बत करने वाले सभी दोस्तों को।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूं?
5: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहां सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
5: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
5: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
5: संपर्क करें 84710309 या 9765655750।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
7: छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रामझिम 94.4 FM पे। सो चल रहा है SMS फरमाइश का और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे हुए, तो मैसेज भी शामिल करेंगे। उससे पहले हम आप सभी को आज फिर से सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत छोटी सी सुझाव साझा करेंगे, जिसमें आज हम सभी जानेंगे चिकुनगुनिया के बारे में। इनका परिचय, चिकुनगुनिया एक वायरल बीमारी है जो एडीज एजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस मच्छरों के काटने से फैलती है। यह मच्छर मुख्यतः दिन के समय काटते हैं और बरसात के समय में इनकी संख्या बढ़ जाती है। कारण, संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से यह बीमारी फैलती है और यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधे संपर्क से नहीं फैलती, यह मच्छरों के माध्यम से ही फैलती है। इनके लक्षण हैं, आमतौर पर मच्छर के काटने के 3 से 7 दिन बाद दिखाई देते हैं। अचानक तेज बुखार 102 डिग्री से 104 डिग्री तक और जोड़ों में बहुत तेज दर्द, हाथ पैर घुटने में और मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, अत्यधिक कमजोरी और थकान महसूस करना, त्वचा पर लाल चटके या दाने निकल जाने और मिजाज मतली जैसे हो जाते हैं, उल्टी भी होते हैं और कुछ मरीजों में जोड़ों का दर्द कई सप्ताह तक यानी महीनों तक रह सकता है। इसके जांच डॉक्टर द्वारा शारीरिक परीक्षण कराए, रक्त जांच, RT-PCR या एंटीबॉडी टेस्ट से पुष्टि की जाती है। आवश्यकता पड़ने पर डेंगू और मलेरिया की भी जांच कराई जाती है। इनके उपचार है, चिकुनगुनिया का कोई विशेष एंटीवायरल इलाज नहीं है, उपचार लक्षणों को कम करने के लिए ही किया जाता है। पर्याप्त आराम करें और खूब पानी पिए, ORS, नारियल पानी और अन्य तरल पदार्थ ले। बुखार और दर्द के लिए पैरासीटामोल डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही ले। जब तक डेंगू की संभावना पूरी तरह खारिज ना हो जाए तब तक आइब्रोफेन, डाइक्लोफेनाक और एस्पिरिन जैसी दवाएं बिना डॉक्टर की सलाह से ना लें। और जोड़ों का दर्द लंबे समय तक रहने पर डॉक्टर की सलाह से फिजियोथेरेपी या अन्य उपचार लिया जा सकता है। बचाव है इसके घर के आसपास पानी जमा ना होने दे। पानी की टंकी और बर्तनों को ढक कर रखे, पूरी बांह के कपड़े पहने, मच्छरदानी और मच्छर भगाने वाली क्रीम का भी उपयोग करें। सुबह और शाम विशेष सावधानी रखें। संभावित जटिलताएं यह है कि लंबे समय तक जोड़ों में दर्द और सूजन हो सकते हैं। बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों में कमजोरी अधिक हो सकती है। गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और गंभीर लक्षण वाले मरीजों को तुरंत डॉक्टर को दिखाएं ताकि वो अपने आप को सुरक्षित रख सके। पूरी तरह इससे हमें निष्कर्ष यह है कि चिकुनगुनिया आमतौर पर जानलेवा नहीं होता है, लेकिन जोड़ों का दर्द लंबे समय तक परेशान कर सकता है। समय समय पर जांच, पर्याप्त आराम, तरल पदार्थों का सेवन और डॉक्टर की सलाह से अधिकांश मरीज पूरी तरह ठीक भी हो जाते हैं। तो आप लोग यदि ऐसा कोई लक्षण दिखे तो कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप सरकारी अस्पताल में जाएं, इसका जांच कराएं। अगर ऐसा पुष्टि होता है तो इसकी डॉक्टर सलाह से दवाएं लें समय समय पर। ऐसी जानकारी हर रोज आप सभी के बीच साझा की जाएगी रेडियो रिमझिम के माध्यम से सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत। तो फिलहाल हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और कार्यक्रम में जो भी मैसेज पहुंचे हुए मैसेज को शामिल करेंगे। और आगे मैसेज हमारा पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सुनो भाई नमस्कार और सभी दोस्तों को नमस्कार, जुड़ गए हैं तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, मेरा नहीं बजेगा क्या सर? तो बिल्कुल बजेगा, आपका भी गाना बजेगा मनीषा। आगे मैसेज, हेलो सुनो सर, हमारा कल गाना नहीं बजा था। तो बिल्कुल आपका गाना नहीं बजा था तो बजेगा। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो नमस्ते भैया, आप कैसे हैं? मेरे तरफ से सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोल दीजिएगा, मैं रोशनी कुमारी मानिकपुर से। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि चिकुनगुनिया और मलेरिया के बारे में सुझाव देने के लिए धन्यवाद आपको। बिल्कुल आप बन रहे हमारे साथ, छोटी छोटी जानकारी ऐसे हर रोज़ दी जाएगी। और इस मैसेज को पहुंचाते हैं मंकी साहनी जी, भैरवगंज वेस्ट चंपारण बिहार से। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि मेरा भी सॉन्ग सुना दीजिए। बिल्कुल लेके करके सबकी फरमाइश पूरी करेंगे, थोड़ा सा सब्र करें। और आगे बढ़ते हैं अगले गाने की फरमाइश, यहाँ पे पहुँचा हुआ है निशा की तरफ से और गाने की फरमाइश है मुहुआ ओढ़नी से बांध के ना आईहा। आगे के लाइन तो हम नहीं कहेंगे, गाने के माध्यम से सुना जाएगा। सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

प्रेडियम 94.4 FM सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है SMS फरमाइश का। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ, लिखा गया है कि प्लीज सर मेरा बजा दीजिए। तो चलिए आपकी भी गाने हम बजाएंगे। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, कुछ तो मैसेज देख ले। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हाय सुनो जी गाना सुनना है अमृता कुमारी सरिया, वार्ड नंबर 4 से जुड़ी है। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। गाने की फरमाइश होती है तो पूरा करने की भी कोशिश रहेगा। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि वेरी सुपर सॉन्ग अनूप यादव जी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सर हम भी हैं और हमको सुनना है। तो बिल्कुल आपकी भी मैसेज हमारे पास है और गाने की फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि मैं भी जुड़ चुकी हूँ और मुझे भी गाना सुनना है। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, आरजे सोनी। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि भाई मेरा भी शौक। तो बिल्कुल एक एक करके सबकी फरमाइश पूरी कर ही रहे हैं, अब एक बार तो दो कर नहीं सकते। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है तो आगे बढ़ते हैं और मैसेज को रोकते हैं, गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं अगली फरमाइश हम सभी। जानवर मूवी से तुझको ना देखो तो चैन मुझे आता नहीं।

0: For more entertainment, log on and subscribe.
1: टुडे एमजीएम 94 एफएम पे काफी प्यारा सॉन्ग सुन रहे थे। अभी हम सभी जानवर मूवी से और शो चल रहा है, इसमें फरमाइश का और यहाँ पे आगे मैसेज कई पहुँचे हुए और कई लोग परेशान हैं। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है काफ़ी प्यारा सॉन्ग, मैसेज करती हैं रोशनी और आगे मैसेज पहुँचा लाजवाब स्वीट सुपर सॉन्ग। MD97 दरभंगा भाजीतपुर से मैसेज करते हैं, बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है नाइस सॉन्ग फिल्म जानवर से, मैसेज करते हैं पंकज भाई जी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि थैंक यू सॉन्ग सुनाने के लिए, आपको धन्यवाद है रेडियो एमजीएम में इस प्यारे से सॉन्ग की फरमाइश करने के लिए। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है प्लीज सर बजा दीजिए, बिल्कुल आपकी भी बात आपके भी बजाएंगे प्रिंस यादव जी, चिनावे से मैसेज किए हुए। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और किशोर कुमार के आवाज़ में गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है रज, और इस मैसेज को पहुंचाए हुए आदित्य पांडे राजीव नगर गोपालगंज से, और गाने का बोल लेते हैं संयारा। तो चलिए आपकी भी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं, इंजॉय करते हैं।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923। ओम नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
2: बोलबम, हर हर महादेव। नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए, और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 9289-22567 या 97714-86164।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक की बात पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रमछम 94.4 FM पे शो चल रहा है इसमें फरमाइश का। और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे हुए और आगे लिखा गया है कि सुनो भाई सैयारा देखे हैं कि नहीं, मूवी कैसा था और देखे हैं तो रोए थे कि नहीं। मेरा तो काका जी का पूरा धोती गीला हो गया था मूवी देख के, इतना रोए थे कि। वैसे नाइस सॉन्ग सैयारा तू बदला नहीं है, और हम तो अभी नहीं देख पाए हैं, फुर्सत ही नहीं मिल पाई है कि हम देखें, और आप लोग देखे होंगे तो बताएं आप लोगों का कैसा हाल हुआ। और पंकज भाई आपका आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हमारा गाना कब बजेगा सर, तो बिल्कुल आपका भी गाना हम बजा ही देते हैं। और इस मैसेज को करते हैं प्रिंस यादव चनावे गोपालगंज से, और गाने की फरमाइश करते हैं तेरी याद याद याद सताई। तो चलिए सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी।

0: रेडियो एमसीएम 94.4 FM सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का। और यहाँ पे आगे भी मैसेज पहुँचे हुए हैं, आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, और आगे गाने की फरमाइश देखा जाए। आगे मैसेज लिखा गया है कि नाइस सॉन्ग, और मैसेज करती है रोशनी। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हम रोना शुरू किए ही थे कि काका याद दिला दिए कि हमसे तो कोई प्याज ही नहीं कटवाता है। और नाइस सॉन्ग फिल्म दोस्ती फ्रेंड्स फॉरएवर से, और इस मैसेज को करते हैं पंकज जी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, और अगली गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं शफरोज अली की, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है हम दीवाने हम दीवाने। तो चलिए आपके भी गाने हम प्ले कर रहे हैं, आप इंजॉय करें अपने गानों के साथ रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे।
1: सुर में गाना सीखिए पाधन।

ऑडिटोरियम जिम 94.4 FM सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का, और आगे कई मैसेज है लेकिन समय समाप्ति की हो चुकी है, तो कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और अंतिम गाने प्ले करते हुए यहाँ पे हमारे श्रोतागण एक हैं अनूप जी, और बहुत सारे उनके तरफ से मैसेज पहुँचा हुआ है, लेकिन उनके मैसेज को हमने शामिल भी किया, लेकिन एक भी मैसेज में वो कोई किसी गाने का नाम नहीं बताए कि हम उनकी फरमाइश कम से कम अंत में तो पूरा कर जाएं, तो आज तो नहीं सुना पा रहे। यदि गाने के नाम बताए रहते तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम अभी प्ले कर जाते, लेकिन आगे बढ़ते हुए दूसरी की फरमाइश हम प्ले करेंगे। यहाँ पे आगे मैसेज है और इस मैसेज को करती हैं अमृता कुमारी सरिया वार्ड नंबर 4 से, और गाने की फरमाइश करती हैं जान मूवी से। तो चलिए जान मूवी से गाने को प्ले करते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। कुछ मैसेज पहुंचा देख ले, आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि नाई सॉन्ग फिल्म इंडियन बाबू से मैसेज करते हैं पंकज भाई जी, और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत इंतज़ार किए हैं। चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो रिमझिम सुनने के लिए और इंतज़ार करने के लिए अपने गाने को लेकर। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, सोनू बाबू कैसे हैं, अंत में जुड़े हैं, क्या करें, चलिए अंत भला तो सब भला, पर हाजिरी तो बनता है। बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, पर हम भी आपके दीवाने हैं भाई, पुराने हमें भी ना भुलाने। और इस मैसेज को करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया के खरिया रक्सोल नेपाल बॉर्डर से, आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, बिल्कुल हम दीवाने हैं, हम दीवाने, वेरी नाइस सॉन्ग, बाय बाय टू ऑल माय फ्रेंड्स, गुड नाइट। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि लिखकर दर्द किताबों में छुपाने से क्या होगा, जो समझा ना सके खामोशी उसे सुनाने से क्या

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।

0: आसमानों खाने नच देने सारे
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं परहेज करे नहीं। वैद्य एस पी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एस पी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब टेबलेट इंजेक्शन सिरप गांजा स्माइक के इलाज और गठिया टीका पथरी कमर दर्द घुटना दर्द दमा मिर्गी दाद दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया मासिक खराबी बवासीर पेट रोग शुगर गैस्ट्रिक शीघ्र पतन शुक्राणु में कमी नपुंसकता धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग दिनाए खुजली एक्जिमा सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एस पी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एस पी त्यागी जी से मिलने का पता
1: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 90971602।

डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: ये सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा, मिला ही नहीं
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM और समय हो गया है कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का। तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ आप सभी के बीच। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप और हमारे व्हाट्सएप इंस्टा और कॉल के जरिए जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852782191। जी हाँ, 9852782191। और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 7277166696। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और हमारे पास यहाँ बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं। इससे पहले मैं आप सभी के लिए एक गाना प्ले करूँगी, तब तक गाने को एंजॉय कीजिए, फिर पढ़ते हैं मैसेजेस।
1: कुछ रिश्ते जो हम समझते नहीं, कुछ रिश्ते मुझे

तो अभी हम लोगों ने सुना एक प्यारा सा सॉन्ग, सूरज हुआ मध्यम। इसी के गाने के साथ बढ़ेंगे आगे की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं पूरा आधा घंटा लेट हुआ है। तो जी हाँ, पूरा आधा घंटा लेट हुआ है क्योंकि आज सोनी जी भी नहीं आई हैं और मुझे HMC का भी कॉल, हेलो माई चॉइस का भी कॉल रिकॉर्ड करना था और योर वॉइस योर चॉइस भी शुरू करना था, तो दोनों को देखना पड़ा, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। और मैसेज करने वाले हैं मुस्तफ़ा सऊदी अरबिया से, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं, आप शाम के कहाँ आई हैं, आपका और हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचे हुए हैं जो लिख रहे हैं, हाय मैम, समीर आलम जंगलिया से, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है सूरज हुआ मध्यम। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचे हुए हैं जो लिख रहे हैं, भारती जी नमस्कार, आप कैसी हैं, टाइम से भेजे हैं, सुनाने की कृपा कीजिए, दिलीप राम दिल्ली से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं सभी के साथ। और गाने के बोल हैं आई वो काटा। तो एंजॉय कीजिए अपने गाने को दिलीप राम जी।

पर बैठी थी, आराम से मैं छत पे गई, कुछ काम से मैं सीढ़ी पे था, वो चोर खड़ा, दिल के अंदर था शोर बड़ा, बाहर गली में सा...

0: सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
5: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
2: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
1: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं।
2: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
1: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
2: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं। सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
1: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
2: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
2: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
1: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।

छोटे से ब्रेक के बाद जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं और जो पहले से जुड़े हैं उनका एक बार तहे दिल से फिर से स्वागत करती हूँ योर वॉइस योर चॉइस के शो में। और मैं हूँ आप सबकी दोस्त भारती। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9852 78 22 91। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277165696। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं, नमस्ते भारती जी, मैं नौशाद अली मोतिहारी ज़िला से, मुझे भी एक गाना सुनना है, आशा मूवी का मैकेनिक का लिंक भेज दे रहा हूँ, प्लीज़ दोपहर समाचार के पहले यह गाना बजा दीजिएगा ताकि मैं सुन पाऊँ, नहीं तो मैं बाहर चले जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है, हमारे भी हाजिरी लगा दीजिए, कपिल कोटा राजस्थान, एक पल गाना सुनना, एक पल का जीना। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं, भारती जी नमस्कार, मेरा भी हाजिरी लगा देना, मैं धनेश कुमार मिश्रा दिल्ली से, उनकी और लिख रहे हैं उनकी यादों को प्यार करते हैं, लाखों जन्म उन पर निसार करते हैं, अगर राह में मिले वो आपसे तो कहना उनसे हम आज भी उनका इंतज़ार करते हैं। क्या बात है। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं, हमारा भी हाजिरी लगा दीजिए, कब बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा है जो लिख रहे हैं, आप लेट से आई हैं और बोल रही हैं कि समय पे आई हूँ, सॉरी मैम, सोनी मैम रहती हैं तो बोलती हैं माई चॉइस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसलिए लेट हो गया। तो हाँ, हम भी हेलो माई चॉइस का ही रिकॉर्डिंग कर रहे थे इसीलिए मुझे भी आने में लेट हो गया। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले फरमाइश की तरफ। और हमारे पास फरमाइश पहुँचा हुआ है मुस्तफ़ा सऊदी अरबिया से लिंक के माध्यम से। और गाने के बोल है

अभी हम लोगों ने सुना मुस्तफ़ा जी की तरफ से बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग चल कर ले थोड़ा प्यार, और इसी गाने के साथ बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, जी मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून मैम, उत्तम सोनी हरपुर से, मैं भी जुड़ गया हूँ जी, मेरा भी हाजिरी लगा दीजिए मैम, सुपर सॉन्ग, लाजवाब सॉन्ग, बहुत ही खूबसूरत सो चल रहा है जी मैम, मेरा मैसेज क्यों नहीं रीड कर रही हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सभी के मैसेजेज एक एक करके पढ़ रही हूँ, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं, भारती जी मेरा भी मैसेज देखिए। और मैसेज करने वाले हैं साकिब, जम्मू कश्मीर से और बिहार के रहने वाले हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, मैं निजामुद्दीन सऊदी अरब से, भारती जी आपका रेडियो रिमझिम आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप आए बाहर आए तो, और सब सुनाइए क्या हाल है भारती जी, हम आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा, अब आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा हो रहा है, धीरे धीरे आपका भी सब चीज़ अच्छा हो रहा है, सब ठीक हो जाएगा, घबराने से नहीं होता है। आप बताइएगा, आज मेरा क्या एक हफ्ता हो गया है, मैं गाने का फरमाइश कर सकता हूँ क्या? तो जी बिल्कुल बता दूँगी, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले गाने की फरमाइश की तरफ, और हमारे पास गाने की फरमाइश पहुंची हुई है जो लिख रहे हैं, हेलो नमस्कार भारती जी, राधे राधे, प्रणाम जी, लिख रहे हैं, अधूरा ही सही किस्मत में हमको मिला तो था, कुछ पल के लिए ही सही वो हमारा हुआ तो था, तड़पेंगे उम्र भर उस एक मुलाकात के लिए, मगर दिल को सुकून है उसने हमें चाहा तो था। बहुत ही खूबसूरत लाइन है। और मैसेज करने वाली है अनामिका चौधरी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं, हेलो भारती जी नमस्कार, मुझे एक गाना सुना दीजिए, मेरी मोहब्बत मेरी जवानी बन के रहेगी कोई कहानी, प्लीज़ भारती जी सुना दीजिए। तो चलिए बिना देरी किए गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: का संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527881 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527881 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: ओम नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
2: बोलबम हर हर महादेव।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है फिर से योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और हमारे पास यहाँ बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं, और मैसेज पहुँचे हुए जो कि लिख रहे हैं विजय कुमार कुशवाहा रसिया से जुड़ गए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और शमशेर मुंबई से जुड़ गए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचे हुए जो कि लिख रहे हैं, हेलो मैम, मैं विकेश सिंह फ्रॉम त्रिलोकपुर, माई सॉन्ग फॉर माई दिल कहता है चल उनसे मिल। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ सन्यासी रंजन जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, लिख रहे हैं नमस्कार प्रणाम बारा उरा के भारती मैडम, हमहूँ आगिल बानी, हमरो हाजिरी लगा दी। तो बहुत बहुत स्वागत बा। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं सुपर सॉन्ग दिलीप भाई का। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं, हेलो मैम, गुड आफ्टरनून, मैं रतन कुमार बिहार से बोल रहा हूँ, मुझे एक गाना सुना दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और इंतज़ार कीजिए अपने बारी का, गाना बिल्कुल सुनाऊँगी मैं। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं, हेलो मैम, सरफरोज अली खा, मैं सरफरोज अली अकिल टोला से गाना सुनाइएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तो चलिए बिना देरी किए फरमाइश की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ हमारे पास फरमाइश पहुँची हुई है उत्तम सोनी जी की तरफ से। तो चलिए बिना देरी किए गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं इनके गाने को। गाने के बोल हैं, सुन रहा है ना तू, तो बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश है। गाना प्ले कर दिए हैं, इन्जॉय कीजिए अपने गाने को।

0: तो अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग उत्तम जी के, सोनी जी की तरफ से। तो हमारे पास यहाँ उनकी तरफ से वॉइस पहुँची हुई है, तो चलिए प्ले करते हैं और सुनते हैं क्या है वॉइस।
1: हाय जी मैम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं उत्तम सोनी हरपुर से, कैसे हैं मैम आप? ठीक है ना? आई होप आप मस्त और बिंदास होंगे। और एक मैम लिंक भेज रहा हूँ, उसे प्ले कर दीजिएगा। और जितने रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं, मैं सभी लोगों को सुनवाना चाहता हूँ, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है, सुना लीजिएगा। और सबसे पहले जितने रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं, सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है जी। मैं उत्तम सोनी और आई होप आप सभी लोग मस्त और बिंदास होंगे जी। संन्यासी रंजन बाबा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक लाइन में सुना रहा हूँ, सुनिए। वो कहते ना, संस्कार और श्रृंगार महफिल में दिखता है कि संस्कार और श्रृंगार महफिल में दिखता है, जो दिल में होते हैं वो मुश्किल वक्त में दिखते हैं है ना बाबा?

0: वैसे हमारे डेडिकेशन लिस्ट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन पता नहीं यहाँ पे कौन कौन आदमी जुड़ रहे हैं, याद नहीं आ रहा है। और फिलहाल मैंने अभी दो आदमी का नाम मेंशन करूँगा, उमा शंकर भैया और शाहजहाँ जी है, इन सभी लोगों को सुनवाना है, और बाकी जो नज़र आएंगे सबको डेडिकेट किया जाएगा, है ना।
1: एक बात बताओ भाई, नशों में सबसे बड़ा नशा कौन सा है?
2: वो तो एक ही नशा है छोटे, मोहब्बत का नशा। बाकी नशे चढ़ के उतर जाते हैं, लेकिन कमबख्त ये ऐसा नशा है जो चढ़ता है लेकिन उतरने का नाम नहीं लेता।
3: और बहुत ही खूबसूरत सी लाइन पहुंची हुई थी उत्तम सोनी जी की तरफ से आप सभी के लिए, और इसी के साथ बिना देरी किए बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ। और हमारे पास अगली फरमाइश पहुंची हुई है दीपक चौहान जी की तरफ से, और गाना सुनना है तेरी यादों में। तो चलिए बिना देरी किए गाने को प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं सभी के साथ।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
3: क्या हुआ
4: शिमारू के नए
3: वीडियो? तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
5: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
6: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
7: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
8: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
9: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
8: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
9: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
8: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।

0: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। और बिना देरी किए बढ़ेंगे अगले फरमाइश की तरफ, और हमारे पास यहाँ कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँचा हुआ है, तो लेते हैं कॉल और देखते हैं क्या है इनके फरमाइश। हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। वालेकुम अस्सलाम, हाँ जी कैसी हैं आप?
1: हम ठीक है, अपना बताइए।
0: हम भी अच्छे हैं। तो कौन सा गाना सुनना
1: हो गया मैम?
0: जी मेरा तो नाश्ता हो गया है, आपका हो गया?
1: जी मैम हमको भी हो गया।
0: और कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: गाना सुनवा दीजिए, दिल वालों का बस्ती है चाहत के इलाका है।
0: दिल वालों की बस्ती है। ओके और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी रहेगा?
1: हाँ आप सुन लीजिएगा, जितना लोग सुन रहे हैं सब कोई सुनेगा।
0: ओके चलिए आपका गाना प्ले कर दिए हैं, एंजॉय कीजिए सभी के साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

तो अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, ये दिलवालों की बस्ती है। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, मुकेंद्र कुमार कुशवाहा बंजारी से, अभी दुबई से सुन रहा हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ बहुत खूबसूरत लाइन पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं, बेवफा से दिल लगा लिया, नादान थे हम, गलती हमसे हुई क्योंकि इंसान थे हम। आज जिन्हें नज़रें मिलाने में तकलीफ़ होती है, कुछ समय पहले उनकी जान थे हम। क्या बात है, और बहुत ही खूबसूरत लाइन। और लिख रहे हैं मुझे भी गाना सुनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं, मैम मेरा सॉन्ग प्ले कर क्यों नहीं कि 12 बजे का मैसेज किया हूँ। तो मैसेज करने वाले हैं अनीस यादव, विलेज डुमरा, यदवंशी टोला, डिस्ट्रिक्ट सिवान, बिहार से। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं, भारती मैम नमस्कार, सोनी जी नहीं हैं क्या आज? भारती जी हमारा मैसेज देख लीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और मैंने आपका मैसेज देख लिया है। और यहाँ नैयम अंसारी जमतारा से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, लिख रहे हैं भारती भरी बरसात में पी लेता हूँ सॉन्ग सुना दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपका भी गाना प्ले होगा लेकिन थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले फरमाइश की तरफ। और हमारे पास फरमाइश पहुँचा हुआ है जो कि हमारी आरजीस मनोरमा जी गाने की फरमाइश को प्ले करेंगी।

आप सभी का मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमारा अगला फरमाइश है राजू सोनी हारपुर से, ये मैसेज कर रहे हैं, मुझे भी सॉन्ग सुनना है, उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में। तो चलिए प्यारा सा सॉन्ग एंजॉय करते हैं।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा, मिला ही नहीं
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और समय 1:30 हो रहा है। और इसी के साथ बिना देरी किए बढ़ेंगे अगले फरमाइश की तरफ, और हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है। मैसेज करने वाले हैं सागिर आलम अंसारी फ्रॉम तेजपुर असम से, मेरा भी हाजिरी लगा दीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं सुपर सॉन्ग लाइन को आप इतने अच्छे तरह से पढ़ते हैं कि वो ऐसे ही बहुत खूबसूरत हो जाते हैं मैम जी। और लिख रहे हैं जी मैम मैसेज सुनाइए या नहीं, बस रीड कर दीजिए, राजू भैया का सॉन्ग बहुत ही खूबसूरत लगा। और मैसेज करने वाले हैं

उत्तम सोनी जी, तो बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहा है मेरा भी गाना, मेरा गाना है। तो ऐसे गाने की फरमाइश ना करें। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं विपुल सिंह गोपालगंज से,

मैसेज करने वाले हैं अंस, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है, हाय मैम, आई एम आफ्ताब आलम फ्रॉम सन के खास, मैं और आयुष राज सुन रहे हैं, हेलो। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, कितना समय बाद बजेगा गाना मैम बता दीजिएगा। तो कोशिश है कि आप सभी का गाना प्ले करूं, और बिना देरी किए बढ़ेंगे अगले फरमाइश की तरफ। और हमारे पास फरमाइश पहुंचा हुआ है सुनील कुमार, जो कि एमपी के रहने वाले हैं, और गाने के बोल है छन छन करती है, और बहुत ही खूबसूरत सा गाना। और चलिए गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं सभी के साथ।

अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग छन छन करती हैं ये नीले पीली चूड़ियाँ। तो इसी गाने के साथ बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ, और हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँचा हुआ है, और उससे पहले थोड़ा सा मैसेज शामिल करेंगे जो कि लिख रहे हैं राजलाल यादव सऊदी अरब से जुड़ चुके हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मैडम जी नमस्कार, हम लोग भी आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं और कार्यक्रम अच्छा चल रहा है। उमा शंकर सिंह, अवंतिका सिंह, अर्चित सिंह और रुद्रपुर देवभूमि उत्तराखंड से बोल रहे हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और एक और मैसेज पहुंचा हुआ है जो क्लिक रहे मैडम जी नमस्कार, हमको भी एक गाना सुना दीजिएगा मैथिली ठाकुर की आवाज़ में भोजपुरी गाना कोई भी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैं रामविलास गनवरिया बलरामपुर उत्तर प्रदेश से हूँ, मुझे एक गाना सुनना है, ये दिल आशिकाना का टाइटल सॉन्ग गाना सुनना है भारती जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और अखिलेश सहानी पूर्वी चंपारण जिला बिहार से, गुड आफ्टरनून भारती जी, सोनी मैडम जी कहाँ है, नाइस सॉन्ग, मेरा मैसेज शामिल क्यों नहीं कर रही हैं, तो सभी का मैसेज शामिल कर रही हूं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और सोनी जी आज छुट्टी पे हैं, वो अपने कुछ कामों से, और यहां एक और मैसेज पहुंचा हुआ है जो लिख रहे हैं ये दिलवालों की बस्ती है चाहत का इलाका है, सुपर सॉन्ग, मेरा भी हाजिरी लगा दीजिए, गोल्डन टेलर इरफान से, हमारा एक हफ्ता पूरा हुआ है या नहीं ज़रा बताइए, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और बिना देरी किए अगली फरमाइश को प्ले करेंगे, और मैसेज करने वाले हैं साकिब जम्मू एंड कश्मीर से, तो इनका चलिए गाना प्ले करते हैं, और लिख रहे हैं मुझे कोई भी अपनी पसंद का सॉन्ग सुना दीजिएगा, तो चलिए गाना प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं सभी के साथ।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।

0: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है उत्तम सोनी जी को, नमस्कार बोलिएगा, जो कि मैसेज करने वाले हैं सन्यासी रंजन जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आपका मैसेज बता दिए हैं उन्हें। और विजय कुमार कुशवाहा रसिया भी जुड़ चुके हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हरकेश जी बोल रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा प्ले करने में मेरा सॉन्ग। और मुकद्दर कुमार कुशवाहा गाना सुनना है, बिन सजनी के जीवन अच्छा नहीं लगता। तो आपकी भी बारी आएगी और आपको भी गाना सुनाया जाएगा। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचेगा जो लिख रहे हैं भारती जी, नमस्कार मैं नौसाद मोबाइल विक्रमगंज रोहतास बिहार से गाने का कला गाने का लिंक भेजा हूँ। और भारती जी मेरा कॉलेज का मैसेज आप लोग देखकर नहीं कुछ जवाब दे रहे हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि संजय यादव दुबई से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और पहली बार आप यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं पहली बार आपका आवाज़ सुने हैं यहाँ, बिल्कुल क्या बिल्कुल दिव्या मैम जैसा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है आपका। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और दिव्या मैम का भी आवाज़ आपसे बहुत मिलता है जी मैम, शायद मिलता होगा मुझे तो नहीं मालूम। और सन्यासी रंजन बाबा को भी मेरा नमस्ते सुना दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ेंगे अगले फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारी तरफ से मनोरमा जी शामिल करेंगी और गाने को प्ले करेंगी।
1: हमारा अगला फरमाइश है नौसाद अली, जो कि मोतिहारी ज़िला से हैं, और इनको गाना सुनना है जो कि लिंक के माध्यम से है। तो चलिए इनका प्यारा सा सॉन्ग सुनते हैं।

अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग नौशाद जी की तरफ से, और उनकी तरफ से मैसेज पहुंच गया जो लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भारती जी, आज आपने हमारा गाना बजाया और दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ गाना बजाने के लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने गाने को इन्जॉय किया ना। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, नमस्कार सोनी मैम जी, मैं भी जुड़ गया हूँ, मेरा नाम मनोज शर्मा है, मैं भी हाजिरी, मेरा भी हाजिरी लगा दीजिए, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं, काश इस कार्यक्रम में हिंदी गाने का फरमाइश लोग करते और तो बहुत अच्छा होता, और भोजपुरी का एक अलग शो रखा जाता तो भी बहुत अच्छा होता, ये मेरा सुझाव है सोनी मैम। तो मैं बता दूं कि संडे को भोजपुरिया एक्सप्रेस चलता है 2 से 5, जिसमें आप जुड़ सकते हैं और भोजपुरी गाने सुन सकते हैं, और लोगों की फरमाइश का क्या ही कहें, जो उनको पसंद है वही गाना सुनेंगे। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ, और हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो लिख रहा है, मैं आज़ाद अंसारी सऊदी अरब से, आज मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि मेरे बेटे ने टॉप किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है शो में जुड़ने के लिए। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है, जी मैम आप लोग दो आदमी हैं लोना जी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो हाँ हम दो आदमी यहाँ बैठे हुए हैं आज और इस शो में, और मेरा नाम अंश तुषार अहिर है, और मुझे ज़रा गाना सुनना है, मुझे ज़रा तस्वीर से तू निकल के सामने आ सुनना है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और पूरी कोशिश है कि आपके गाने को प्ले किया जाए। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले फरमाइश की तरफ, और हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँचा हुआ है संजय यादव दुबई से, और गाना सुनना है इनको जब तक तुम सामने, तो बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश है, तो चलिए गाना प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं सभी के साथ इनके गाने को।

0: ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
4: प्रसाद क्लिनिक,
5: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
4: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम LIC ऑफिस के पास गोपालगंज,
5: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
6: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
7: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
6: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
7: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
6: या अभी कॉल कीजिए 9289225767 या 9774-86164।

0: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रमजम 90.4 एफएम। और बिना देरी किए यहाँ अगली फरमाइश हमारे पास पहुंची हुई है कॉल के माध्यम से, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो
0: जी,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजम 90.4 एफएम में। जी कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं। आप
0: हम भी अच्छे हैं। आज कौन से गाने की फरमाइश है आपकी?
1: गाना है राम बोली राम का गाना, कोई बजा दीजिए, पुराना फिल्म का है, मोहम्मद रफी, आशा भोसले और क्या बोलते हैं किशोर कुमार की आवाज में है वो गाना, राम बोली राम।
0: और
1: ना मिले तो दूसरा बता दे।
0: और गाना किसी को सुनाना भी है?
1: पहले तो आपको सोनी मैडम को, जितने भी आ रहे हैं रेडियो सभी, और जितने रेडियो
0: ओके, तो चलिए गाना आपका प्ले कर दीजिए, किए हैं, एंजॉय कीजिए सभी के साथ। रेडियो रंजी में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

तो अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, अब तो राम ही बचाए। और इसी गाने के साथ बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ। और हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, मैं भी जुड़ गया हूँ मैम, साउथ अफ्रीका से सुन रहा हूँ। और आप कैसी हो? सोनू कुमार चौरसिया रामपुर खरिया से, बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है।

0: हमारा संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
2: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
3: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
2: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
4: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
5: मैं बनूंगा।
6: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
6: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में।
4: ऑनली ऑन रेडियो रिमझिम 90.4 आमज।

छोटे से ब्रेक के बाद स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और बिना देरी किए बढ़ेंगे, यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो क्लिक रहे हैं, वाओ नाइस, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो क्लिक रहे हैं, हेलो भारती, मेरा रिक्वेस्ट है मोहब्बत बड़ी काम की चीज़ है मूवी का नाम, त्रिशूल सिंगर है, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में गाना सुनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है, नमस्कार भारती मैम, सलाम अलैकुम, कुवैत से जुड़े हैं जौहर आलम। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपके ये गाना आपके लिए स्पेशल था, तो शुक्रिया। और आपने गाना को एंजॉय किया नहीं ज़रूर बताइएगा। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, सोनी मैम, मैं आपका रेगुलर श्रोता केतन हूँ, अगर आपका स्वभाव और आपकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है तो आपका चेहरा कितना खूबसूरत होगा, बस यही सोचकर मैं सिर्फ आपके लिए एक गाना सुनना चाहता हूँ। तो चेहरा है ये चांद खिला, सिर्फ सोनी मैम के लिए। तो सोनी मैम तो आई नहीं है, लेकिन मैं गाना प्ले कर दूँगी और सोनी मैम गाना सुन लेंगी। और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ बिना देरी किए बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ। और हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, मैं आफ्ताब आलम और सांखे खास से बोल रहा हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और गाना सुनना है, धूप में ना निकला करो रूप की रानी। तो चलिए बिना देरी किए गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं सभी के साथ।

0: Deep depression forms over Bay of Bengal. Indian shooter Isha Singh clinches gold in women's 25-meter pistol event at ISSF World Cup. Manu Bhakar settles for bronze. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा न होने देने से देश में सही संदेश नहीं जाएगा। अमरीका और ईरान के सैन्य हमले रुकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट। बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का गहरा दबाव बनने से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। मनु भाकर को कांस्य पदक। और 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।
2: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूँ।
1: विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित किए जाएंगे, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। वहीं पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। इस विधेयक का उद्देश्य भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगाने के साथ साथ परीक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा मजबूत करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले देश के भारोत्तोलकों को बधाई दी।
4: भारत की सुश्री मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह चनम बम तथा श्री राजा मुत्तु पांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।
1: प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य विषय नहीं उठाए जा सकते।
4: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूं। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं, परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है।
1: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। पहले स्थगन के बाद कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष ने फिर हंगामा जारी रखा। इसके बाद सभापति CP राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
5: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
1: भाजपा महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा है कि प्रस्तावित विधेयक युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
6: प्रधानमंत्री जी ने विशेषज्ञों की टास्क फोर्स, कानून, विशेष अदालतें, देश के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित हो उसके लिए फैसले लिए हैं और निरंतर भारत आगे बढ़े, भारत के नौजवानों के सपने और संकल्प पूरे हों। प्रधानमंत्री मोदी जी संसाधनों को खड़ा करके, सीटों को बढ़ाकर नए नए अवसर पैदा कर रहे हैं और देश की जेन ज़ी भारत की तरक्की में भागीदार भी बन रही है और लगातार प्रयासरत है।
1: उधर टीएमसी की बागी नेता सयानी घोष ने परीक्षा सुधार से जुड़े विधेयक पर संसद में रचनात्मक बहस की मांग की। जनता दल यूनाइटेड नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि परीक्षाओं में सुधार के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल मानवीय हस्तक्षेप कम कर प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग पर जोर देगा।
7: ह्यूमन इंटरवेंशन कम होना चाहिए। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है ये तो अभी का हो गया, लेकिन परमानेंट ये फुल प्रूफ एग्जाम हो तो जितना टेक्नोलॉजी यूज होगा और ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा, उसी से आप फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने डे वन से बच्चों के कंसर्न को एड्रेस किया और ये जो टास्क फोर्स बनाया है, ये टास्क फोर्स आपको जो भी मैकेनिज्म देगा वो फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएगी।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण और वैध विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वे अदालत की कार्यवाही में सहयोग करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमरीका और ईरान द्वारा सप्ताहांत में सैन्य हमले रोकने के बाद आज वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट देखी गई। दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल की कीमत 6.1% गिरकर 90 अमरीकी डॉलर और 87 सेंट प्रति बैरल पर थी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 656 अंक बढ़कर 76,716 जबकि निफ्टी 189 अंक के उछाल के साथ 23,956 पर पहुंच गया। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गंगटोक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी पर बने हवा के गहरे दबाव के कारण ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में कल तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और विदर्भ में भी कल तक अत्यधिक वर्षा हो सकती है। इस बीच ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।
8: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन अब डीप डिप्रेशन में बदल गया है, जिससे उड़ीसा के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। जगतसिंहपुर, संबलपुर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, कटक, पुरी और खुर्धा जिले में बहुत ज्यादा बारिश की खबर है, जिससे जगह जगह पानी भर गया है और आम जनजीवन पर असर पड़ा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आगे भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है और संवेदनशील इलाकों में अचानक बाढ़ आने की आशंका जताई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकांश इलाकों में बाढ़ का पानी कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और सराईदियो जैसे अधिक प्रभावित जिलों में 109 राहत शिविरों में अब भी 37,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। राज्य में बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जैसे जैसे राज्य बाढ़ से उबर रहा है, प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। उधर नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लोंगलिंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डॉक्टर कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी।
9: भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
1: मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश के रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
10: डॉक्टर कलाम ने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान को विकसित करने में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की निकटतम कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया और भारत को स्पेस क्लब का एक विशेष सदस्य बनाया। पूर्व राष्ट्रपति अग्नि और पृथ्वी मिसालों के विकास व संचालन के लिए भी जिम्मेदार थे। साथ ही उन्होंने कई संस्थानों को एक साथ जोड़कर महत्वपूर्ण तकनीकों में स्वदेशी क्षमता निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई। डॉक्टर कलाम देश के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक थे, जिन्हें 30 विश्वविद्यालयों और संस्थानों से मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने अनूठा सम्मान मिला था। उन्हें प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मभूषण, पद्मविभूषण और सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर कलाम 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के हांगचाओ में आयोजित ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप से प्रतिभागी देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी में खेल अवसंरचना में सुधार तथा खेल सुविधाओं को उन्नत बनाने पर लगातार काम कर रही है।
11: दिल्ली सरकार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को और बेहतर करने के लिए, स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेस्ट करने के लिए काम कर रही है। मैं आज इस चैंपियनशिप में दिल्ली की ओर से ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली आप सबके लिए उन सभी फैसिलिटीज को यहाँ पर जरूर उपलब्ध कराएगी जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं।
1: दिल्ली के खेल मंत्री आशीष सूद ने कहा कि 25 राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ियों की मेजबानी करना सम्मान की बात है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में मच्छर जनित रोग रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉ. अक्षय धारीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉ. पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टेलीफोन नंबर 0112331 0481 या 2331444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा न होने देने से देश में सही संदेश नहीं जाएगा। अमरीका और ईरान के सैन्य हमले रुकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट। बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का गहरा दबाव बनने से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। मनु भाकर को कांस्य पदक। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
13: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
14: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
15: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
14: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोट,
15: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
14: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
15: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
14: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
15: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
14: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
15: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403। नमः शिवाय।
14: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
15: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
14: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
15: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
14: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
15: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
14: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
15: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
14: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
15: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
14: बोलबम, हर हर महादेव।
16: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: छोटे से ब्रेक के बाद और दोपहर न्यूज़ के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूं आप सभी की दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और हमारे अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप इंस्टा और कॉल के जरिए जुड़ सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852788291, और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 7277166696। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है और हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँची हुई है कॉल के माध्यम से, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो
1: जी, नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: कैसे हैं मैडम?
0: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
1: बड़े अच्छे हैं।
0: नाम बता दीजिएगा अपना।
1: रंजीत कुमार, लकड़ी दरगाह से बोल रहे हैं।
0: जी जी, और कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: गाना तो सुनना है धरती चाहे जहाँ भी रहेगी, समझ रहे हैं?
0: हाँ हाँ, और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
1: जी, आपको भी सुनाना है और रिमझिम मेरे रिमझिम परिवार के जितने भी श्रोता है सबको सुनाना है।
0: जी चलिए, फिर आपका गाना प्ले कर दिए हैं, एंजॉय कीजिए सभी के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे।
1: ठीक है, थैंक यू मैडम।

तो अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो क्लिक रहे हैं, हेलो मैम, मुकेश यादव अहमदाबाद से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ राजू जी लिख रहे हैं, सुपर सॉन्ग मैम, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और भारती जी नमस्कार, कैसे हैं आप? और मैं भी शो से जुड़ गया हूँ, और मैं रोहित देहरादून से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ लिख रहे हैं, गाना आपके लिए था मैम, आपको सॉन्ग अच्छा लगा कि नहीं बताइएगा। तो गाना बहुत ही खूबसूरत था। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, थैंक यू मैम मेरा गाना बजाने के लिए। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले फरमाइश की तरफ। और हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँचा हुआ है जो कि मैसेज करने वाले हैं डॉक्टर अमोद कुशवाहा, ग्राम जई छपरा, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से। और लिख रहे हैं, मुझे गाना सुनवा दीजिएगा, मोहब्बत ना करना। और चलिए तो बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं सभी के साथ।

0: आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
9: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
10: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
11: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0-97-06-575।
12: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है। भारती जी नमस्कार, इरशाद मास्टर ग्राम धनाव से आपके कार्यक्रम के साथ जुड़ गया हूँ। क्या हाल चाल बा मैडम? तो हमारा तो हाल चाल ठीक, पर वो बताइए रुआ कैसन वानी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ, रंजीत कुमार लकड़ी दरगाह से जुड़ चुके हैं और लिख रहे हैं कि इसकी कोई इश्क की कोई उम्र नहीं होती, ना ही कोई दौर होता है। इश्क तो इश्क होता है, जब होता है बेहिसाब होता है। तो बहुत ही खूबसूरत सी लाइन थी। और यहाँ एक और मैसेज जुड़ गया है जो कि मैसेज हमारे पास पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं का हाल बा भारती दी। तो और मैसेज करने वाले हैं करिश्मा कुमारी पिपरा नारायण से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है और गाने की फरमाइश के साथ पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं भारती जी मेरा रिक्वेस्ट कब आएगा, और मेरा नाम गोपाल रॉय, मेरे गांव का नाम विधान नगर डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग, मेरा रिक्वेस्ट था तुझ त्रिशूल मूवी का मोहब्बत बड़ा काम की चीज़ बा गाना। और चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे ये खूबसूरत सा गाना सभी के साथ।

तो बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग हम लोगों ने अभी सुना, मोहब्बत बड़े काम की चीज़ है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, गांधी जी के तीन बंदर थे, तीनों को मिलाकर एक बना दिया मोबाइल आदमी। जब हमें मोबाइल आदमी जब इसे हाथ में लेता है तो ना किसी से बोलता है और ना किसी को देखता है और ना किसी को सुनता है। ये तो बात सही है। और मैसेज करने वाले हैं धनेश कुमार मिश्रा दिल्ली से। और यहाँ एक और हमारे पास मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं, मैसेज करने वाले हैं नैया मंसारी जमतारा से, और गाना सुनना है भरी बरसात में पी लेने दो। तो चलिए इनके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं सभी के साथ ये खूबसूरत सा सॉन्ग।

0: ठक
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
5: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
6: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
7: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
1: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
7: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
8: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
7: कॉल करें 85070-32042 पे।
2: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
7: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
9: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
10: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
11: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
10: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
12: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
10: संपर्क करें 9939365923।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM, और मैं हूं आप सबकी दोस्त आरजे भारती। और आप सुन रहे हैं, और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852 78 22 91, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे की तरफ, और हमारे पास यहाँ बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं, और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, नमस्ते मैडम जी, हम भी जुड़ गए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, और सभी से बता दूँ प्लीज़ अपना नाम मेंशन ज़रूर करें। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, नमस्ते सोनी जी, तो सोनी जी तो आज नहीं है, मैं भारती हूँ, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, वाओ सुपर सॉन्ग, थैंक यू भारती, ये गाना सुन के दिल खुश हो गया। तो बिल्कुल गाना ऐसे ही इंजॉय करते रहिए सभी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, मैसेज करने वाले हैं राजू लकड़ी दरगाह से, तो लिख रहे हैं, मेरा गाना सुना दीजिए, लिंक भेज दिया हूँ, मेरा गाना नहीं बजेगा क्या मैम? तो नहीं, ऐसा नहीं, आपका भी गाना प्ले होगा। और चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं सभी के साथ।

अभी यहाँ हम लोग ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, प्यार बड़ा अलबेला है, प्यार दिलों का मेला है। तो चलिए इसी गाने के साथ बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, हमें भी लिख रहे हैं, हमें भी एक सॉन्ग सुना दीजिएगा सैयारा मूवी का टाइटल सॉन्ग। तो जी बिल्कुल सुनाऊंगी, पर थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और लिख रहे हैं सोनी दी का हाल बा, तो सोनी दी का भी हाल बहुत ही अच्छा है। और यहाँ दुर्गेश आजमगढ़ से जुड़ चुके हैं हमारे साथ और सॉन्ग सुनना चाहते हैं, जो कि लिख रहे हैं बोले कंगना। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और दिलीप शर्मा पठार टोला से जुड़ चुके हैं और लिख रहे हैं गुनगुनाए हर कोई जब बजे इश्क का ताराना, रेडियो रिमझिम का तो हर कोई है दीवाना। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ। और हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं नमस्ते जी मुकेश खरवार हिमाचल प्रदेश से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और लिख रहे हैं बजा दीजिए मैडम जी। और यहाँ कुछ लाइन लिख रहे हैं, जो कि लिख रहे हैं चाह है तुम्हें अपने अरमानों से भी ज़्यादा लगती हो हसीन, तुम मुस्कान से भी ज़्यादा मेरे हर धड़कन हर सांस में है, तुम्हारे लिए क्या मांगे जान मेरी जान से भी ज़्यादा। और भारती जी बजा दीजिए जल्दी। तो चलिए बिना देरी किए आपके गानों को प्ले करते हैं और गाने के बोल हैं आ अब लौट चले। तो चलिए सभी के साथ गाने को एंजॉय करते हैं और प्ले करते हैं आपके गाने को।

0: तो यहाँ अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग। इसी के साथ बढ़ेंगे, यहाँ हमारे पास कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँची हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो।
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते
1: मैम।
0: नाम बता दीजिए अपना।
1: मैं सनी बोल रहा हूँ दलिया से।
0: जी कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं?
0: मैं भी अच्छी हूँ। और कौन सा गाना सुनना है आज आपको?
1: मैम क्रिशन किशोर मंडल के बाद में हमने वही लगाई थी जहाँ दिल लगाना मना था, वही सुना लीजिए।
0: और गाना किसी को सुनाना भी है?
1: मैम जितने भी रेडियो सुनते हैं सभी को।
0: ओके चलिए फिर, आपका गाना प्ले कर दिए हैं, एंजॉय कीजिए सभी के साथ।
1: थैंक यू मैम।
0: रेडियो रिमझिम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
2: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
1: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
3: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
5: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
6: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403, 6200424403।
7: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
8: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
7: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 1,03,354 रूपए और एक्सट्री 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
8: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
7: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9774861464।
9: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे की तरफ। और हमारे पास यहाँ

और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं, मैसेज करने वाले हैं गुरु नानकपुरा बठिंडा पंजाब से किशोर सबलिनिया, सवित्री सबलिनिया, सुमन सबलिनिया, बेटी अंशु के साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार मैडम जी, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चल रहा है, प्रोग्राम सुन कर हम मैसेज किए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून सोनी जी, मैं साकिब जम्मू एंड कश्मीर से बिहार का रहने वाला हूँ सोनी जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, सॉन्ग है इले मोर राजा देवी सॉन्ग है, प्ले कर दीजिएगा। तो मैं आपको बता दूँ, इसमें भक्ति सॉन्ग प्ले नहीं होता है, इसके लिए आप हेलो माई चॉइस के कार्यक्रम में फ़ोन कर सकते हैं। और चलिए बिना देरी किए बढ़ेंगे अगले फरमाइश की तरफ। और यहाँ हमारे पास फरमाइश पहुँचा हुआ है दुर्गेश आजम, जो कि दुर्गेश हैं आजमगढ़ के रहने वाले, और मैं गाना सुनना है इनको, बोले मेरा कंगना। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं सभी के साथ।

0: इसी गाने के साथ बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ। और यहाँ हमारे पास कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँचा हुआ है, तो चलिए कॉल लेते हैं और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो।
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। हाँ जी, सोनी जी क्या आप हैं? जी बोलिए।
1: जी मैं सोच रही थी कि मैं भी गाने की फरमाइश कर लूं, तो क्या मैं गाना सुन सकती हूँ?
0: अच्छा जी, तो बता दीजिए क्या है आपकी गाने की फरमाइश।
1: अरिजीत सिंह की आवाज में गाना है अजीबो गरीब। हेलो।
0: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
1: और लिसनर को डेडिकेट है। और मुझे ये भी कहना है कि मैं सुबह में नाम तो मैं नहीं सुन पाई, लेकिन किसी लिसनर का ये मैसेज था कि सोनी जी अक्सर लेट आती थी तो बोलती थी कि रमाई चॉइस की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन आप तो बिल्कुल समय के साथ आ गई। मैसेज आया था तो पता नहीं किसका आया था, नाम तो नहीं सुन पाया, क्योंकि जब ट्यून किए तो सिर्फ आप ये मैसेज शामिल कर रही थी।
0: जी,
1: तो मैं कहना चाहूंगी कि जब ऐसा होता था तो सोनी जी अकेले थी, और अभी आज भारती जी आई हैं तो हेलो माय चॉइस की रिकॉर्डिंग भारती जी ने। बस यही कहना है। और दूसरा बात कि मेरा गाना प्ले कर दीजिए, मैं अभी ट्रेन में हूँ और सुन रही हूँ।
0: ओके, तो चलिए आपके गाने को प्ले कर दिए हैं और एंजॉय कीजिए आप भी सभी के साथ।
1: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद
0: रेडियो रिमझिम में कॉल करने के लिए आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029294921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमज जैट पर।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में, आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527888291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527888291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: ओम नमः शिवाय।
5: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
4: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
5: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
5: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
5: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
4: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
5: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
4: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
5: बोलबम हर हर महादेव।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ेंगे, हमारे पास यहाँ बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो लिख रहे हैं सुपर सॉन्ग दी सोनी दी, सुपर सॉन्ग का हाल बा सोनी दी। तो सोनी दी तो ठीक बानी और गाना बहुत ही खूबसूरत रहा है, और गाना रहा अजीबो गरीब। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मैम बताई नहीं आप, तो क्या नहीं बताया तो ज़रूर बताइएगा। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो क्लिक रहे नमस्कार दिव्या मैम, नयन टेलर शिवरापुर से मुझे गाना सुना दीजिएगा पायल आवाज़ करता। तो गाना तो अभी कुछ देर पहले इस गाने को प्ले किया गया था। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मुझे गाना सुना दीजिएगा, और मैसेज करने वाले हैं मुकेश यादव अहमदाबाद से, और गाना है सैयारा मूवी का टाइटल सॉन्ग। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं सभी के साथ।

0: तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं अगले फरमाइश की तरफ। और यहाँ मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं मुकेश यादव जी, थैंक्स मैम मेरा गाना बजाने के लिए। तो लिख रहे हैं सॉन्ग में इमोशन जुड़ गया, सॉन्ग से इमोशन जुड़ा हुआ है। ओह तो चलिए कोई बात नहीं, गाना आपने इंजॉय किया। और यहाँ और मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं सोनी दी कहाँ बानी। तो सोनी दी तो अभी छुट्टी पे बानी, और हमारे पास यहाँ कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँच हुई है। तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो।
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। नाम बता दीजिएगा अपना। जी कौन सा गाना सुनना है?
1: जब सांस दिल किनारे है वो तेरी
0: सांस। और गाना किसी को सुनाना भी है?
1: हाँ, ये मेरी बहन है, मेरी भाभी भी है, और रेडियो सुनने वाले सभी दोस्तों को भी।
0: और किस सिंगर का है ये? ओके, चलिए आपका गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ।

तो अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, जब साथ देवे के ना रहे तो प्यार कैला, और इसी गाने के साथ बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, वाव सुपर सॉन्ग और बहुत फास्ट चलाते हैं, सिस्टम बढ़िया एक्सपीरियंस है आपको जी मैम। और लिख रहे हैं ठक ठक की आवाज़ आता है, थोड़ा सा भी नहीं लग रहा है कि न्यू हैं आप, तो कोशिश तो कर ही रही हूँ कि अच्छा कर सकूँ। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हेलो नेम कुंदन कुमार बिहार मुजफ्फरपुर से, सॉन्ग नाम नई झुलनी के छैया बलम दोपहरिया में आई जीता। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि नीलम आजमगढ़ से जुड़ी हुई है और गाने की फरमाइश के साथ, और यहाँ गाने के बोल हैं, मेरा कंगना तेरे बिना सजना नींद नहीं आती। तो चलिए बिना देरी किए गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं सभी के साथ।

तो अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं गंगा सागर सिंह, मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, एक बात कहूँ, बात थोड़ा ज़्यादा कीजिए, आपकी आवाज़ बहुत ही प्यारी है, सॉन्ग थोड़ा कम चलाएं तो भी चलेगा। तो ऐसा है, मेरी आवाज़ आपको अच्छी लगी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं, भारती जी मेरा गाना चलाने के लिए धन्यवाद। और इसी के साथ यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं, सुपर सॉन्ग सोनी दी कहाँ बानी। तो सोनी दी तो अभी छुट्टी पे बानी, अबे हम कह हारली बता चुकनी कि सोनी दी अभी छुट्टी पे बानी। और यहाँ एक और गाने की फरमाइश हमारे पास पहुँची हुई है जो कि मैसेज करने वाले हैं। कुंदन कुमार बिहार मुजफ्फरपुर से, तो बहुत बहुत स्वागत है इनका भी। और गाने की फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं, गाने की फरमाइश है, नई झूलनी की छैया बलम दोपहरिया में आई जीता। तो चलिए बिना देरी किए गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं सभी के साथ। और

और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है, भारती जी क्या गाना बजा रही हैं आज प्रोग्राम में, मज़ा आ गया आज का प्रोग्राम सच में। निजामुद्दीन सऊदी अरब से बहुत अच्छा लगा यह गाना आज से जो आप चला रही हैं, सुबह से बहुत अच्छा गाना चल रहा है, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। तो इसी के साथ आज दीजिए हमें इस शो से जाने की इजाज़त। तो श्रोताओं समय हो गया है कार्यक्रम समाप्त करने का। तो कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप हमसे जुड़ना चाहें तो हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के जरिए माध्यम से जुड़ सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852788291। और अगला कॉल और कॉल के जरिए जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277165696। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और इन्जॉय कीजिए सभी के साथ गाने को। और यहाँ सभी की तरफ से बाय बाय का मैसेज पहुँच चुका है।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
5: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
5: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
5: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
5: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
6: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
6: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
6: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
7: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: गोपालगंज। अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली।

0: एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
1: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
5: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
5: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
3: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 अमरजैट पर।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के,
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
7: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
8: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
9: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
10: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
11: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
9: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
8: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
9: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
11: कॉल करे 87894-18744।
12: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
13: ये रचना संत कबीर दास जी के बा। कबीर दास जी बतावा तारन कि आवागमन से मुक्त अगर फल चाहता रह तो एगो शर्त बा, आवागमन से मुक्त होकला के मतलब कि ब्रह्म से मिलन, कैसन शर्त कबीर दास जी रखता रहन, सुनी एक गीत के माध्यम से।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: ओम नमः शिवाय।
3: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
2: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
3: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
3: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
2: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
3: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
2: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
3: बोलबम हर हर महादेव।
4: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
5: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
4: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
5: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
4: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
5: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या। दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
6: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
4: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527888291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527888291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और X3 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97714861.
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
3: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD शादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
4: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर, RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
5: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
0: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: RR मोड SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड के पास कुचायकोट,
0: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
0: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
1: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
0: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
6: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
2: सिर्फ 1-2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM तक।
3: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
6: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
7: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
6: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में,
8: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
9: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
10: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
11: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
10: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
11: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
8: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
11: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
8: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
11: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
8: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
12: Now pick it up,
13: hello.
12: Now pick your phone up,
13: hello.
12: Pick it up,
13: hello.
12: Now pick your phone up,
13: hello.
14: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello, hello, hello, hello, hello,
15: hello. Hello, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त RJ भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बज चुके हैं और बिल्कुल समय के साथ हाजिर हो चुकी हूं आप सभी के बीच आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माई चॉइस के साथ। यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
16: Hello, hello, hello, hello.
13: हेलो
16: हेलो
13: जी गुड मॉर्निंग मैम।
16: गुड मॉर्निंग
13: जी, कैसे हैं?
16: मैं ठीक हूँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
13: जी बोल रहे थे गाना सुनना है मैम।
16: जी कौन सा गाना सुनना है?
13: वो एक है ना ओढ़नी के कोर से तो पूछा अपन लोर गावे आई वे गोड़ी।
16: और गाना किसी को सुनाना भी है?
13: जी सुनाना है।
16: बता दीजिए।
13: जी मेरे भाई लोग का है और यहाँ पे जितने वर्कर सब है उन सबको और जितने रिमझिम में है उन सब लोगों को।
16: ओके तो चलिए मैं आपका गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहिए सबके साथ 90.4 FM।
13: ठीक है मैम, थैंक यू।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: नमस्ते मैम,
1: नमस्ते।
0: क्या हाल है?
1: मेरा ठीक है, आप अपना बताइए।
0: मेरा भी ठीक है। नाश्ता तो हो गया?
1: हाँ, मेरा तो नाश्ता हो गया है। आपका हो गया?
0: सुनी मैम बोल रही है?
1: नहीं, आरती बोल रहे हैं। तो आज कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: ये बंधन दिलों के बंधन है।
1: और गाना किसी को डेडिकेट है?
0: आप रेडियो रिमझिम सुने अपनी।
1: चलिए फिर आपका गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
7: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
6: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
6: संपर्क करें 9939365923।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
0: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 आमजेड पर।
3: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
5: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
6: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200-42-34-03 6200-42-34-03।
7: Now pick your phone up.
8: Hello?
7: Pick it up.
8: Hello?
7: Now pick your phone up.
8: Hello?
9: The phone can be bajti hai to kehte hain hello.
3: आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमझिम 90.4 एफएम में।
11: नमस्कार। कैसे हैं?
10: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
11: ठीक है। आज लेट हो गया।
10: रिचार्ज नहीं था ना, इसलिए
11: रिचार्ज नहीं था। ये बारिश में आने में लेट हो गई।
10: नहीं नहीं, मुझे आने में लेट नहीं हुआ, रिचार्ज नहीं था। सर से बोल के अभी रिचार्ज कराए।
11: हाँ हाँ, अभी बोल रहा था इनकमिंग।
10: हाँ हाँ, सब ठीक।
11: गाना एगो सुने दो।
10: अभी कौन सा गाना सुने?
11: आज तिलकी राज के गाना केस कदम किया मान हानि के।
10: हाँ है।
11: और
10: सॉन्ग के
11: अच्छा,
10: गाना प्ले करते नहीं सुनते रहे सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।
11: ठीक है।

0: प्रणाम सर।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 91.4 एफएम में।
0: जी, हम बथुआ रोड कैमरा बाजार से बोले तनी। हेलो।
1: हाँ, कैसे हैं आप?
0: नया ब्यूटी पार्लर से।
1: अच्छा,
0: हमारे वो गाना फरमाइशी बा, तनी बजा दे।
1: बता दे कौन सा गाना?
0: अभी ऐसे 15 अगस्त आवे वाला बा, तो राष्ट्रीय गाना बजा दे कर्मा फिल्म के, जौन हरिक्रम अपना करेंगे।
1: हाँ।
0: जी, और सब कहीं अपन समाचार?
1: हमारे तो ठीक बा। और गाना क्यों के डेडिकेट भी बा?
0: और रेडियो रंजन सभी सभी लोगों के लिए।
1: अच्छा,
0: अपने सेमरा बाजार के सभी आई लोग
1: हैं। जी, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 91.4 एफएम।
0: जी सर।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: ओम नमः शिवाय।
3: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
2: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
3: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
3: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
2: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
3: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
2: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
3: बोलबम हर हर महादेव।
0: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779786164।
4: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9522874088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
5: आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो,
7: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: जी नमस्ते मैम।
7: नमस्ते,
6: गाना सुनना है?
7: जी बता दीजिए कौन सा
6: गाना।
7: हेलो
6: हेलो।
7: हाँ,
6: खुशी के बदले खुशी नहीं मिलती है गाना, नहीं क्यों किसी को यही गाना सुना है।
7: और गाना किसी को डेडिकेट है?
6: और गाना रेडियो रेंजिंग सुनने वाले के लिस्नर हो और आपको भी। मेरा नाम निरंजन कुमार है। आपका नाम है?
7: आरती।
6: आरती खाली?
7: हाँ
6: जी, ठीक है। और समाचार?
7: समाचार सब ठीक है, आप अपना बताइए।
6: मेरा भी ठीक है, थोड़ा सर्दी हो गया है।
7: अच्छा, धूप लग गया है क्या?
6: हाँ, धूप में गन्ना का जूस पी लिए थे उसके बाद।
7: अच्छा,
6: इसलिए लग रहा है।
7: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो, हाँ जी नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: जी मैं विकास कुमार बोल रहा हूँ, झिंतापुर से।
1: जी कैसे हैं आप?
0: बढ़िया मैडम, आप कैसे हैं मैडम?
1: हम भी ठीक हैं, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: आपका आवाज आज लग रहा है कि सोनी जैसा लग रहा है, सोनी मैडम जैसा।
1: अच्छा, सोनी मैम तो योर वॉइस योर चॉइस का शो करते हैं ना।
0: आवाज आपका आज वही लग रहा है सोनी जैसा, सोनी मैम जैसा। आज आवाज आपका पहचान लिया।
1: लेकिन हम तो भारतीय है ना।
0: भारतीय है और बताइए मैडम, बारिश वारिश हो रहा है गोपालगंज में?
1: नहीं अभी तो नहीं हो रहा है।
0: अच्छा, धूप निकल रहा है।
1: हल्का हल्का धूप निकल रहा है।
0: आज हम लोग का गाना सुनवाइएगा खेसारी लाल को, बोलबम का वाला गाना है। रोड में कंवरियन के भीड़ लगल बा, हमें चलैया पे दिया ड्राइवर हो।
1: अच्छा,
0: यही वाला। अभी सावन का चल रहा है ना, इसलिए हम लोग सोचे की आज बोलबम का गाना फरमाइश करें।
1: बिल्कुल, चलिए फिर। गाना किसी को डेडिकेट है?
0: गाना तो डेडिकेट मेरे गुरुदेव भाई है और मेरे अंकल जी है, ललन अंकल जी सिवान जिला का। और सबसे पहले तो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं ना, यही तो गलती हो गया मेरे।
1: अरे नहीं ऐसा नहीं है, किसी को डेडिकेट कीजिए, सुनना ही है। मैं तो वैसे तो मैं सुन ही लेती हूँ।
0: अच्छा, जितना रेडियो रिमझिम सुनने वाले हैं श्रोताओं, सबको श्रोताओं को सुनवाना चाहते हैं।
1: बिल्कुल,
0: मेरे घर में मेरे मम्मी पापा, मेरे वो क्या बोलते हैं, मेरे लड़की है, वो भी सब ये गाना का फरमाइश है।
1: चलिए तब तो और बढ़िया है।
0: मेरी लड़की बोली कि नहीं पापा, आज गाना वही खेसारी लाल का फरमाइश कीजिएगा। फोन करके बोली थी, हम बोले कि नंबर दे देते हैं बेटा, बात कर लेना। और सब बढ़िया है ना मैडम?
1: हेलो, आप सब बताइए, आप सब ठीक है ना?
0: हाँ बढ़िया है जी, आप लोग का आशीर्वाद चल रहा है। बस हम लोग ऐसे ही फोन करते रहेंगे, गाना सुनते रहेंगे बस,
1: और हम सब आप सबकी फरमाइश को पूरा करते रहेंगे।
0: फरमाइश क्या चीज का?
1: गाने की फरमाइश को पूरा ऐसे ही करते रहेंगे,
0: ऐसे ही पूरा करते रहेंगे गाने का फरमाइश। जैसे हम लोग गाना फरमाइश करते हैं तो रेडियो स्टेशन में भी बजता है?
1: हाँ बजता है यहाँ भी।
0: अच्छा, और उसी को बजाया जाता है वो रेडियो, जो जितना सुनने वाला है वो रेडियो सुनता है?
1: रेडियो पे जब बजता है तो यहाँ भी रेडियो रखा हुआ है, हम लोग भी सुनते हैं और सारे लिसनर वो तो अपना सुनते ही होंगे।
0: अच्छा, रेडियो स्टेशन रखा हुआ है?
1: हाँ,
0: बजता है। अच्छा,
1: अभी सोनी जी का प्रोग्राम चल रहा है, वो भी हम लोग सुन रहे हैं, अभी बज रहा है वो भी।
0: सोनी जी का वो कौन सा है, उसमें फरमाइश
1: था योर वॉइस योर चॉइस का? हाँ,
0: हेलो माय चॉइस का।
1: ये तो हेलो माय चॉइस है जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो योर वॉइस योर चॉइस है।
0: आप खाली रिकॉर्डिंग करते हैं और एक मोनार्मा जी है वो।
1: हाँ
0: चलिए ठीक है मैडम, ठीक है।
1: ओके, फिर गाना आपका प्ले करते हैं, सुनते रहिए सब। रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9452111001। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9439456551 या 9707-06-575।
7: Now pick it up, pick it up.
8: Hello.
7: Now pick your phone up.
8: Hello.
7: Pick it up, pick it up.
8: Hello.
7: Now pick your phone up.
8: Hello.
9: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो,
8: हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
10: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो रे, मुझे रेडियो गोपालगंज जी।
12: हाँ जी,
11: सोनी बेटा, सत श्री अकाल भाई।
12: सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
11: धन्यवाद भाई, मैं भाई पिंड मौड़ को डिस्ट्रिक्ट बठिंडा पंजाब तो जगजीत मटू बोलता बेटा।
12: ओके, और कौन सा गाना सुनना है आपको?
11: बेटा एक पुरानी फिल्म है, देश प्रेमी फिल्म है भाई
12: जी। गाना है कौन सा है बता दीजिए।
11: बताऊना बेटा, गुनगुना कर बताऊ?
12: गुनगुना दीजिए।
11: हाँ सुनाऊना बेटा, हैगा भाई फिल्म हैगा भाई गीत हैगा, मेरे याद आगे भूल गया जी। मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, ये गीत है भाई।
12: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
11: हाँ बेटा, मेरे मान जोग बड़े भाई हैगा जी देवेंद्र सिंह तग्गड़ साहब, अमरजीत सिंह बाला साहब प्रिंसिपल रिटायर हो भाई, सुखपाल सिंह नेशनल कॉलोनी बठिंडा तो डॉक्टर रिटायर हो भाई, मलकीत सिंह घड़ीसाज, भाई स्वामी धर्मपाल जी, परमजीत सिंह बाघा पुराना। बेटा आपको सत श्रीकाल बुलाऊंगे। सत
12: श्रीकाल, बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो में कॉल किया।
11: ठीक है बेटा, सत श्रीकाल भाई, सत श्रीकाल।

0: नमस्ते पार्थिया मैडम
1: जी, नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
0: मैं एक गाना की फरमाइश करना चाहता हूँ।
1: बता दीजिए।
0: गाना मुझे चाहिए है कितनी बेचैन हो के तुमसे मिला। फिल्म का नाम है, फिल्म का नाम आपको पता होगा।
1: गाना किसी को डेडिकेट भी है?
0: भारतीय मैडम ये गाना आपको डेडिकेट करना है।
1: अच्छा, नाम वैसे क्या था आपका?
0: मेरा नाम है मोहम्मद वकास, स्कॉटलैंड ग्लासगो से बोल रहा हूँ। और भारतीय मैडम मौसम कैसा है इंडिया में?
1: मौसम इंडिया का अभी तो गर्मी पड़ रही है और धूप भी तेज ही निकल रहा है।
0: ठीक है, इधर स्कॉटलैंड में भी अच्छा मौसम है, इधर धूप निकली है।
1: अच्छा, चलिए तब तो बढ़िया।
0: हाँ जी, इधर मौसम बहुत बढ़िया है। हाँ जी, तो आपको इंडिया में मजा आता होगा?
1: इंडिया में बहुत मजा आता है।
0: अच्छी बात है, तो आपको इंडिया पसंद है?
1: मुझे तो बहुत पसंद है।
0: ठीक है, जाऊंगा इंडिया मुलाकात करने के लिए।
1: बिल्कुल स्वागत है आपका इंडिया।
0: ठीक है भाटिया, आऊंगा इंडिया, एक बार ट्राई करूंगा। अगर वीजा लग जाएगा तो आ जाऊंगा, वीजा नहीं लगेगा तो नहीं आ।
1: गाना प्ले कर रहे हैं?
0: हाँ जी, तो गाना जरूर प्ले करना है, आपको डेडिकेट कर रहा हूँ भाटिया मैडम। और मुझे माशाल्लाह आपका प्रोग्राम भी बहुत अच्छा लग रहा है।
1: आपको अच्छा लगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपको भी धन्यवाद मेरा गाना गाने के लिए। तो नमस्ते
1: जी। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो प्रिंसिपल में कॉल करने के लिए।

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं।
1: जी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
5: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
6: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
5: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
7: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9939365923।
8: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
9: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
8: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
10: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
11: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
12: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
11: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
13: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
14: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
15: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
16: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003, 62042434003।
17: Now pick it up, now pick your phone up. Pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello.
18: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-9911। जी हाँ, 8029-94-9911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
19: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजिंग 91.4 एफएम में।
20: जी मैम नमस्ते।
19: नमस्ते,
20: कैसी हैं आप?
19: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
20: मैं भी बिल्कुल अच्छा हूँ।
19: क्या हो रहा है अभी?
20: अभी तो कुछ नहीं, खाना खा रहा था, कॉल लगा रहा था।
19: अच्छा, चलिए भोजन हो गया?
20: नहीं अभी आधा हुआ, आधा बाकी है, तब तक फोन ही लग गया।
19: अच्छा जी, तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा।
20: गाना कोई आप अपने पसंद से सुना दीजिएगा।
19: अच्छा, मेरी पसंद से सुनिएगा।
20: हाँ जी मैम।
19: सॉन्ग कितनी डेडिकेट भी रहेगा?
20: हाँ, सभी रेडियो रिमशिप सुनने वाले सभी श्रोताओं को और आपको और आपकी पूरी टीम को।
19: ओके, ये फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमशिप 91.4 एफएम।
20: जी मैम, थैंक यू,
19: वेलकम।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो
2: आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
3: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजिंग 91.4 एफएम में।
4: जी मैम नमस्ते।
3: नमस्ते,
4: कैसी हैं आप?
3: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
4: मैं भी बिल्कुल अच्छा हूँ।
3: क्या हो रहा है अभी?
4: अभी तो कुछ नहीं, खाना खा रहा था, कॉल लगा रहा था।
3: अच्छा, चलिए भोजन हो गया?
4: नहीं अभी आधा हुआ, आधा बाकी है, तब तक फोन ही लग गया।
3: अच्छा जी, तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा।
4: गाना कोई आप अपने पसंद से सुना दीजिएगा।
3: अच्छा, मेरी पसंद से सुनिएगा।
4: हाँ जी मैम।
3: डेडिकेट
4: भी रहेगा? हाँ, सभी रेडियो वाला सभी श्रोताओं को और आपको और आपकी पूरी टीम को।
3: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ।
4: जी मैम, थैंक यू,
3: वेलकम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: जी रमजान
1: जी, कैसे हैं आप?
0: बढ़िया है।
1: तो आज कौन सा गाना सुनने हैं?
0: आज सुनवा दीजिए, गद्दार मूवी है 60 का। उसमें गाना ये वाला है, तुमसे मिलने को मैं बेकरार हूँ।
1: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
0: जी आपको जितने श्रोता सभी को, हम भी सुनेंगे, अपने दोस्त लोग के साथ सुनेंगे।

0: सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7-14-86-164।
2: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-029-94-921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AM-Z पर।
1: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
0: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होल

0: रेलमार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9522874088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
0: ओम नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंतोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
2: बोलबम हर हर महादेव।
3: Now pick it up,
4: hello.
3: Now pick your phone up,
4: hello.
3: Pick it up,
4: hello.
3: Now pick your phone up,
4: hello.
5: Jab phone gindi bajti hai to kehte hain hello.
6: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो
8: हेलो हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
8: जी मैडम जी, नमस्ते।
7: नमस्ते,
8: मैं ज्योति साहू मक्सुरंजा से बोल रही हूँ।
7: कैसी हैं आप?
8: बढ़िया हूँ, आप कैसी हो?
7: मैं भी ठीक हूँ।
8: उस दिन मैंने फोन लगाया था मैडम, मेरी रिकॉर्डिंग नहीं आई, उस दिन गाना नहीं आया मेरा।
7: उस दिन नहीं आया लेकिन अगले दिन तो आया था।
8: नहीं आया, अगले दिन भी नहीं आया वो।
7: ऐसा तो नहीं, आपका गाना मतलब है तो बज गया है। शुक्रवार का आधा से अधिक कॉल बज गया, 2-4 कॉल बचे हुए हैं, बस वहीं बजाना है।
8: हाँ मैडम जी, इसमें से मेरी भी नहीं आई थी।
7: अच्छा जी, तो देख लेते हैं इसमें है कि नहीं आपका।
8: ठीक है,
7: और सॉन्ग आज बता दीजिए कौन सा सुनना है।
8: आज कौन सा सॉन्ग पसंद है? मुझे वो पसंद है, माइन माइन मुंडेर पे तेरे बोल रहा है काला।
7: ओके, और सॉन्ग किसी को दे दी?
8: अपने पति को। उनके कुछ दोस्त भी है, वो भी बोल लगा रहे हैं बोलते से, लेकिन उनका लग नहीं रहा है अभी।
7: अच्छा जी।
8: हाँ, उनका कॉल लग नहीं रहा है अभी, बोल रहे थे हमारा नहीं लगा है, आपका लगा है? नहीं मैंने, मेरा भी लगा अभी, तो बजा दीजिए मैडम ये वाला गाना हमारा।
7: चलिए फिर गाना आपका प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
8: ठीक है मैडम जी।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम जी 90.4 एफएम में।
0: नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: क्या चल रहा है?
1: मेरा ठीक है, आप अपना बताइए।
0: ठीक है, ओके। खेसारी लाल का गाना नहीं है, पुराना वाला बाबा धाम वाला
1: नया जो निकला है वो?
0: नहीं नहीं, नया वाला भी ठीक है, वो पुराना वो नहीं है, चल रहा है भीड़ लगाल बाला, वही गाना चाहिए।
1: चलिए फिर, और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
0: ठीक है, सुरेश यादव है, गुड़िया है, रूबिया उसकी माँ, यही लोग करवा दिया है।
1: जी जी, तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 91.4। नमस्ते
0: नमस्ते।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार।

0: नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434068 पे।
8: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
9: आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो जी, नमस्कार मैडम जी।
11: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
10: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू, मधुसूदन पर, जिला गुना, मध्य प्रदेश से।
11: जी क्या हाल चाल है आपका?
10: आज दीदी दुकान पर बैठे हैं और आपका रेडियो रंजन सुन रहे हैं।
11: अच्छा जी, तो आज कौन से गाने की फरमाइश?
10: जी मैडम जी, पिक्चर का नाम तो याद नहीं, गाने के बोल है काले लिबास में ऐसा लगे जैसे कोरा बदन निकल रहा है कोयले के कान से।
11: अच्छा, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
10: जी सबसे पहले आपको है अपने गजराज सिंह लोधी है, गोपाल ओझा है, जितेंद्र धाकड़ जी को, इनको सबको गाना डेडिकेट है ये।
11: जी चलिए फिर गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।
10: धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: थैंक यू मैम, कैसी हैं आप?
0: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
1: मैं भी बिल्कुल ठीक। नाश्ता हो गया आपका?
0: नाश्ता करके आते हैं।
1: आज सुनना है,
0: बता दीजिए कौन सा?
1: गलीनी आज चांदनी।
0: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
1: रेडियो सुनने वाले सभी दोस्तों को और आपको भी।
0: ओके,
1: आप कौन बात कर रही है? भारती मैम या सोनी?
0: भारती,
1: आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है।
0: चलिए तब तो अच्छा है, ठीक है, आपको मुझसे बात करके अच्छा लगा।
1: कब तक बज जाएगा ये सॉन्ग मैम?
0: आज नहीं तो कल बज जाएगा। चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
1: थैंक यू मैम।
0: वेलकम।

0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है। कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस वक्त ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन KDIA मैक्सिलो।

0: फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास बेतिया हाता गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
0: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
2: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
0: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
3: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमिजन 90.4 FM में।
8: कैसे हैं?
7: मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? बता दीजिए कौन सा? और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है? चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो।

0: हेलो
1: जी, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजी 90.4 एफएम में।
1: क्या गुप्ता हिंसा
0: कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है जी, आप कैसे हैं मैम?
0: मैं भी बढ़िया हूँ।
1: अरे गर्मी से बहुत हालत खराब जो हो रहा है।
0: गर्मी तो बढ़ गया है,
1: धूप बहुत निकल रहा है, बहुत
0: धूप भी वैसे ही निकल रहा है, गर्मी भी वैसे ही बढ़ा हुआ है।
1: एक ठंडी का मौसम सही रहता है
0: हमको तो भाई, ठंडी अच्छा लगता है।
1: ठंडी तो हमको भी अच्छा लगता है मैडम,
0: क्योंकि ठंडी में अपना स्वेटर पहनिए और निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं।
1: हीटर लगा करके बैठे रहिए के दिन में ना।
0: हीटर है, आग है, सब तो है ही है और गर्मी के दिनों में तो पूरा हाल होता है।
1: और बताइए, ये सोनी सिस्टर कैसे हैं?
0: सोनी जी भी अच्छी हैं।
1: अच्छा, आजकल बात भी नहीं हो रहा है। आज रितेश पांडे का गाना सुनना है,
0: बता दीजिए।
1: कहाँ यही वाला मैडम गाना सुनना है, ठीक है?
0: और सॉन्ग डेडिकेट भी रहेगा।
1: सबसे पहले आपको डेडिकेट है,
0: ओके।
1: और उसके बाद जितना रेडी रेंजन सुनने वाला है सब।
0: जी, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रेंजन 90.4 एफएम।
1: ठीक है, ओके, नमस्ते
0: नमस्ते।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
2: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे मेरे साथ यानी आरजे भारती के साथ, और अब हमारे स्टूडियो की घड़ी के कांटे इशारा कर रही हैं समय हो गया है शो की समाप्ति का। यदि आप भी चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को सुबह 11 बजे से 12:30 के बीच हमारे नंबर 80029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल आज हमें इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त, मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और अपनों का भी, सुनते रहें रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
6: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स।
3: BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
3: RR मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
3: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
3: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करें बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
3: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
7: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
8: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
7: और लाइट बिल के,
8: अब 0 रुपए कैसे दूं?
7: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
8: पक्का।
9: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
10: हर घर सूर्य घर।
11: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
12: मैं बनूंगा।
13: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
11: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
13: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
11: ऑनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमज़ेड पर।

विक्रम ने फिर एक बार बैताल को वृक्ष से नीचे उतारा और अपने कंधों पर डालकर चल दिया। रास्ता काटने के लिए बैताल ने विक्रम को एक नई कहानी सुनानी शुरू की, जो थी एक प्रेम कहानी, एक

चारों राजकुमारों ने राजा से राजकुमारी का हाथ मांगा। इस कठिन समस्या के हल के लिए राजा ने उन चारों के सामने एक शर्त रखी। बोले, मैं तुम्हें एक महीने का

समय देता हूं। अगली पूनम तक जो भी राजकुमार राजकुमारी के लिए सबसे अनमोल भेंट लाएगा, राजकुमारी उसी के गले में वरमाला डाल देगी।

0: कोई चमत्कारी योगी है?
1: किसी राजकुमारी को चाहते हो, परंतु मेरा रास्ता तो अलग है। मैं संसार में प्राणियों को भगवान की राह दिखाता हूं।
0: अगर कोई प्रेम को ही भगवान मान ले तो?
1: प्रेम भी एक तपस्या है। जो इंसान से प्रेम नहीं करता वो भगवान से क्या करेगा? मैं तुम्हारे मन की बेचैनी समझता हूं। मैं एक जप करने वाला हूं। यदि मेरा जप बिना विघ्न के समाप्त हो गया तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा।
2: इतना जल्दी थक गए बेटा? प्रेम यात्रा तो बहुत कठिन है।
3: इसको मेरी प्रेम यात्रा का कैसे पता है? माँ, बरखा आ रही है, मैं तेरे लिए कुटिया बनाता हूँ।
2: मुझे अंधेरे से तुझे क्या मिलेगा बेटा?
3: माँ का आशीर्वाद जो संसार में सबसे शक्तिवान है।

0: कौन है?
1: मैं एक वैद्य हूँ।
0: इस वन में क्या ढूंढ रहे हैं?
1: मेरी गई हुई आयु।
0: मैं समझा नहीं।
1: मैंने मेरे गुरु को वचन दिया था कुष्ठ रोगियों के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र खोलूंगा। उसके लिए मुझे शक्री चाहिए। शक्री पाने के लिए मैं क्रिया करना चाहता हूं और उसके लिए मुझे एक कुंवारा लड़का चाहिए।
0: मैं हाजिर हूं।
1: तुम पर मेरा क्या अधिकार है बेटे?
0: मेरी मां ने कहा था बड़ों की सेवा करना और बिना किसी मतलब की सेवा करना।
2: सुनिए, मुझे आपसे कुछ काम है।

0: क्या बात है?
1: ये कारिंग मुझे दे दो।
0: लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा?
1: इसके बदले ये हीरे की अंगूठी है, बहुत अनमोल है, इसे ले लो।

आज मेरा जाप समाप्त हुआ। आज मैं तुम्हें एक ऐसी अनमोल चीज भेंट करूंगा कि तुम जिस राजकुमारी को चाहते हो, तुम उसे जब भी याद करोगे वो तुम्हारी नजरों के सामने होगी। ओम नमः शिवाय।

0: मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ, किंतु मेरे मंत्र का तभी असर हो सकता है यदि मैं तुम्हें देख सकूं।
1: क्या ये रोशनी वापस नहीं आ सकती?
0: आ सकती है, परंतु इसमें प्राण का खतरा है।
1: आप चिंता न करिए माँ, मैं प्यार पाने से पहले मरूंगा नहीं। आप सिर्फ उपाय बताइए माँ।
0: बेटा, सामने मेरे गुरु की समाधि है। समाधि के पास एक मिट्टी का ढेर है जिसके ऊपर कच्ची धागों से बंधी तलवारें लटक रही हैं। तुम्हें उस मिट्टी के ढेर में छिपा यंत्र निकालना होगा, मगर जैसे ही यंत्र निकालना आरंभ करोगे मेरे गुरु की समाधि जागृत हो जाएगी, तुम बन जाओगे। पास लटकी हांडी से पानी टपकना शुरू हो जाएगा, 10 पल के अंदर ही यंत्र निकालना होगा। 10 पल समाप्त होते ही माटी की हांडी फूट जाएगी और तलवारें तुम पे गिर पड़ेंगे जो तुम्हारे प्राण ले सकती हैं।

ठीक है राव, अब मैं तुम्हें देख सकती हूँ। तुम एक राजकुमारी से प्रेम करते हो, मेरे दिए हुए उपहार से तुम राजकुमारी का प्रेम जीत लोगे।

0: धन्य हो माँ, धन्य हो। अब मैं राजकुमारी का हाथ अवश्य जीत सकता हूँ।
1: बेटा, मेरा एक दुश्मन भूतनाथ जादूगर तुम्हारे इस काम में विघ्न डालेगा, किंतु किंतु ये माला उसके जादू का तोड़ है। लो बेटा।
2: मैं समझ गया महाराज।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
3: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
4: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
5: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
0: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी। अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
5: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
4: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
5: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
0: कॉल करे 87 8 94 18 7 44। ओम नमः शिवाय।
5: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
5: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
5: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
5: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
5: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
5: बोलबम, हर हर महादेव।

मुझे एक ऐसी चीज मिली है जिससे आप सबको हार माननी पड़ेगी। ओम नमः शिवाय।

0: मद्राज क्या कह रहे हैं ये तुम नहीं कह सकते, ये मैं बता सकता हूं। जय भोले शंकर।
1: महाराज कोई औषधि असर नहीं कर रही है, ईश्वर न करे राजकुमारी आज रात तक।
0: हमें वहां फौरन चलना चाहिए, राजकुमारी की हालत खराब है। और मैं तुम सबको ले जा सकता हूँ।

0: राजकुमार कैसी है?
1: हम तो निराश हो गए। राजकुमार अब कुछ घड़ियों की मेहमान है, अब उसका कोई इलाज नहीं।
2: ये फूल आप राजकुमारी को सुंघा दीजिए,
1: वो ठीक हो जाएगी, हमारी बेटी बच जाएगी।

0: फूल तुम हमें दे सकते हो?
1: अब इसका कोई फायदा नहीं महाराज, ये फूल एक ही बार असर करता है, अब इसका असर जाता रहा है।

0: मैं तो अपंग हूं, राजकुमारी के योग्य नहीं हूं। मैं तो चला।
1: इतनी कहानी सुनाने के बाद बैताल रुक गया और उसने विक्रम से किया प्रश्न। बता विक्रम, राजकुमारी किसको मिलनी चाहिए?
2: जल्दी बता, वरना मैं तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हाँ
0: बेताल, ये ठीक है कि शीशे से वो राजकुमारी दिखी, जादू की आवाज से उसके रोग का पता लगा, कालीन से वो सब राजकुमारी के पास पहुंच गए, किंतु राजकुमारी के पास पहुंचने से भी क्या लाभ होता यदि अमर के पास वो चमत्कारी फूल ना होता? अपाहिज अमर यदि चाहता तो उस फूल से अपने आप को भी अच्छा कर सकता था, किंतु बेताल उसने बहुत बड़ा बलिदान दिया और राजकुमारी को अच्छा किया। अमर भावरा नहीं, दीपक है। उसने अपने आप को जलाकर राजकुमारी को जीवन की रोशनी दी, इसीलिए राजकुमारी उन तीनों में से किसी को नहीं मिलेगी, वो सिर्फ अमर को मिलेगी। उस पर केवल अमर का अधिकार है।
3: अमर, अमर, राजकुमारी पर अधिकार तुम्हारा है।
4: हाँ, अपंग होने से तुम्हारा अधिकार घटता नहीं और बढ़ता है।
3: आप अपनी खुशनसीबी को मत ठुकराइए।
5: आपको हम तीनों की कसम है।
0: किंतु सवाल यह है कि राजकुमारी का अपंग को स्वीकार क्यों करेगी?
6: अमर, अमर, यदि विवाह के बाद पति या पत्नी को कुछ हो जाए तो क्या एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे? इस वक्त जो मैं सांसें ले रही हूँ वो आपकी दी हुई है और आपकी सेवा करना ही मेरा धर्म है।
0: ये प्रेम नहीं दया है, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी दया, नहीं चाहिए।
6: आपके बलिदान ने दया को प्रेम बना दिया।

ठीक तक से निर्णय किया तूने, अच्छा गणित किया, मगर तुम्हारी समस्या ये है कि निर्णय करोगे तो बोलोगे, और मेरी शर्त ये है कि तुम बोलोगे और मैं जाऊंगा, तुम बोले मैं जा रहा हूं।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
7: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
8: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
7: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
8: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
9: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
10: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान, नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब। पिछले 10
11: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विपक्ष के हंगामे के बीच परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग पर रोक लगाने के लिए विधेयक लोकसभा में पेश। सीवान में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान गोलीबारी का आरोपी पुलिसकर्मी सस्पेंड, पुलिस अधीक्षक ने कहा बिना आदेश चलाई गई गोली। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा राज्य के दूध उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। और बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव प्रचार अंतिम दौर में NDA, राजद और जनसुराज ने अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में किया रोड शो। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। विधेयक परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग पर रोक का प्रावधान करता है।
12: I rise to move. मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूँ।
11: विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में यह विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। एक रिपोर्ट।
13: यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित किए जाएंगे, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। वहीं पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। इस विधेयक का उद्देश्य भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगाने के साथ साथ परीक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा मजबूत करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
14: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
15: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
14: जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय झा ने कहा है कि उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के गठन से परीक्षा प्रणाली में मानवीय हस्तक्षेप और गड़बड़ियों की संभावना कम होगी। श्री झा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि युवाओं का भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए सरकार कड़े कदम उठा रही है।
16: ह्यूमन इंटरवेंशन कम होना चाहिए। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है, ये तो अभी का होगी, लेकिन परमानेंट ये फुल प्रूफ एग्जाम हो तो जितना टेक्नोलॉजी यूज होगा और ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा, उसी से आप फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने डे वन से बच्चों के कंसर्न को एड्रेस किया और ये जो टास्क फोर्स बनाया है, ये टास्क फोर्स आपको जो भी मैकेनिज्म देगा वो फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएगी।
14: सीवान में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान गोलीबारी करने वाले पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी जवान के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है।
17: इस संबंध में अभिषेक पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर जांच प्रारंभ की गई है, डिटेल इंक्वायरी की जा रही है। साथ ही मैं एड ऑन करना चाहूंगा कि जो जेपी चौक पर AK-47 की फायरिंग से किसी भी तरीके की कोई हानि नहीं है हुई है, कोई इंजर्ड नहीं हुआ है।
14: वहीं जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रे ने स्पष्ट किया कि सिपाही को गोली चलाने का आदेश किसी ने नहीं दिया था।
18: उनको आदेश नहीं था, उनको हवाई फायरिंग भी नहीं करनी चाहिए थी और उन्हें इस तरह का शस्त्र वो पब्लिक में ले ही नहीं जाना चाहिए। वो फंस गए थे, जैसे पूर्व में एसपी साहब ने बताया, कहीं और जा रहे थे और इस कमोशन में फंस गए थे।
14: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नालंदा के बिहार शरीफ में विकास योजनाओं का शुभारंभ करते हुए कहा कि राज्य के डेयरी उत्पादों को देश और दुनिया के बाजार तक पहुंचाने के लिए विस्तृत योजना बनाई जा रही है।
19: दुनिया के मार्केट में हम कैसे अपने दूध को, अपने आइसक्रीम को, अपने पेड़ा को कैसे दुनिया के मार्केट में ले जाने का काम कर सके, इसकी चिंता की जा रही है। इसलिए हम लोग केंद्र सरकार के राष्ट्रीय स्तर पर विकास कार्यक्रम के तहत कम्फेड के परियोजना की लगभग स्वीकृति दी गई है और इसके माध्यम से जो अभी कार्यक्रम चल रहे हैं, इसमें लगभग 2,500 के आसपास नई समिति बनाने का काम किया गया।
14: मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के प्रत्येक प्रखंड में प्रधानमंत्री पशु जन औषधि केंद्र स्थापित किए जाएंगे, इससे किसानों को बीमार पशुओं को लेकर समस्याएं कम होंगी।
19: हम लोगों ने तय किया है दो चीजों को बिहार के गांव-गांव तक फैलाना है। एक तो अभी सभी प्रखंडों में जिस तरह दवाई की दुकान उपलब्ध होती है, उसी तरह पशुपालन से जुड़े हुए जो दवाई उपलब्ध कराना है, उसके लिए भी दुकान लगभग 1,000 से अधिक केंद्र बनाने का काम पूरे बिहार में किया जाएगा सर।
14: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 20 मीट्रिक टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता वाले दही और लस्सी प्लांट का शिलान्यास किया। साथ ही कॉम्फेड द्वारा संचालित APCL पेट्रोल पंप और सुधा कैफेटेरिया का भी शुभारंभ किया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार के समर्थन में आज रोड शो किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी इस रोड शो में शामिल हुए। राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने पार्टी प्रत्याशी रेखा कुमारी के समर्थन में रोड शो किया। राजद का रोड शो मीठापुर से शुरू होकर सब्जी बाग में समाप्त हुआ।
1: सरकार को सबक सिखाने की जरूरत है। एक बार जनता खड़ी हो जाएगी तो आप सब लोगों को न्याय मिलेगा, तो सिलाके का भी विकास होगा।
0: इधर जनसुराज उम्मीदवार प्रशांत किशोर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में लगातार जनसंपर्क और सभाएं कर रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी भी पूरे उत्साह के साथ प्रचार में जुटे हुए हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार की अध्यक्षता में आज विधानसभा के विभिन्न संयुक्त समितियों के कार्यों की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित की गई। बैठक में समितियों की प्रभावशीलता बढ़ाने और जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि बैठक में कई आवश्यक सुझावों पर चर्चा के बाद आगामी कार्य योजना पर सहमति बनी है। राज्य के विभिन्न भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता एक बार फिर बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज, सीवान, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भागों में कई स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है।
2: अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान बसुआ में सबसे अधिक 60 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों के दौरान कैमूर और रोहतास जिले के विभिन्न भागों में तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात की आशंका है। दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त हिमांशु कुमार राय की अध्यक्षता में आज दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर जिले में बाढ़ और सुखाड़ की संभावित स्थितियों को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में विभिन्न तटबंधों की स्थिति, नदी के कटाव और आपदा प्रबंधन की तैयारियों के साथ ही अंतर जिला समन्वय को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में जल संसाधन विभाग के अभियंताओं और आपदा प्रबंधन से जुड़े कर्मियों को तटबंधों की निगरानी, सैंड बैग की व्यवस्था और अन्य जरूरी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के बेटे से गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई के नाम पर 50 लाख रुपए रंगदारी की मांग की गई है। व्हाट्सएप मैसेज के जरिए उन्हें रंगदारी की रकम नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। इस संबंध में मुजफ्फरपुर के सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को सम्मानित किया। खेल मंत्री ने उन्हें 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार प्रदान किया है। झंडू कुमार ने पुरुषों के हेवीवेट वर्ग में 190 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीता है। पटना में 28 जुलाई को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय रेड रन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मुंगेर विश्वविद्यालय के 6 खिलाड़ियों की टीम आज रवाना हुई। विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर घनश्याम राय ने इन्हें रवाना किया। सुपौल जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत बैरो में पुलिस ने छापेमारी कर मादक पदार्थ स्मैक की तस्करी में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने बताया है कि जिले से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 27 पर 12 करोड़ की लागत से 6 फुट ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए स्वीकृति मिल गई है, निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। सारण के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने छपरा शहर में संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने क्षेत्र में विधि व्यवस्था और शांति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। मधुबनी के जिलाधिकारी आनंद शर्मा के निर्देश पर जिले में चलाए जा रहे छापेमारी अभियान के दौरान उर्वरक की कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस दौरान 43 बैग अवैध रूप से भंडारित उर्वरक जब्त किया गया। पश्चिम चंपारण के बगहा में बनने वाले 100 बेड के अनुमंडल अस्पताल का शिलान्यास किया गया है। स्थानीय विधायक राम सिंह ने इसकी नींव रखी। इसके साथ ही पतिलार में 30 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया गया। अररिया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में विशेष छापेमारी अभियान चलाकर पुलिस ने 21 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से चोरी के 1819 मोबाइल फोन, प्रतिबंधित कोडीन युक्त सिरप और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। अरवल जिले के करपी प्रखंड के परियारी पंचायत में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लोगों को विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विपक्ष के हंगामे के बीच परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग पर रोक लगाने वाला विधेयक लोकसभा में पेश। सीवान में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान गोलीबारी का आरोपी पुलिसकर्मी सस्पेंड, पुलिस अधीक्षक ने कहा बिना आदेश चलाई गई गोली। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा राज्य के दूध उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। और बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार अंतिम दौर में एनडीए, राजद और जनसुराज ने अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में किया रोड शो। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सवा चार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97070675।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
6: प्रसाद क्लिनिक,
7: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
6: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
7: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
8: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
4: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
5: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
6: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
7: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
8: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
4: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
8: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
0: कॉल करें 87894-18744।
9: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
10: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
9: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
10: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
9: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
11: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
12: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
11: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
12: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
11: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमान गढ़ी गोपालगंज में है।
12: जानकारी है तो कॉल करें 62052-62112 पे।
13: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
14: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
13: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
15: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
15: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 1,03,54 रूपए और एक्सट्री 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
15: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86164।
16: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम

0: मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोड़ गोपालगंज, S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9852374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
0: ओम नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
2: बोलबम हर हर महादेव।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
5: All right.

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराएं नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
9: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
10: All right.

0: में दर्द के मारे जान ही निकल रही है। कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710-30992 या 9765-65750।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
9: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
9: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
10: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
11: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स।
4: BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
5: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
4: RR मोड SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
5: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
4: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
5: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
4: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
5: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
4: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
5: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
1: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
12: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल आमंत्रित करता है इन पदों के लिए आवेदन। जनसंपर्क अधिकारी, डिप्टी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, रक्तदान अधिकारी, मेडिकल फिजिसिस्ट, रेडियोथेरेपी विभाग तथा मेडिकल फिजिसिस्ट, न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग। जरूरी योग्यता, आवेदन करने का तरीका, आवेदन का फॉर्मेट, ईमेल और पोस्ट से आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख इत्यादि और अन्य शर्तों के बारे में जानकारी के लिए देखिए एम्स भोपाल की वेबसाइट www.aimsbhopal.edu.in। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में प्रशासनिक अधिकारी लेखा का एक पद रिक्त है। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, विस्तृत शर्तों की जानकारी हासिल कर सकते हैं इस वेबसाइट से www.labasna.gov.in। विकास आयुक्त हथकरघा कार्यालय नई दिल्ली में इन पदों को भरने की आवश्यकता है। सहायक रिक्तियों की संख्या 3, आशुलिपिक ग्रेड 1 रिक्तियों की संख्या 3 और उच्च श्रेणी लिपिक रिक्तियों की संख्या 2। अधिक जानकारी के लिए आप देखिए वेबसाइट www.handlooms.nic.in। भारतीय वायुसेना अग्निपथ योजना के अंतर्गत अविवाहित भारतीय पुरुष अभ्यर्थियों से अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बेटेंट भर्ती के लिए चयन परीक्षा में उपस्थित होने हेतु आवेदन आमंत्रित कर रही है। विस्तृत जानकारी के लिए आप देखिए वेबसाइट iafrecruitment.edcil.co.in। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स विशेषज्ञ सामरिक एनक्रिप्टरों के अभिकल्पन एवं प्रमाणीकरण के लिए 1 रिक्ति और सलाहकार सतर्कता के लिए 2 रिक्तियों पर आवेदन आमंत्रित करती है। इसके लिए आप देख सकते हैं वेबसाइट www.c.in। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया आमंत्रित कर रहा है कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पद के लिए आवेदन। पदों की संख्या 9 है। भर्ती सीधी भर्ती के आधार पर की जानी है और इसके लिए अधिक जानकारी हेतु आप देख सकते हैं वेबसाइट www.stpi.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी को आवश्यकता है सहायक विमान क्षेत्राधिकारी और प्रशिक्षणाधीन सहायक उड़ान अनुदेशक की। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की वेबसाइट igrua.gov.in पर करियर पेज देख सकते हैं। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र आमंत्रित कर रहा है कनिष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन ग्रेड 2 के 2 पदों और क्षेत्र कार्यकर्ता के 1 पद के लिए आवेदन। विस्तृत जानकारी के लिए आप देख सकते हैं वेबसाइट www.ncdc.mohfw.gov.in। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में परामर्शदाता परियोजना समीक्षा का 1 पद रिक्त है। वेतनमान आयु सीमा शैक्षिक योग्यता आरक्षण और अन्य जरूरी शर्तों की जानकारी के लिए आप देख सकते हैं एनडीएमए की वेबसाइट ndma.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
6: सुनिए सुनिए सुनिए,
13: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
6: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
13: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
6: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
14: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
15: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
14: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
6: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
16: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
17: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैनपट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
5: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
4: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
5: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
4: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
5: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
3: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
7: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
8: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
7: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
9: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
10: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
11: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
2: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003, 62042434403।
12: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
13: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
12: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
12: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AM-Z पर।
14: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
15: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत।

0: मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश, पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई, नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय ने टीम में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी ओमाफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत पर कड़ा विरोध जताते हुए यूक्रेन के राजदूत को तलब किया। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण ओडिशा में मूसलाधार बारिश, पूरे उत्तर भारत में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। सदन के दोनों सदनों की कार्रवाई, नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित। एक रिपोर्ट।
1: मानसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इसका उद्देश्य इस संबंध में बने 2024 के अधिनियम में संशोधन करना है। यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने देना चाहते।
2: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है, तो कांग्रेस कल भी हमने अपील किया, आज भी सुबह से हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोर जोर के कहते हैं कि आप बोलिए।
1: हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। चल रहे मानसून सत्र के दौरान अब तक संसद में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका है। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यों वाले विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एसआईटी में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का भी निर्देश दिया है। एसआईटी 2 सप्ताह के अंदर अपनी पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत एमवी ओमार्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए वाणिज्यिक जहाजों पर ऐसे हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने समुद्री नौवहन की सुरक्षा और स्वतंत्रता तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इनके प्रतिकूल प्रभाव को रेखांकित किया। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं, ये अस्वीकार्य हैं और इनसे बचना चाहिए। यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग न करने को कहा है। UKPNP ने कहा कि 5 जून से पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में जारी अशांति के बीच 40 से अधिक लोगों की जाने गई हैं। ये विरोध मार्च संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के विफल होने के बाद आयोजित किया गया। सिक्किम में नाथुला दर्रे के रास्ते से भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार अगले महीने की पहली तारीख से फिर शुरू हो जाएगा। इससे COVID-19 महामारी के कारण 2020 से निलंबित व्यापार फिर शुरू होगा। व्यापार की पुनः शुरुआत से सीमा पार व्यापार को और बढ़ावा मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्काई रूट एयरोस्पेस के पवन चन्ना और नागा भरत डाका से बात की। श्री मोदी ने विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी उनसे बात की। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष इकोसिस्टम की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काई रूट एयरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। असम में भीषण बाढ़ के मद्देनजर इजराइल ने असम और भारत के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है। भारत स्थित इजरायली दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित सभी लोगों के साथ उनकी गहरी संवेदना है। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकतर इलाकों में बाढ़ का पानी अब कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और चराईदेव जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में बनाए गए 109 राहत कैंपों में भी 37,000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री डॉ हेमंत बिस्व शर्मा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जैसे जैसे राज्य बाढ़ से उबर रहा है, प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण मूसलाधार बारिश जारी है। कई जिलों में बाढ़ और जल भराव से फसलों और बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासनों को 24 घंटे अलर्ट पर रखा है।
3: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे डिप्रेशन के कारण उड़ीसा में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में फिर से बाढ़ आ गई है और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने मयूरभंज, केंदुझर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, सुवर्णपुर, बौद्ध, नुआपड़ा और बलांगीर जिलों में इस महीने की 30 तारीख तक भारी बारिश होने की अनुमान जताया है। वासुदेवपुर में फिर से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जबकि सुवर्णपुर में फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी जिला प्रशासनों को राहत और बचाव कार्य तेजी से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड में बारिश की संभावना व्यक्त की है। देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर सहित कई पहाड़ी क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राज्य सरकार ने सभी जिला प्रशासनों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने कल ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणांतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। 31 जुलाई तक तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। 2 अगस्त तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज बारिश की संभावना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के सभी जवानों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र अपने वीर जवानों के शौर्य, उनके बलिदान और कर्तव्य निष्ठा के प्रति अटूट निष्ठा को सलाम करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा की रक्षा से लेकर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में नागरिकों की सेवा तक सीआरपीएफ कर्मियों ने हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि रखा। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश की रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था कि डॉक्टर कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। वहीं भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हैविट को शिकस्त दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने पर ज्ञानेश्वरी यादव को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने प्रतियोगिता में अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया है। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि उनकी ये सफलता देश के युवाओं को प्रेरित करेगी। नई दिल्ली में 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने आज पुरुष और महिला टीम स्पर्धाओं में 3-0 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत कर दी है। भारतीय पुरुष टीम ने जिम्बाब्वे को और वहीं महिला टीम ने मालदीव को शिकस्त दी है। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले पैरा पार लिफ्टर झंडू कुमार को अपने आवास पर सम्मानित किया। खेल मंत्री ने उन्हें 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया। झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में 190 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीता था। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में वेक्टर जनित रोगों, रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा का प्रसारण करेगा। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉ. अक्षय धालीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉ. पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। ओडिशा में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का समापन अनुष्ठान वार्षिक नीलाद्री बीजे आज पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में मनाया जा रहा है। लाखों श्रद्धालु इस दिव्य वापसी के साक्षी बनने के लिए पुरी में एकत्रित हुए हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश, पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को मिले चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी ओमाफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत पर कड़ा विरोध जताते हुए यूक्रेन के राजदूत को तलब किया। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण ओडिशा में मूसलाधार बारिश और राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम साइरा। समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
5: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
6: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
7: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
8: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
9: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
10: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
9: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
10: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
9: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
10: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
9: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
10: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
11: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
12: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
9: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
10: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
9: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
10: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
9: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
10: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
9: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
10: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
13: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
14: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
13: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
14: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
15: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
16: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करे 86-034-48-652 पे।
17: ठक ठक
18: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
17: अच्छा मिला ही नहीं
18: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
18: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
7: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

हादसों में एक महिला सहित दो लोगों की मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत सदर अस्पताल गोपालगंज में बेटी जन्मोत्सव का हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य कन्या जन्म को उत्सव के रूप में मनाना, समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना तथा लिंग समानता का संदेश देना था। कार्यक्रम में सिविल सर्जन और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सहित तमाम पदाधिकारी गांव मौजूद रहे और भव्य तरीके से कार्यक्रम के दौरान बेटी जन्म देने वाली माताओं का अस्पताल परिसर में स्वागत किया गया। इस दौरान जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने कहा कि बेटी के जन्म का सम्मान करना ही एक सशक्त और समतामूलक समाज की पहचान है। साथ ही सरकार के द्वारा संचालित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मिशन शक्ति तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए अधिक से अधिक लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने संकल्प लिया कि वे समाज में बेटी के सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए निरंतर जन जागरूकता अभियान चलाते रहेंगे तथा प्रत्येक बेटी के जन्म को गर्व और उत्सव के रूप में भी मनाने की प्रेरणा देंगे। आज जिला समाहरणालय के सभा कक्ष में जिलाधिकारी समीर सौरव और उप विकास आयुक्त गौरव कुमार तथा जिला युवा अधिकारी शशांक मित्तल की उपस्थिति में माई भारत के युवाओं एवं स्वयं सेवकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम विषय पर आयोजित संवाद कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा। इस अवसर पर विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत माई भारत के द्वारा चयनित विभिन्न राज्यों के युवाओं ने सीमावर्ती गाँव में किए गए अपने कार्यों एवं अनुभवों को प्रधानमंत्री तथा देश भर के अन्य युवाओं के साथ साझा किया। प्रधानमंत्री ने भी युवाओं से संवाद स्थापित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यों, युवाओं की भूमिका और राष्ट्र निर्माण में उनकी सहभागिता पर विस्तार से प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना के तहत हृदय रोग से पीड़ित 5 बच्चों को बेहतर और निःशुल्क इलाज के लिए अहमदाबाद स्थित श्री सत्य साई हृदय अस्पताल भेजा गया। इस दौरान जिलाधिकारी समीर सौरभ ने बच्चों और उनके परिजनों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया तथा एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर पटना के लिए रवाना किया। वहाँ से बच्चों को हवाई मार्ग से अहमदाबाद भेजा जाएगा। जिले में अब तक 149 बच्चों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें 80 बच्चों की सफल हृदय सर्जरी भी हो चुकी है। जिला प्रशासन ने लोगों से योजना का लाभ उठाने की अपील की। जिले में 25 जुलाई को हुए प्रदर्शन और पथराव के मामलों में पुलिस ने अब बेहद कड़ा रुख अपनाना शुरू कर दिया है। कानून से बचने के लिए फरार चल रहे 324 उपद्रवियों जिनकी पहचान उनकी तस्वीर जारी की गई है और ऐसे आरोपियों पर 5,000 रुपए का नगद इनाम घोषित किया गया है। इनमें से अब कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि 3 आरोपियों को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और लगभग आधा दर्जन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। उन पर भी आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि जिन 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है उनमें शाह आलम, जयराम और अधिवक्ता मनोज कुमार का नाम शामिल है। साथ ही अन्य फरार उपद्रवियों की तलाश तेज कर दी गई है। जिले के 2 अलग अलग जगहों पर हुए हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। एक मामला कुचायकोट थाना क्षेत्र के ढड़वलिया गांव का बताया जा रहा है, जहां नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में साइकिल सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। मृतक नायका टोला कुचायकोट निवासी धर्मेंद्र राम, उम्र 39 वर्ष बताया जा रहा है, जो ललन राम का पुत्र था। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। कटिया थाना क्षेत्र के डुमरौना गांव में केले के खेत की घेराबंदी के दौरान करंट के चपेट में आने से एक मैट्रिक की छात्रा की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। माझा थाना क्षेत्र के बलुआ टोला में भी खेत से लौटने के दौरान एक बुजुर्ग किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सड़क के किनारे इनके शव को जब लोगों ने देखा तो परिजनों में कोहराम मच गया। लोगों ने इसकी जानकारी माझा पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा है। परिजन इसमें हत्या की आशंका जता रहे हैं। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बरौली थाना की पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त अनिल उर्फ अरबाज मियां को गिरफ्तार कर लिया। यह कोटवा गांव के नवाब मियां का पुत्र बताया जा रहा है। आज इसे गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने अपने कार्यालय में जनता दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याओं

0: को सुना और उसको निष्पादित करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने आज यातायात थाना का भी निरीक्षण किया। इस दौरान थाना अध्यक्ष की उपस्थिति में थाना के पंजी और अभिलेखों का निरीक्षण किया गया। उनके समुचित संचालन के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए। साथ ही नगर थाना एवं यातायात थाना क्षेत्र में जाम की समस्या की भी समीक्षा करते हुए यातायात को सुचारू रखने और पार्किंग पर कार्रवाई तथा नियमित वाहन जाँच और प्रमुख चौक चौराहों पर प्रभावी पुलिस प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने का उन्होंने निर्देश दिया। सविया एयरफील्ड के शीघ्र परिचालन सुनिश्चित करने को लेकर गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने केंद्रीय नागर विमानन मंत्री और संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर सविया एयरपोर्ट को शुरू करने की दिशा में तीव्र गति से कार्य प्रारंभ करने का आग्रह किया है। खटिया थाना की पुलिस ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी शुरू किया है। इसी क्रम में दो प्राथमिकी अभियुक्तों को पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर गिरफ्तार किया है। एक आरोपी राम प्रवेश राम उर्फ राम प्रवेश प्रसाद है, पिता मोहन प्रसाद, और दूसरा राजन कुमार उर्फ राजन प्रसाद, पिता राम प्रवेश राम। ये दोनों बनकटा बाजार थाना चौरा खास जिला कुशीनगर उत्तर प्रदेश के निवासी है। इन पर कटिया में एक मामला दर्ज था और इसी मामले में पुलिस ने दोनों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया। नगर थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में फरार चल रहे एक प्राथमिकी आरोपी विद्यालाल राम को गिरफ्तार कर लिया। यह नगर थाना के सरिया का रहने वाला बताया जा रहा है। इस पर पहले से मामला दर्ज था और यह फरार चल रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उत्पाद पुलिस ने भी पहाड़पुर सड़क के पास छापेमारी करते हुए 95 लीटर से अधिक विदेशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी प्रिंस राय, यह मुजफ्फरपुर जिला का रहने वाला बताया जा रहा है। यह एक चरपहिया गाड़ी में शराब लेकर उत्तर प्रदेश की तरफ से आ रहा था, तभी पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बेटी जन्मोत्सव कार्यक्रम का हुआ आयोजन। हृदय इलाज के लिए 5 बच्चों का जत्था हुआ अहमदाबाद रवाना। माई भारत ऐप को लेकर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का हुआ सीधा प्रसारण। 324 उपद्रवियों पर इनाम घोषित और 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 अलग अलग हादसों में एक महिला सहित 2 लोगों की मौत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
2: बोलबम, हर हर महादेव।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894703 या 9198886973।
5: सुनिए,
6: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
5: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
6: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
5: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
7: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
2: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
1: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
2: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
1: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
2: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
1: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
2: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
2: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
1: सिवान ब्रांच में 9942071405, मेरवा ब्रांच में 8207856403।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ई सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ई सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: प्रसाद क्लिनिक।
2: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
1: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
2: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94 3945551 या 97

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-6750।
4: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
5: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
4: और लाइट बिल के
5: अब 0 रुपए कैसे दूं?
4: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
6: पक्का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
8: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
3: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे। आज काफ़ी लेट हो गए हैं और किसी कारण एक कार्य ऐसा है जिसके बिना उसको ना करे तो इसमें एंट्री ही नहीं मिलती है, उसी कारण लेट हो गए हैं आप सभी के बीच उपस्थित होने में। तो कार्यक्रम डायरेक्ट चलेगा और इसमें कोई ब्रेक नहीं रहेगा। जो भी सुरते अगर इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने की फरमाइश करना है तो पुराने गाने की फरमाइश करना है, ताकि आपकी फरमाइश आप तक पहुंचाई जा सके। और आप सभी से निवेदन है कि आप लोग कॉल ना करें, आप टेक्स्ट मैसेज के कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो टेक्स्ट मैसेज ही करें, ताकि आपकी फरमाइश हम आपको सुना सकें। आप कितना हो कॉल कर लीजिए, आपकी फरमाइश पूरी नहीं की जाएगी, क्योंकि यह कार्यक्रम जो है टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से ही गाने सुनाए जाते हैं, इसके लिए बने हैं। तो आप लोग टेक्स्ट मैसेज करें, हम बिल्कुल सुनाएंगे। कुछ मैसेज पहुंचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और आप जुड़ना चाहते हैं तो आप भी करें टेक्स्ट मैसेज। पहला मैसेज हमारे पास पहुंचा हुआ है और बहुत सारे मैसेज हमारे पास काफ़ी समय पहले पहुंचे हुए, तो अभी फ़िलहाल के जो मैसेज आए हुए हैं उन्हें मैसेजों को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, जो दो तीन मिनट पहले आए हुए हैं। बाकी जो भी श्रोतागण सुन रहे हैं तो अपने मैसेज को रिपीट करें, ताकि हमें लगे कि आप सुन रहे हैं और हम आपकी फरमाइश पूरी कर पाएँ। यहाँ पर पहला मैसेज हम शामिल करते हैं, लिखा गया है कि मंकेश साहनी भैरवगंज वेस्ट चंपारण से। सर हम भी जुड़ गए हैं और दिलवाले मूवी से गाना सुनना है, जीता था जिसके लिए मरता था। तो बिल्कुल आपके मैसेज को हमने शामिल कर दिया और आप ही के गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और जो भी श्रोतागण जो पहले मैसेज किए हुए काफ़ी समय पहले, वो अपने मैसेज को रिपीट करें, ताकि हमें ये एहसास हो कि आप भी सुन रहे हैं और हम आपकी भी फरमाइश पूरी कर पाएँ। तो फिलहाल गाने को एंजॉय करते हैं और सुनते हैं हम सभी रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

कमल के गाने सुन रहे हैं आप सब रेडियो रेम 6.4 FM पे शो चल रहा है इसमें फरमाइश का। यदि आप भी सुनना चाहते हैं अपने पसंद के गाने तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है, मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। और जो भी श्रोतागण अभी जो सुन रहे हैं और काफ़ी समय पहले मैसेज किए हुए, आज कार्यक्रम थोड़े लेट से चालू हुए हैं, तो आप उस मैसेज को रिपीट कर दे ताकि हमें एहसास हो कि आप अपने मैसेज को लेकर इंतज़ार में लगे हैं। और गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल हम आपकी फरमाइश पूरी कर पाएँ, थोड़ा सा केवल हाय लिख दें, बिल्कुल हम आपकी फरमाइश पूरी कर देंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और कुछ मैसेज रिपीट हुए तो मैसेज को शामिल करते हैं और आगे। पहला तो गाना हम सभी सुन रहे हैं, अगला गाना सुनने का बारी आ चुका है और अगले गाने की फरमाइश यहाँ पे करते हैं। कमलेश जी और कहते हैं कि हाय, मैं कमलेश विलेज सबिया फील्ड गोपालगंज से और मुझे सॉन्ग सुनना है साथ छोड़ू ना तेरा चाहे दुनिया हो खपा। मेरा सॉन्ग सुना दीजिए। तो चलिए आपकी सॉन्ग प्ले करेंगे। आगे मैसेज कुछ पहुंचा, लिखा गया है कि हेलो सर, नमस्कार, राधे राधे सर जी। सर मुझे गाना सुनना है, सुना दीजिए। तो बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा, हाय सोनू बाबू कैसे हैं, सावन की आगाज शुरू हो गई तो भोले शंकर आप पे कृपा बनाए रखें, साथ में एक सॉन्ग सुना दे, फिल्म है सावन को आने दो। यशपाल सिंह का और स्वर है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। आगे बढ़ते हैं और इस मैसेज को करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया। अगला मैसेज पहुंचा हुआ है, क्या हाल है भैया जी, मुझे सॉन्ग सुनना है। और इस मैसेज को करते हैं दीपक एंड जेलर जी, याद याद याद बस याद रह जाती है, बिल्कुल सुनाएंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो सोनू जी क्या हाल है, हम लखन पांडे कल तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और गाने के फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है, हाँ, लेकिन आप भजन की गाने के फरमाइश करते हैं तो भजन नाथ शरीफ और कव्वाली आप लोग ना करें, क्योंकि ये लंबे समय के होते हैं और ये कार्यक्रम बना हुआ है बहुत कम समय का। एक ही गाने सुनाते सुनाते हम सभी कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ जाएंगे, तो भी भजन और नाथ शरीफ जो होते हैं थोड़े लंबे 10 से 15 मिनट या 20 मिनट के होते हैं, तो आप लोग साधारणतः गाने के फरमाइश करें ताकि आपकी फरमाइश हम पूरी कर सकें। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि नमस्ते सोनू सर, रंजन कुमार तमकोही रोड कुशीनगर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और बने रहे हमारे साथ। गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है, अभी टाइपिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल करते रहें। आगे बढ़ते हैं हम और अगले गाने की फरमाइश पूरी करते हैं कमलेश जी की और सुनते हैं इनके पसंद के गाने।

रेडियो एमजीएम 94.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है एसएमएस फरमाइश का। यदि आप भी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़कर अपने फरमाइश कर सकते हैं और फरमाइश सुन सकते हैं। यहाँ पे कार्यक्रम में एक छोटा सा आप सभी के बीच सेहत सही लाभ के अंतर्गत सुझाव साझा करेंगे, और आज हम सभी जानेंगे टाइफाइड के बारे में। और टाइफाइड एक संक्रामक जीवाणु जनित बैक्टीरियल रोग है जो सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। यह रोग मुख्य रूप से दूषित पानी और भोजन के सेवन से फैलता है। स्वच्छता की कमी वाले क्षेत्रों में यह अधिक पाया जाता है। कारण, इसके कारण है दूषित पानी पीना, दूषित या खुला भोजन खाना, संक्रमित व्यक्ति द्वारा बनाए गए भोजन का सेवन करना, शौचालय के बाद हाथ अच्छी तरह से ना धोना। और इनके लक्षण है, टाइफाइड के लक्षण संक्रामक के 6 से 30 दिन के बाद दिखाई दे सकते हैं, और लगातार तेज बुखार 103 से 104 डिग्री तक हो सकते हैं, सिर दर्द, कमजोरी और थकान महसूस कर सकते हैं, भूख कम लगना, पेट दर्द, कब्ज या दस्त आना, मतली जैसा मिजाज होना, उल्टी होना, शरीर में दर्द होना, कुछ मरीजों में छाती या पेट पर छोटे गुलाबी रंग के दाने भी निकल आते हैं। ये सारे इनके लक्षण हैं। इनकी जांच है रक्त जांच, और सबसे विश्वसनीय है बिडाल टेस्ट, कुछ मामलों में उपयोग किया जाता है। सीबीसी तथा अन्य आवश्यक रक्त जांच भी कराई जाती है। डॉक्टर आवश्यकता अनुसार अन्य जांच भी करा सकते हैं, तो इनसे घबराना नहीं है। जो भी डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाए उसका पालन करना है, ताकि डॉक्टर हम लोग के स्वास्थ्य के लिए ही कुछ सलाह देते हैं, और वो स्पेशलिस्ट होते हैं किसी भी

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: All right.

0: आकाशों में करिया रहे।
1: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
2: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल कहे सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: All right.

0: विदेशों में करियर है।
1: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
2: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: हाँ हाँ।
1: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
3: हेलो हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बज चुके हैं और बिल्कुल समय के साथ हाजिर हो चुकी हूं आप सभी के बीच आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माय चॉइस के साथ। यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं की फरमाइश।
4: हेलो
5: हेलो
4: जी, गुड मॉर्निंग मैम।
5: गुड मॉर्निंग
4: जी, कैसे हैं।
5: मैं ठीक हूँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
4: जी, बोल रहे थे गाना सुनना है मैम।
5: जी, कौन सा गाना सुनना है।
4: वो एक है ना, ओढ़नी के कोर से तू पूछा अपन लोर गावे आई वे गोरी।
5: पर गाना किसी को सुनाना भी है।
4: जी सुनाना है,
5: बता दीजिए।
4: जी मेरे भाई लोग का है और यहाँ पे जितने वर्कर सब है उन सबको और जितने रिमझिम में है उन सब लोगों को।
5: ओके, तो चलिए मैं आपका गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
4: ठीक है मैम।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते,
1: क्या हाल है?
0: मेरा ठीक है, आप अपना बताइए।
1: मेरा भी ठीक है। नाश्ता हो गया?
0: हाँ, मेरा तो नाश्ता हो गया है, आपका हो गया?
1: सनी मैम बोल रही है।
0: नहीं, आरती बोल रहे हैं। तो आज कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: ये बंधन दिलों के बंधन है।
0: और गाना किसी को डेडिकेट है?
1: आप रेडियो रिमझिम सुने अपनी।
0: चलिए फिर आपका गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
5: नमस्कार।
6: नमस्कार,
5: कैसे हैं?
6: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
5: ठीक है। आज लेट हो गया।
6: रिचार्ज नहीं था ना, इसीलिए।
5: रिचार्ज नहीं था कि बारिश में आने में लेट हो गई?
6: नहीं नहीं, मुझे आने में लेट नहीं हुआ, रिचार्ज नहीं था। सर से बोल के अभी रिचार्ज कराए।
5: हाँ हाँ, अभी बोल रहा था इनकमिंग गाना एगो सुने।
6: शादी कौन सा आज गाना सुने?
5: आज सिल्की राज के गाना कदम पिया मान हानी के।
6: हाँ है
5: तो वही आज सुना दो।
6: और सॉन्ग के
5: रौड़ो लोग।
6: अच्छा, तो गाना प्ले करते नहीं सुनते रहे सबके साथ।

0: प्रणाम सर।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 91.4 एफएम में।
0: जी, हम बथुआ रोड कैमरा बाजार से बोले थे। हेलो।
1: हाँ, कैसे हैं आप?
0: नया ब्यूटी पार्लर से।
1: अच्छा,
0: तो हमारे वो गाना फरमाइशी बा, तनी बजा दे।
1: बता दी कौन सा गाना?
0: अभी ऐसे 15 अगस्त आ गया बा, तो राष्ट्रीय गाना बजा दे कर्मा फिल्म के, जौन हरि करम अपना करेंगे।
1: हाँ।
0: जी, और सब कहीं अपन समाचार?
1: हमारे तो ठीक बाबे। और गाना क्योंकि डेडिकेट भी बा,
0: और रेडियो रंजन तभी सभी लोगों के लिए।
1: अच्छा,
0: अपने सेमरा बाजार के सभी आई लोग है।
1: गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 91.4 एफएम।
0: जी सर।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो,
4: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: जी नमस्ते मैम।
4: नमस्ते,
5: गाना सुना है?
4: जी बता दीजिए कौन सा
5: गाना।
4: हेलो
5: हेलो।
4: हाँ,
5: खुशी के बदले खुशी नहीं मिलती है गाना, नहीं है क्या किसी को? यही गाना सुना है।
4: और गाना किसी को डेडिकेट है?
5: और गाना रेडियो रिमझिम सुनने वाले के लिस्नर हो और आपको भी। मेरा नाम निरंजन कुमार है।
4: हाँ।
5: आपका नाम है?
4: आरती।
5: आरती खाली?
4: हाँ
5: जी। चलिए ठीक है, और समाचार?
4: समाचार सब ठीक है, आप अपना बताइए।
5: मेरा भी ठीक है, थोड़ा सर्दी हो गया है।
4: अच्छा, धूप लग गया है क्या?
5: हाँ, धूप में गन्ना का जूस पी लिए थे उसके बाद।
4: अच्छा,
5: इसलिए लग रहा है।
4: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो। हाँ जी नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: जी मैं विकास कुमार बोल रहा हूँ झिंटापुर से।
1: जी कैसे हैं आप?
0: बढ़िया मैडम, आप कैसे हैं मैडम?
1: हम भी ठीक हैं, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: आपका आवाज आज लग रहा है कि सोनी जैसा लग रहा है, सोनी मैडम जैसा।
1: अच्छा
0: हाँ
1: सोनी मैम, तो योर वॉइस योर चॉइस का शो कर रही है ना?
0: आवाज आपका आज वही लग रहा है सोनी जैसा, सोनी मैम जैसा। आज आवाज आपका पहचान लिया।
1: लेकिन हम तो भारतीय है ना।
0: भारतीय है।
1: हाँ
0: और बताइए मैडम, बारिश हो रही हो रहा है गोपालगंज में?
1: नहीं अभी तो नहीं हो रहा है।
0: अच्छा धूप निकल रहा है।
1: हल्का हल्का धूप निकल रहा है।
0: आज हम लोग का गाना सुनवाइएगा खेसारी लाल को बोलबम का वाला गाना है, रोड में कंवरियन के भीड़ लगल बा हमें चलिए थे दिया ड्राइवर हो,
1: अच्छा
0: यही वाला। अभी सावन का चल रहा है ना, इसलिए हम लोग सोचे कि आज बोलबम का गाना फरमाइश करें।
1: बिल्कुल चलिए फिर, गाना किसी को डेडिकेट है?
0: गाना तो डेडिकेट मेरे गुरुदेव भाई है और मेरे अंकल जी है, ललन अंकल जी सिवान जिला का। और सबसे पहले तो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं ना, यही तो गलती हो गया मेरे।
1: अरे नहीं ऐसा नहीं है, किसी को डेडिकेट कीजिए, सुनना ही है। वैसे तो मैं सुन ही लेती हूँ।
0: अच्छा जितना जितना रेडियो रिमझिम सुनने वाले हैं श्रोताओं, सबको श्रोताओं को सुनवाना चाहते हैं।
1: बिल्कुल।
0: अब मेरे घर में मेरे मम्मी पापा, मेरे वो क्या बोलते हैं, मेरे लड़की है, वो भी सब ये गाना का फरमाइश है।
1: चलिए तब तो और बढ़िया है।
0: मेरी लड़की बोली कि नहीं पापा आज गाना वही खेसारी लाल का फरमाइश कीजिएगा, फोन करके बोली थी। हम बोले कि नंबर दे देते हैं बेटा, बात कर लेना। और सब बढ़िया है ना मैडम?
1: हेलो आप सब बताइए, आप सब ठीक है ना?
0: हाँ बढ़िया है जी, आप लोग का आशीर्वाद चल रहा है। बस हम लोग ऐसे ही फोन करते रहेंगे, गाना सुनते रहेंगे बस,
1: और हम सब आप सबकी फरमाइश को पूरा करते रहेंगे।
0: फरमाइश कर क्या चीज का?
1: गाने की फरमाइश को पूरा ऐसे ही करते रहेंगे,
0: ऐसे ही पूरा करते रहेंगे गाना का फरमाइश। जैसे हम लोग गाना फरमाइश करते हैं तो रेडियो स्टेशन में भी बजता है?
1: हाँ बजता है यहाँ भी।
0: अच्छा और उसी को बजाया जाता है वो रेडियो, जो जितना सुनने वाला है वो रेडियो सुनता है?
1: रेडियो पे जब बजता है तो यहाँ भी रेडियो रखा हुआ है, हम लोग भी सुनते हैं और सारे लिसनर वो तो अपना सुनते ही होंगे।
0: अच्छा रेडियो स्टेशन में रखा हुआ है?
1: हाँ,
0: बजता है। अच्छा
1: अभी सोनी जी का प्रोग्राम चल रहा है, वो भी हम लोग सुन रहे हैं, अभी बज रहा है वो भी।
0: सोनी जी का वो कौन सा है इसमें फरमाइश?
1: योर वॉइस योर चॉइस का। हाँ
0: हेलो माई चॉइस का,
1: ये तो हेलो माई चॉइस है जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो योर वॉइस योर चॉइस है।
0: आप खाली रिकॉर्डिंग करते हैं और एक मोनार्मा जी है वो?
1: हाँ
0: चलिए ठीक है मैडम, ठीक है
1: ओके। फिर गाना आपका प्ले
0: कर,
1: सुनते रहिए सब के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello, hello, hello, hello, hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो रिमझिम रेडियो गोपालगंज जी।
6: हाँ जी
5: सोनी बेटा, सत श्री अकाल भाई।
6: सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: धन्यवाद भाई। मैं भाई पिंड मौड़कोर डिस्ट्रिक्ट बठिंडा पंजाब तो जगजीत मटू बोलता बेटा।
6: ओके, और कौन सा गाना सुनना है आपको
5: बेटा? एक पुरानी फिल्म है, देश प्रेमी फिल्म है भाई
6: जी। गाना है कौन सा है बता दीजिए।
5: बताना बेटा, गुनगुना कर बताऊं?
6: गुनगुना दीजिए।
5: हाँ सुनाना बेटा। हैगा भाई फिल्म, हैगा भाई गीत है, मेरे याद आगे भूल गया सी। मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों, ये गीत है भाई।
6: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
5: हाँ बेटा, मेरे मान योग बड़े भाई है जी, देवेंद्र सिंह तग्गड़ साहब, अमरजीत सिंह बाला साहब प्रिंसी रिटायर हो भाई, सुखपाल सिंह नेशनल कॉलोनी बठिंडा तो डॉक्टर रिटायर हो भाई, मलकीत सिंह घड़ीसाज, भाई स्वामी धर्मपाल जी, परमजीत सिंह बाघा पुराना बेटा। आपको सत श्री अकाल बुलाऊंगे।
6: सत श्री अकाल, बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो में कॉल किए।
5: ठीक है बेटा, सत श्री अकाल भाई, सत श्री अकाल।
7: नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का

0: नमस्ते भारतीया मैडम
1: जी, नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: मैं एक गाना की फरमाइश करना चाहता हूँ।
1: बता दीजिए।
0: गाना मुझे चाहिए है कितनी बेचैन हो के रूम से मिला। फिल्म का नाम है, फिल्म का नाम आपको पता होगा।
1: गाना किसी को डेडिकेट भी है
0: भारतीया मैडम? ये गाना आपको डेडिकेट करना है।
1: अच्छा, नाम वैसे क्या था आपका?
0: मेरा नाम है मोहम्मद वकास, स्कॉटलैंड ग्लासगो से बोल रहा हूँ। और भारतीया मैडम, मौसम कैसा है इंडिया में?
1: मौसम इंडिया का अभी तो गर्मी पड़ रही है और धूप भी तेज ही निकल रहा है।
0: ठीक है, इधर स्कॉटलैंड में भी अच्छा मौसम है, इधर धूप निकली है।
1: अच्छा, चलिए तब तो बढ़िया।
0: हाँ जी, इधर मौसम बहुत बढ़िया है। हाँ जी, तो आपको इंडिया में मजा आता होगा?
1: इंडिया में बहुत मजा आता है।
0: अच्छी बात है, तो आपको इंडिया पसंद है?
1: मुझे तो बहुत पसंद है।
0: ठीक है, जाऊंगा इंडिया मुलाकात करने के लिए।
1: बिल्कुल स्वागत है आपका इंडिया।
0: ठीक है, बातिया आऊंगा इंडिया, एक बार ट्राई करूंगा। वीजा लग जाएगा तो आज मैं, वीजा नहीं लगेगा तो नहीं यार।
1: फिर गाना प्ले कर रहे हैं।
0: हाँ जी, तो गाना जरूर प्ले करना है, आपको डेडिकेट कर रहा हूँ भारतीया मैडम। और मुझे माशाल्लाह आपका प्रोग्राम भी बहुत अच्छा लग रहा है।
1: आपको अच्छा लगा इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपको भी धन्यवाद मेरा गाना गाने के लिए। तो नमस्ते
1: जी। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो प्रिंसिपल में कॉल करने के लिए।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone kindi bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: जी मैम नमस्ते।
5: नमस्ते,
6: कैसी हैं आप?
5: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
6: मैं भी बिल्कुल अच्छा हूँ।
5: क्या हो रहा है अभी?
6: अभी तो कुछ नहीं, खाना खा रहा था, कॉल लगा रहा था।
5: अच्छा, चलिए भोजन हो गया?
6: नहीं अभी आधा हुआ आधा बाकी है, तब तक फोन ही लग गया।
5: अच्छा जी, तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा।
6: गाना कोई आप अपने पसंद से सुना दीजिएगा।
5: अच्छा, मेरी पसंद से सुनिएगा।
6: हाँ जी मैम।
5: हाँ,
6: सभी रेडियो रिमझिम सुनने वाले सभी श्रोताओं को और आपको और आपकी पूरी टीम को।
5: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
6: जी मैम, थैंक यू,
5: वेलकम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
0: जी रमजान
1: जी, कैसे हैं आप?
0: बढ़िया है।
1: वो आज कौन सा गाना सुनने हैं?
0: आज सुनवा दीजिए, गद्दार मूवी है 30 का। उसमें गाना ये वाला है, तुमसे मिलने को मैं बेकरार हूँ।
1: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
0: जी आपको जितने श्रोता सभी को, हम भी सुनेंगे, अपने दोस्त लोग के साथ सुनेंगे।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो
3: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
2: जी मैडम जी नमस्ते।
3: नमस्ते,
2: मैं ज्योति साहू मक्सूरंगल से बोल रही हूँ।
3: कैसी हैं आप?
2: बढ़िया हूँ, आप कैसी हो?
3: मैं भी ठीक हूँ।
2: अब उस दिन मैंने फोन लगाया था मैडम, मेरी रिकॉर्डिंग नहीं आई, उस दिन गाना नहीं आया मेरा।
3: उस दिन नहीं आया लेकिन अगले दिन तो आया था।
2: नहीं आया, अगले दिन भी नहीं आया वो।
3: ऐसा तो नहीं, आपका गाना मतलब है तो बज गया है। शुक्रवार का आधा से अधिक कॉल बज गया, 2-4 कॉल बचे हुए हैं, बस वहीं बजाना है।
2: हाँ मैडम जी, इसमें से मेरी भी नहीं आई थी।
3: अच्छा जी, तो देख लेते हैं इसमें है कि नहीं आपका।
2: ठीक है,
3: और सॉन्ग आज बता दीजिए कौन सा सुनना है।
2: आज कौन सा सॉन्ग पसंद है? मुझे वो पसंद है, माइन माई मुंडेर पे तेरे बोल रहा है काला।
3: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट?
2: अपने पति को। उनके कुछ दोस्त भी है, वो भी बोल लगा रहे हैं बहुत देर से, लेकिन उनका लग नहीं रहा है अभी।
3: अच्छा जी।
2: हाँ, उनका कॉल लग नहीं रहा है अभी, बोल रहे थे हमारा नहीं लगा है, आपका लगा है? नहीं मैं, मेरा भी लगा अभी, तो बजा दीजिए मैडम ये वाला गाना हमारा।
3: चलिए फिर गाना आपका प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
2: ठीक है मैडम जी।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम जी 90.4 FM में।
0: नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: क्या चल रहा है?
1: मेरा ठीक है, आप अपना बताइए।
0: ठीक है, ओके। साहिल लाल का गाना नहीं है, पुराना वाला बाबा धाम वाला
1: नया जो निकला है वो?
0: नहीं नहीं, नया वाला भी ठीक है, वो पुराना वो नहीं है, चल रहा है भीड़ लगाल बाबा वाला, वही गाना चाहिए।
1: चलिए फिर, और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
0: ठीक है, सुरेश यादव है, दुनिया है, रुबिया उसकी माँ, यही लोग करवा दिया है।
1: जी जी, तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 91.4 FM।
0: नमस्ते
1: नमस्ते।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो जी, नमस्कार मैडम जी।
3: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
2: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू मधुसूदन पर जिला गुना मध्य प्रदेश से।
3: जी क्या हालचाल है आपका?
2: आज दीदी दुकान पर बैठे हैं और आपका रेडियो रंजन सुन रहे हैं।
3: अच्छा जी, तो आज कौन से गाने की फरमाइश?
2: जी मैडम जी, सिस्टर का नाम तो याद नहीं, गाने के बोल है काले लिबास में ऐसा लगे जैसे गोरा बदन निकल रहा है कोयले के कान से।
3: अच्छा, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
2: जी सबसे पहले आपको है, अपने गजराज सिंह लोधी है, गोपाल ओझा जितेंद्र धाकड़ जी को, इनको सबको गाना डेडिकेट है ये।
3: जी चलिए फिर गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।
2: धन्यवाद।

0: सुनना है?
1: बता दीजिए कौन सा?
0: गलीनी या चांदनी?
1: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
0: रेडियो सुनने वाले सभी दोस्तों को और आप होगी।
1: ओके,
0: आप कौन बात कर रही है? भारती मैम या सोनी?
1: भारती,
0: आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है।
1: चलिए तब तो अच्छा है कि आपको मुझसे बात करके अच्छा लगा।
0: कब तक बज जाएगा ये सॉन्ग मैम?
1: आज नहीं तो कल बज जाएगा। चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
0: थैंक यू मैम।
1: वेलकम।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो.
3: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में. आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं. नंबर है 8029294911. जी हाँ, 8029294911. तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल.
4: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में.
5: कैसे हैं?
4: मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? बता दीजिए कौन सा?
5: यही गाना सरकारी गाने वाले
4: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
5: सुनने वाले हैं सभी के लिए.
4: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो.

0: हेलो
1: जी,
0: नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजी 90.4 एफएम में।
1: क्या गुप्ता हिंदापुर,
0: कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है जी, आप कैसे हैं मैडम?
0: मैं भी बढ़िया हूँ।
1: अरे गर्मी से बहुत हालत खराब जो हो रहा है।
0: गर्मी तो बढ़ गया है,
1: धूप बहुत निकल रहा है, बहुत
0: धूप भी वैसे ही निकल रहा है, गर्मी भी वैसे ही बढ़ा हुआ है।
1: ये ठंडी का मौसम सही रहता है मैडम?
0: हमको तो भाई ठंडी अच्छा लगता है।
1: ठंडी तो हमको भी अच्छा लगता है मैडम,
0: क्योंकि ठंडी में अपना स्वेटर पहनिए और निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं।
1: हीटर लगा करके बैठे रहिए के दिन में ना।
0: हीटर है, आग है, सब तो है ही है। और गर्मी के दिनों में तो पूरा हाल होता है।
1: और बताइए, ये सोनी सिस्टर कैसे हैं?
0: सोनी जी भी अच्छी हैं।
1: अच्छा, आजकल बात भी नहीं हो रहा। आज रितेश पांडे का वो गाना सुनना है,
0: बता दीजिए।
1: कहां के लिए यही वाला मैडम गाना सुनना है, ठीक है?
0: और सॉन्ग डेडिकेट भी रहेगा।
1: सबसे पहले आपको डेडिकेट हो,
0: ओके,
1: और उसके बाद जितना रेडी रेंज सुनने वाला है सब।
0: जी, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रेंज 90.4 FM।
1: ठीक है, ओके, नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं
3: तो श्रोताओं अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे मेरे साथ यानी आरजे भारती के साथ और अब हमारे स्टूडियो की घड़ी के कांटे इशारा कर रही हैं समय हो गया है शो की समाप्ति का। यदि आप भी चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो सोमवार बुधवार शुक्रवार को सुबह 11 बजे से 12 बज के 30 मिनट के बीच हमारे नंबर 8009294911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल आज हमें इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त, मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और अपनों का भी, सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
2: Hello.

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: एक 1 BHK, एक 2 BHK, एक में मैं रहूंगी और एक में जिम करूंगी। ओके जानू,
1: भर दे ही सोना वाके सेट चाहिए, पटाना में दूध दो फल हट चाहिए।
2: अरे एक करे जा, तू जतना खर्चा करेबू हम उतना खर्चा करब। ओकरा खाती हम भागल ना होई, आ जदी हमरा के छोड़ के गइलू तब बुझ लीह
3: हम संतोष पागल नहीं
4: बनबू।

0: बेटा, जितना तोहरा से रात में बात कोइले बनी न, उतना केहू औरी खाती जागल ना है। लेकिन जदि तू हमार दिल तुरलू तो बुझ ली हो
1: हम संतोष पागल नहीं।

0: तर
1: अरे एक करे जा हम बरसी ना खाली गर्जे वाला बादल ना होई आ जदी हमरा के छोड़ के गइलू तब बुझ लीह
2: हम संतोष पागल नहीं।

0: कि हम ग्रेड ए पोल नहीं, पोल नियर खड़ा हो जाए।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से
2: हमेशा।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: हम तक हाइक ना मिली।
1: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: म्यूजिक।

0: टेल मी बेबी।
1: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

रंगत है, खुशबू है, नगमा है, जादू है।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम हैं इस पल।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: बाय।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बस बस बहुत हो गया, माफ कर दिया तुम लोगों को।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से। All right.

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।